मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज बुधवार है, सकसंवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 जून सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:52 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है खेत खलिहान में वार्ता, लौकी की खेती। वार्ताकार है श्रीनिवास सहाय।
1: किसान भाइयों नमस्कार। लौकी एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। इसकी खेती दो मौसम में की जा सकती है, एक तो गर्मा मौसम और दूसरा है जो वर्षा ऋतु के लिए। वर्षा ऋतु के लिए लौकी की रोपाई जो है जून जुलाई में आपको करनी होती है। लौकी की बहुत सी किस्में हैं, जिसमें पूसा समर प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी और पूसा नमीन प्रमुख हैं। अन्य कुछ जातियां भी हैं जिसमें पंजाब राउंड, पंजाब लॉन्ग, फैजाबाद सेलेक्शन, जूनागढ़ लॉन्ग टेंडर, कल्याणपुर लॉन्ग टेंडर प्रमुख हैं। भारतीय अनुसंधान उद्यान अनुसंधान संस्थान बेंगलोर द्वारा विकसित कुछ किस्में हैं अर्क बहार। यह किस्म गर्मी और वर्षा दोनों मौसम के लिए उपयुक्त है। इसके लिए गर्म एवं तर जलवायु अच्छी होती है। लौकी की फसल पाले के प्रति असहनशील है। अधिक वर्षा एवं बादल वाले दिन इसमें बीमारी एवं कीड़ों के प्रकोप को बढ़ाते हैं। मौसम के अनुसार अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग किस्में उपयुक्त होती हैं। लौकी की खेती किसी भी प्रकार में की मिट्टी में जिसमें जल निकास अच्छा हो उगाई जा सकती है। इसकी खेती कुछ अम्लीय भूमि में भी की जा सकती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि वर्षा ऋतु के लिए इसकी रोपाई के समय जून जुलाई है। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर आप रखें। अधिक फैलने वाली किस्मों को 4 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। 4.5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होता है और एक स्थान पर 2 बीज 2.5 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। जहां तक खाद तथा उर्वरक का सवाल है, यह उथली जड़ वाली फसल होती है, इसलिए उर्वरक को टॉप ड्रेसिंग के रूप में देने से अधिक लाभ होता है। 20 से 25 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद को खेत तैयार करते समय मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद 60 किलोग्राम नत्रजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। फास्फोरस की पूरी मात्रा, नेत्रजन की आधी मात्रा बोते समय तथा बची हुई नेत्रजन आधी मात्रा जड़ के पास टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। पौधे पर 2 पत्ती अथवा 4 पत्ती की अवस्था पर कुछ कृषि रसायनों का छिड़काव करना चाहिए, जिसमें हार्मोन्स प्रमुख है। इससे पैदावार अधिक होती है। गर्मी के मौसम में फसल को अधिक सिंचाई देने की आवश्यकता होती है या जब वर्षा नहीं हो तो ज़्यादा फसल में सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन जाड़े के मौसम में 10 से 15 दिनों बाद ही आप सिंचाई करें। बरसात के मौसम में सिंचाई की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती है। लौकी की पैदावार 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। कुछ कीड़े भी इसमें लग जाते हैं जो कि इसको नुकसान करते हैं। उनमें कद्दू का लाल कीड़ा प्रमुख है, जो कि पौध अंकुरण के समय से ही नुकसान करता है और फल मक्खी भी नुकसान करती है। तो कद्दू के कीड़ों के नियंत्रण के लिए सुरक्षित कीटनाशियों का छिड़काव समय पर करना चाहिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कद्दू के लाल कीड़ा को खाने वाले जो पक्षी हैं उन्हें खेत में आमंत्रित करें और वे स्वयं इन कीड़ों का भक्षण कर लेंगे। इसके लिए खेत में सुबह के समय मूढ़ी या चावल का भूंजा जो है वो खेत में आप डाल दें, पक्षी खेत में आएंगे और कीड़ों को।
0: खेत खलिया में अभी आपने सुना वार्ता, लौकी की खेती। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: فرحت ناز. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की. कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया. दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया. भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है. भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है. उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है. जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है. खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं. उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे. उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं. नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही.
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है. और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे. 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है.
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए. उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे. कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती. अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है. श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं. श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है. पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है. मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है. फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है. अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया. स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई. उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है चिंतन मनन।
3: जीवन को जीना। पति पत्नी का संबंध कहा जाता है जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। यह भी कहा जाता है कि परिवार रूपी गाड़ी के ये दो पहिए हैं जिन पर आधारित होकर परिवार की गाड़ी आगे बढ़ती है। पर काल चक्र बड़ा ही विकट होता है। सभी को एक दिन विदा होना ही है, पर किसको पहले जाना है ये कहना एक तरह से असंभव जैसा है। कितने दिन किसको जीना है ये जन्म लेते ही धर्मराज के खाते में निश्चित हो जाता है, पर पृथ्वी पर किसी को पता नहीं रहता है। पत्नी साधारणतया पति पर मानसिक और बहुत मामलों में आर्थिक रूप से बहुत निर्भर रहती हैं। उसका जीवन अपने कर्तव्यों को छोड़कर ज्यादातर पति के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इस कारण पति के जाने के बाद एक बारगी बहुत बड़ा खालीपन आ जाता है जो पति के जाने के परम दुख के अलावे होता है। अपना जीवन उसे निसार लगने लगता है। बाल बच्चों में अपने को रमाने की चेष्टा करती हैं, पर यह सदमा इतना बड़ा होता है कि संभालना उसे बड़ा कठिन जान पड़ता है। यदि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं तो आर्थिक समस्या का निराकरण तो हो जाता है, पर जिसके साथ जीवन का इतना समय गुजारा था उन पलों की याद उसे झकझोरती रहती है। मन में एक एक घटनाओं को याद करके जो पति के साथ गुजारी थी टीस सी उठती रहती है। बहुत सी महिलाएं तो पति के गुजरने के बाद दुख के गहन अंधकार में डूबकर अवसाद में चली जाती है और कई तो मानसिक संतुलन भी खो बैठती हैं। पर ईश्वर की सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति पूरा व्यक्तित्व होता है, चाहे वह पुरुष हो या नारी। हम सब इस पृथ्वी पर अपना अपना विशिष्ट कार्य करने और दायित्व निभाने के लिए आए हैं। ईश्वर ने हमें रचते हुए हमारा या हमारे द्वारा किए जाने वाला लक्ष्य भी हमारे साथ लगा दिया है जो हमारे द्वारा ही संपूर्ण होगा। हमें अपने लक्ष्य से जुड़े कार्यों को करना होगा, तभी हमारे पृथ्वी पर आने का प्रयोजन सिद्ध होगा। पति के जाने के बाद भी पत्नी का इस पृथ्वी पर आने का प्रयोजन पति के जाने के साथ खत्म नहीं हो जाता। पत्नी का अपने पति अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य तो निभाना ही पड़ता है और निभाना ही चाहिए। इसके अलावा उसका समाज और देश के प्रति भी कर्तव्य होता है जिसका निर्वहन उसे करना चाहिए। पर एक खास कार्य जो उसे सदैव स्मरण रखना चाहिए और करना चाहिए वो है स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण। मानसिक और आर्थिक रूप से अपने को सबल बनाना और अपने विशिष्ट कार्य करना जिसके लिए वे बनी हैं और जिसे करके उसे आनंद की प्राप्ति होती है। पति के जाने के बाद पति के प्रति कर्तव्य के अलावा वे सब कर्तव्य आपकी प्रतीक्षा करते ही रहते हैं और जागृत ही रहते हैं। इन सब कर्तव्यों को करना अब वैधव्य प्राप्त नारी के जीवन का लक्ष्य हो जाना चाहिए। पति की स्मृति की पूंजी से जीवन शक्ति और ईश्वर की कृपा की अनुभूति का बल अपने पास रखकर उसे अपने पारिवारिक सामाजिक और अपने कौशल को विकसित करने का मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए और अपने जैसी अन्य नारियों और दुखित मनुष्यों के लिए उनके दुख निवारण हेतु अतिरिक्त कार्य भी करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है, नारी को अपना ख्याल रखना चाहिए। अपनी दूसरे के प्रति अपेक्षाओं को कम करके अपने प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कोई मेरा ख्याल रखे इससे बेहतर है ये कि वह स्वयं अपना ख्याल रखे। अपने प्रति भी आपका कर्तव्य बनता है, उसे पूरा करना है। सच है कि पति का जाना बहुत बड़ा दुख है, अतुलनीय दुख, जिसके साथ जीवन बिताने की जीवन भर साथ निभाने की शपथ ली थी वो ही बीच में आपको सदा सदा के लिए छोड़कर चला गया, जिसके लिए माता पिता और पूरे परिवार को छोड़कर आई उसने ही साथ छोड़ दिया, वो भी सदा सर्वदा के लिए। जिसके किसी काम से बाहर दूसरे शहर में जाने पर लौटने की राह तकी जाती थी।

0: यदि आप ठान लेंगी तो अपने लक्ष्य को निश्चित प्राप्त कर लेंगी। इसलिए हिम्मत नहीं हारना है, फिर से संभलना है, दुख पर विजय पाकर नई दिशा की तरफ चलना है। किसी कवि ने कहा है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।
1: अभी आपने सुना चिंतन मनन, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए देश वंदना।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए आपको सुनवाते हैं भीमसेन जोशी के स्वर में ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अब आइए लता मंगेशकर के स्वर में सुनते हैं ये भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। स्वास्थ्य चर्चा में सुनिए वार्ता, मिर्गी, कारण और इलाज। वार्ताकार हैं डॉक्टर एके भगत।
1: मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसे मरीज के बार बार दौरे पड़ते हैं। इस दौरे के दो प्रकार होते हैं, आंशिक एवं पूर्ण। पूर्ण मिर्गी को सभी लोग जानते हैं, जिसमें कि व्यक्ति के गले से गड़गड़ाहट की आवाज आती है, मुंह से झाग आता है, शरीर का अंग खड़ा हो जाता है, कुछ देरी तक लगातार झटके पड़ते हैं। इन सारी अवस्थाओं में मरीज बेहोश रहता है, उसे इसकी कोई जानकारी नहीं रहती है। होश में आने के बाद माथे में दर्द एवं नींद के जैसे लगता है। अगर व्यक्ति सोकर उठता है तो पूर्णतः ठीक महसूस करता है। वहीं आंशिक मिर्गी के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसमें व्यक्ति बेहोश नहीं होता है, जिसे लोग जानकारी के अभाव में अंदाज कर समय पर इलाज नहीं करवाते हैं। आंशिक मिर्गी के होने के पूर्व पूर्वाभास आता है, जिसमें व्यक्ति कुछ होने की आशंका से ग्रसित रहता है और मस्तिष्क के जिस भाग में मिर्गी प्रभावित करता है उसके अनुरूप लक्षण आता है। अचानक से शरीर के किसी भाग में कंपन, बार बार पलक झपकाना, असामान्य व्यवहार जैसे अकारण चिल्लाना, चीखना, हंसना, किसी कार्य को बार बार करना, तेज गंध महसूस करना, आंख के सामने रोशनी महसूस करना जैसे झिलमिलाहट जैसा लगता है, पेट में मरोड़ या उल्टी की तरह लगना इत्यादि के दौरे सीमित समय तक ही रहते हैं। इन लक्षणों में मरीज का नियंत्रण नहीं रहता है, साथ ही पूर्ण रूप से याद भी नहीं रहता है। इसे कोई प्रत्यक्ष दर्शी ही सारे लक्षणों को बता सकता है। जहाँ तक कारण की बात है, मानव का शरीर कई खरब तंत्रिकाओं कोशिकाओं से बना होता है। इन कोशिकाओं की क्रियाशीलता ही हमारे सारे कार्यकलापों को नियंत्रित करती है। मस्तिष्क के समस्त कोषों में विद्युत तरंग का प्रभाव होता है जो सारी नाड़ियों द्वारा प्रवाहित होता है। मानव मस्तिष्क के सारे कोष विद्युत नाड़ियों के माध्यम से ही आपस में संपर्क बनाए रहते हैं, लेकिन कभी कभी मस्तिष्क में असामान्य रूप से विद्युत तरंग का संचार होने से वैसे व्यक्ति को एक विशेष प्रकार के झटके लगते हैं और वह मूर्छित हो जाता है। ये बेहोशी की अवस्था कुछ सेकंड से मिनट या घंटों तक चल सकती है। मिर्गी का रोग दो प्रकार का होता है, जिसे हमने बतलाया, आंशिक और पूर्ण। आंशिक मिर्गी मस्तिष्क के कुछ भाग प्रभावित होता है, तब पूर्ण मिर्गी मस्तिष्क के दोनों भाग प्रभावित होते हैं। दोनों मिर्गी के कारण अलग अलग रहते हैं। जैसे हम लोग सर्वप्रथम आंशिक मिर्गी या फोकल सीजर के बारे में चर्चा करते हैं। इसके कारण तो कई हैं, कुछ एक मैं बतला रहा हूँ, जैसे इडियोपैथिक, जिसमें कोई कारण ज्ञात नहीं होता है। दूसरा है बनावट में दोष के कारण, जैसे अनुवांशिक या तो गर्भ मस्तिष्क का असामान्य विकास होने से होता है। मस्तिष्क के अंदर रक्त नलिकाओं का रोग, जैसे मस्तिष्क के अंदर रक्त नलिका का फट जाना, मस्तिष्क के अंदर रक्त प्रवाह नहीं होना के कारण उस भाग का सुचारू रूप से काम नहीं करना, मस्तिष्क के अंदर जाने वाली धमनी और सिराओं का बनावट का दोष, मस्तिष्क के अंदर गांठ या रसौली जिसे ट्यूमर कहते हैं, प्रसव के दौरान मस्तिष्क में चोट लगना या मस्तिष्क में किए गए शल्य चिकित्सा के बाद चोट लगना, मस्तिष्क का किसी भी तरह का संक्रमण, जो पेट में पाए जाने वाले फीताकृमि का अंडा चला जाना, या फिर मस्तिष्क की झिल्ली में इन्फेक्शन होना, जैसे नाम सुना होगा इनकेफ्लाइटिस, HIV का संक्रमण इत्यादि, मस्तिष्क का सूजन होने के कारण भी होता है। ये तो हुए अब फोकल सीजर या आंशिक मिर्गी के कारण। अब हम लोग चर्चा करें पूर्ण मिर्गी के कारण के बारे में। वो सभी कारण जो आंशिक मिर्गी में बताए गए हैं वो पूर्ण मिर्गी भी ला सकते हैं। इसके भी अनुवांशिक कारण है, जैसे किसी को जन्मजात मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, प्रसव के दौरान मस्तिष्क में अनावश्यक दबाव या चोट आ गया हो, मस्तिष्क के अंदर CSF का दबाव बढ़ गया जिसे हाइड्रोकेफलस कहते हैं, उसके कारण हो सकता है। प्रसव के दौरान किसी तरह की दुर्घटना घट जाए और मस्तिष्क को ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा न मिले, इस कारण हो सकता है। कई एक बीमारियों में इस्तेमाल की जाने दवाओं जिससे कि एंटीबायोटिक इत्यादि में भी यह, मलेरिया के इलाज के कारण भी यह हो सकता है, उसमें प्रयुक्त की जाने दवाइयों के कारण भी होता है। दिल की बीमारियों के इस्तेमाल के बाद भी यह आ सकता है। मानसिक रोग में इस्तेमाल की जाने दवाओं के कारण भी यह आता है। बहुत सारी दवाओं का इस्तेमाल जो करते हैं बहुत लोग, जैसे एम्फेटामिन का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, इसको अचानक से रोका जाए तो यह आ सकता है। इसी तरह का इनकेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस होने के बाद भी व्यक्ति को एपिलेप्सी के दौर आ सकते हैं। बुढ़ापे में पाए जाने रोग जैसे अल्जाइमर्स डिजीज जिसको हो, उसमें भी यह आ सकता है। अब हम चर्चा करेंगे इलाज की। इसके इलाज करने में पूर्ण जांच पड़ताल बहुत जरूरी है, जिससे कि इसके सही कारण का पता लगाया जा सके। मरीज को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, जैसे आग, पानी, नुकली सामानों, फर्नीचर से इत्यादि से दूर रखें। मरीज के दौरे के बाद उसे करवट की स्थिति में रखना चाहिए। मरीज के श्वास नली मुंह को साफ कर देना चाहिए। दौरे के समय मरीज के कपड़े जो गले और कमर के आसपास हो ढीली कर देनी चाहिए। मरीज को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। लगभग 1 घंटे में मरीज पूर्ण रूप से स्वयं को स्वस्थ महसूस करने लगता है, तब उसे आप अकेला छोड़ सकते हैं। अगर यह दौरा 5 मिनट से ज्यादा आ रहा हो तो उसे बेहोशी अवस्था में है तो उसे तत्काल अपने नजदीक के अस्पताल में ले जाना चाहिए। इनके बीमारी के इस्तेमाल में जो दवाएं लाते हैं उसकी शुरुआत हम बहुत धीरे धीरे करते हैं और उसका लगातार प्रयोग करने की हिदायत दी जाती है। मिर्गी की मरीज में दवा का प्रयोग लंबे समय तक लिया जाता है। इस बीमारी से बचाव के संबंध में हम लोग को कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे किन मरीजों को नींद पूरी लेना चाहिए, दवा का प्रयोग अचानक।
0: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने सुना वार्ता मिर्गी, कारण और इलाज। वार्ताकार थे डॉक्टर एके भगत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान की अगली कड़ी।

शबरी के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे नवधा भक्ति का उपदेश दिया। भक्ति जिसके अभाव में जात पात, कुल धर्म, धन ऐश्वर्य सभी निरर्थक और निष्फल होते हैं। इस प्रकार जो गति योगियों के लिए भी दुर्लभ होती है, वो शबरी को सहज ही प्राप्त हो गई। क्या उसे जनक नंदिनी सीता का कुछ अता पता है? श्री राम के इस प्रश्न के उत्तर में शबरी उन्हें पंपा नामक सरोवर जाने का परामर्श देती हैं, जहां उनकी भेंट होगी धीर बुद्धि वाले वानर राज सुग्रीव से। श्री राम लक्ष्मण पंपा सरोवर की ओर चलते हैं। अतुलनीय शोभा युक्त वन में सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने जोड़े के साथ विचरण कर रहे हैं, ये देखकर उनका मन क्षुब्ध हो जाता है। राम लक्ष्मण को देखकर हिरण भागने लगते हैं, तो हिरनिया मानो उन्हें आश्वस्त करती हैं कि तुम्हें भयभीत होने का कारण नहीं, क्योंकि तुम साधारण हिरण के वंशज हो। ये लोग तो सोने का मृग खोजने आए हैं।

रामचरितमानस गान संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण, इसमें सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त।

श्रोताओं, अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे से लेकर 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे रसरंग, मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास, काव्यांजलि एवं फिल्म संगीत। 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुनेंगे 9:30 पर। कलाकार होंगे अनिल कुमार आनंद। फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से आप सुनेंगे 10 बजे से। 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत। कलाकार होंगे बसंत कुमार। 10:45 पर आप सुनेंगे समन्वित कार्यक्रम आओ साथ चलें, हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से आप सुनेंगे 11 बजे से। 11:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी श्री पार्वती के। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। कलाकार होंगे रेखा देवी। 1:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम क्षेत्रपट से। रविंद्र संगीत आप सुनेंगे 3 बजे से। कलाकार होंगी कनिका बनर्जी। 3:20 पर आप सुनेंगे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। 3:25 से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारतीय राष्ट्र सेवा के कार्यक्रम का प्रसारण होगा, हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। शाम 5 बजे से आप सुनेंगे युवा वर्गों को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे सौरभ कुमार। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 6 बजे से। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे अतुल कुमार प्रियदर्शन। 7:10 पर आप सुनेंगे विशेष भेंटवार्ता, ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण। भेंटवार्ताकार होंगे श्रीमती चेतना त्रिपाठी। भेंटकर्ता होंगी नाओमी शांति हेम्ब्रम। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कलाकार होंगे चेतन कुमार चौबे। रात्रि 8 बजे से आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कंपेयरिंग आधारित फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे से। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

अभी आपने सुना हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 6:55 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

गुड मॉर्निंग विक्रम शिला दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम में जिसे आप रोजाना सुनते हैं सुबह के 7 बजे से लेकर 7:55 तक। और श्रोताओं, आज मैं हूं आप सभी के साथ आपका रेडियो दोस्त केशव, और आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह प्रोग्राम जानकारियों से भरा है, जहां पर हम जानते हैं बहुत सी जानकारियों को, जैसे कि मौसम सूचना, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज के दिन का इतिहास एवं अन्य जानकारियां। और श्रोताओं, आप सभी को पता है कि हमारा ये दैनिक कार्यक्रम दो भागों में होता है, यानी कि दो पड़ाव में हम अपने कार्यक्रम को संपन्न करते हैं, जिसमें कि पहले पड़ाव में हम आपको सुनवाते हैं रसरंग, और रसरंग में आज हमारे साथ गायक कलाकार हैं अभिजीत आनंद। साथ ही साथ 7:20 पर हम आपको आज के दिन सुनवाएंगे काव्यांजलि, कवि होंगी स्मिता। और साथ ही साथ कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और जानेंगे अन्य शेष जानकारियों को। तो आइए श्रोताओं, बिना किसी देरी के अपने कार्यक्रम की करते हैं शुरुआत और सुनते हैं गायक कलाकार अभिजीत आनंद के द्वारा गाया यह भजन।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं गायक कलाकार अभिजीत आनंद के द्वारा गाया यह गीत। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।
1: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

श्रोताओ, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं मौसम सूचना के बारे में। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 24 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70 प्रतिशत तथा दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 8 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलने का भी अनुमान है। तो श्रोताओं, ये थी मौसम सूचना के बारे में जानकारी। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं रसरंग में गायक कलाकार अभिजीत आनंद को। आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। अब आइए सुनते हैं गायक कलाकार अभिजीत आनंद के स्वर में ये गीत।

0: अभी आप रसोई में सुन रहे थे गायक कलाकार अभिजीत आनंद को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है काव्यांजलि, कवि हैं स्मिता।
1: अरे सूरज बात ये मुझको बता, तुम तप रहे हो किस तपिस के ताप से, तुम तपे हो अब तपाते हम सभी को, तुम तपे हो अब तपाते हम सभी को, जाएं हम सब कहां कैसे बचके इससे, जाएं हम सब कहां कैसे बचके इससे, तुम ही सूरज ताप देते हम सबों को, तुम ही सूरज ताप देते हम सबों को, तुम ही से है मिले तृप्ति हम सभी को, कैसे कैसे तुम मुझको बताते हो बताओ, कैसे तुम झकझोर देते हो बताओ, तुम ही से संताप मिलता हम सभी को, तुम ही से संताप मिलता हम सभी को, धरा जब जब विकल होती है यहाँ पर, धरा जब जब विकल होती है यहाँ पर, धरा की तुम बात करते ला मुसीबत, धरा की तुम बात करते ला मुसीबत, धरा पर तब प्रकट होते महामानव, धरा पर तब प्रकट होते महामानव, अब नहीं कल्याण का होता भरोसा, अब नहीं कल्याण का होता भरोसा, अरे सूरज बात ये मुझको बता, तुम तप रहे हो किस तपिस के ताप से, तुम तपे हो अब तपाते हम सभी को, जाएं हम सब कहां कैसे बचके इससे, कहां जाएं कहां जाएं किधर जाएं बता हम सब, हम सबों ने ही बनाया मौत का घर, हम सबों ने ही बनाया मौत का घर, पेड़ पौधे उजरते नो इस धरा से, तुम नहीं मुंह मोड़ते तब इस तरह से, पेड़ पौधे उजरते नो इस धरा से, तुम नहीं मुंह मोड़ते तब इस तरह से, अब नहीं लगता कभी हम बच सकेंगे, अब नहीं लगता कभी हम बच सकेंगे, धरा का अब तपिश हम कम कर सकेंगे, धरा का अब तपिश हम कम कर सकेंगे, अब नहीं वह लौट पाएगा नयापन, अब नहीं वह लौट पाएगा नयापन, धरा का श्रृंगार हम कैसे करेंगे, धरा का श्रृंगार हम कैसे करेंगे, धरा मेरी है धरोहर, धरा मेरी है धरोहर, जानते सब जानकर अनजान बैठे हैं यहाँ सब, जानकर अनजान बैठे हैं यहाँ सब, धरा का कुछ करो सब मिलकर यहाँ पर, धरा का कुछ करो सब मिलकर यहाँ पर, धरा के श्रृंगार को कैसे संभालें, धरा के श्रृंगार को कैसे संभालें, धरा की इस धीरता को कैसे समझें, धरा की इस धीरता को कैसे समझें, धरा तो मन मस्त होती जा रही है, धरा तो मन मस्त होती जा रही है, धरा को कैसे सुधारें इस दशा से, धरा को कैसे सुधारें इस दशा से, हम सभी को सोचना अब पड़ेगा ही, यदि हम सब अब नहीं सोचे यहाँ पर, यदि हम सब अब नहीं सोचे यहाँ पर, सभी को जीना पड़ेगा बहुत मुश्किल, सभी को जीना पड़ेगा बहुत मुश्किल, जिंदगी के तार सब कमजोर होंगे, जिंदगी के तार सब कमजोर होंगे, हम सभी किसी काम के नो अब रहेंगे, हम सभी किसी काम के नो अब रहेंगे, सभी मिलकर एकजुट सोचो यहाँ पर, सभी मिलकर एकजुट सोचो यहाँ पर, धरा का श्रृंगार हम कैसे करेंगे, धरा का श्रृंगार हम कैसे करेंगे, फिर हमें जब वही कलरव दे सुनाई, फिर हमें जब वही कलरव दे सुनाई, पक्षियों का भोर हो अब इस धरा पर, पक्षियों का भोर हो अब इस धरा पर। यदि हम सब अभी नहीं सोचे यहाँ पर, सभी को जीना पड़ेगा बहुत मुश्किल। जिंदगी के तार सब कमजोर होंगे, हम सभी किसी काम के न अब रहेंगे। धरा की इस धीरता को कैसे समझें, धरा की इस धीरता को

0: लिखा है, प्रकृति के उन वादियों का क्या ही कहना, प्रकृति के उन वादियों का क्या ही कहना, हरी धरती भरी धरती लगे प्यारी, हरी धरती भरी धरती लगे प्यारी। लग रहा था कैसे हम सोएं यहाँ पर, लग रहा था कैसे हम सोएं यहाँ पर, हरी धरती हरा आंगन पेड़ और पानी जहाँ पर, हरी धरती हरा आंगन पेड़ और पानी जहाँ पर। जीवन का भी यही सच है, जीवन का भी यही सच है, जहाँ मन की सरलता हो, जहाँ मन की सरलता हो। पेड़ पौधे हमारे हैं सबों के ये बहुत प्यारे, पेड़ पौधे हमारे हैं सबों के ये बहुत प्यारे। सर्दी गर्मी सहते रहते कभी भी कुछ नहीं कहते, सर्दी गर्मी सहते रहते कभी भी कुछ नहीं कहते। फल फूल बरसाते हैं, फल फूल बरसाते हैं, हम सभी मिलकर खाते हैं। फल फूल बरसाते हैं, हम सभी मिलकर खाते हैं। पेड़ कितने हैं जरूरी, पेड़ कितने हैं जरूरी, ये नहीं सब समझते हैं, ये नहीं सब समझते हैं। प्रकृति के उन वादियों का क्या ही कहना, प्रकृति के उन वादियों का क्या ही कहना, हरी धरती भरी धरती लगे प्यारी, हरी धरती भरी धरती लगे प्यारी। सभी को अब समझना होगा, सोचना होगा, प्रकृति की महत्ता को सभी को आंकना होगा। सभी मिल कर पेड़ लगाएंगे, संसार को हम हरा बनाएंगे। सभी मिल पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा बनाएंगे। सब मिलकर हम पेड़ लगाएं, धरती को हम फिर से सजाएं। सब मिलकर हम पेड़ लगाएं, धरती को हम फिर से सजाएं। नीले गगन की छांव निराली, नीले गगन की छांव निराली, पक्षी चहके बड़ी हरियाली। हम सब इसका मान बढ़ाएं, धरती को फिर स्वर्ग बनाएं। सब मिल इसका मान बढ़ाएं, धरती को फिर स्वर्ग बनाएं। धरती मेरी मासी प्यारी, धरती मेरी मासी प्यारी, हमें सदा लगती है न्यारी। माँ को हम कैसे अपनाएं, माँ को हम कैसे अपनाएं, जब हम पेड़ लगाते जाएं। माँ को हम कैसे अपनाएं, जब हम पेड़ लगाते जाएं। माँ का करे श्रृंगार हमेशा, धरती को हम स्वर्ग बनाएं। माँ का करे श्रृंगार हमेशा, धरती को हम स्वर्ग बनाएं। माँ मेरी बड़ी प्यारी है, धरती मेरी न्यारी है। हरी धरती भरी धरती लगी प्यारी, लग रहा था कैसे हम सोए यहाँ पर। हरी धरती हरा आंगन पेड़ और पानी जहाँ पर। जीवन का भी यही सच है, जहाँ मन की सरलता हो। पेड़ पौधे हमारे हैं सबों के ये बहुत प्यारे, सर्दी गर्मी सहते रहते कभी भी कुछ नहीं कहते, सर्दी गर्मी सहते रहते कभी भी कुछ नहीं कहते। फल फूल बरसाते हैं हम सभी मिलकर खाते हैं, पेड़ कितने हैं जरूरी ये नहीं सब समझते हैं। सभी को अब समझना होगा, सोचना होगा, प्रकृति की महत्ता को सभी को आंकना होगा। सभी मिल पेड़ लगाएंगे, संसार को हरा बनाएंगे। प्रकृति के उन वादियों का क्या ही कहना, प्रकृति के उन वादियों का क्या ही कहना, हरी धरती भरी धरती लगी प्यारी।
1: काव्यांजलि में अभी आपने सुना कवि स्मिता को। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और अब हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत और जानेंगे अन्य शेष जानकारियों को। और अपने जानकारियों की करते हैं शुरुआत, और आज की तारीख है 24 जून, और 24 जून को हमारे ऐतिहासिक घटनाक्रम क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि साल 1564 ईस्वी में गोंडवाना की साहसी शासक रानी दुर्गावती मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गई थी। साल 1793 ईस्वी में फ्रांस ने पहली बार अपना गणतंत्रात्मक संविधान अपनाया। साल 1863 ईस्वी में महान वैज्ञानिक और उद्योगपति जी एन टाटा यानी जमशेद जी टाटा का जन्म हुआ था। साल 1963 ईस्वी में डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलेक्स सेवा की शुरुआत की थी। साल 1974 ईस्वी में भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट मैच की दूसरी पारी में मात्र 42 रन बनाए थे, जो आज भी टेस्ट क्रिकेट में भारत का न्यूनतम स्कोर है। साल 2005 ईस्वी में आज के दिन अमेरिका ने भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी का समर्थन किया था। और साल 2010 में विंबलडन में टेनिस इतिहास का सबसे लंबा मैच 11 घंटे 5 मिनट तक चला। यह ऐतिहासिक मैच अमेरिका के जॉन इस्नर और फ्रांस के निकोलस माहुत के बीच हुआ था। तो श्रोताओं, ये थी आज के तारीख में घटित ऐतिहासिक कुछ प्रमुख घटनाएं जिनके बारे में हमने जाना। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत जिसे हमने लिया है फिल्म कुछ ना कहो से। इस गीत को आवाज दिया है उदित नारायण एवं कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जानते हैं रेल सूचना के बारे में। गाड़ी संख्या 15553 भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस, जिसका सही समय है 7:50 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13016 हावड़ा कविगुरु एक्सप्रेस, जो कि रोजाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है 7:55 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस, जिसका सही समय है आगमन का 8:15 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 55 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 15658 ब्रह्मपुत्र मेल, जिसका सही समय है आगमन का 8:05 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 1:10 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 15648 भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, जो कि बुधवार को भागलपुर होते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनल की तरफ जाती है और इस गाड़ी का सही समय है आगमन का 8:30 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 25 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13403 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस, जिसका सही समय है आगमन का 9:00 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 1:45 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 63431 साहिबगंज जमालपुर मेमू, जिसका सही समय है 9:15 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13409 मालदा क्योल इंटरसिटी, जिसका सही समय है आगमन का 9:35 और यह गाड़ी अपने समय से लगभग 20 की देरी से चल रही है। वहीं बात करें गाड़ी संख्या 13241 बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी, जिसका सही समय है आगमन का 10:15 और यह गाड़ी अपने समय से बिल्कुल अपने समय से भागलपुर जंक्शन पहुंचेगी। और गाड़ी संख्या 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस, जो कि रोजाना चलती है और इस गाड़ी का सही समय है 11:55 और यह गाड़ी अपने सही समय पर भागलपुर जंक्शन से रवाना होगी। तो श्रोताओं, ये थी रेल सूचना के बारे में जानकारी। और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवाते हैं ये फिल्मी गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बचना ए हसीनों से। इस गीत को आवाज़ दिया है KK एवं शिल्पा राव ने। लेकिन इस गीत से पहले आइए सुनते हैं कुछ जानकारियों को।
1: इट्स रेनिंग ऑफर्स ऑन द न्यू एज बलेनो दिस सीजन। अपग्रेड टू द बोल्ड एंड टेकी न्यू एज बलेनो एंड गेट अमेजिंग बेनिफिट्स, इजी फाइनेंस ऑप्शंस एंड इनक्रेडिबल एक्सचेंज डील्स। रश टू योर नियरेस्ट नेक्सा शोरूम टुडे एंड टेक होम द न्यू एज 3-year warranty. TNC apply. Nexa.
2: ये customer care कहाँ है? हाँ, madam.
3: जी?
2: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस समझ गया।
3: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, अब वक्त हो चुका है कि हम इस कार्यक्रम से आपसे ले लें इजाज़त। बस जाते जाते यही कहूँगा कि आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और यूं ही आकाशवाणी भागलपुर।

0: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला,
3: स्वागत है आपका सुबह की सुहानी धूप में। ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
4: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
3: रूबरू होंगे आप खबरों से,
4: देश दुनिया की ताजा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
3: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
4: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
3: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज पर।
4: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
3: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
4: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
3: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्ज पर।
4: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं।
3: तो जरूर सुनिए
2: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
4: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
6: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, 8 बजने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज एवं उर्दू समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक, और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया, इंग्लैंड

0: गाना के बीच मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर छूटा। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों की दिल्ली बैठक में आतंकवाद, साइबर खतरों और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने की। बैठक में सदस्य देशों ने उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय के अनुसार ऐसे सुरक्षा खतरों पर खास तौर से चर्चा हुई जो अब वैश्विक रूप ले चुके हैं। प्रतिनिधियों ने ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आतंकवादी संगठनों द्वारा नई तकनीक के दुरुपयोग पर भी चर्चा की। बैठक में आतंकवाद सुरक्षा संबंधी कार्य समूहों के कार्यों और उनके परिणामों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर्गेई शोइगु के बीच नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के क्रम में द्विपक्षीय वार्ता हुई है। इस वार्ता में दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री डोभाल ने सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
2: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की। कतर के अमीर ने रविवार को रास लाफान शहर में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर दुख जताया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए धन्यवाद दिया और घायलों को तुरंत चिकित्सकीय मदद पहुंचाने के लिए श्री थानी की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति के प्रयासों में कतर की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इलाके में शांति और स्थिरता बहाल होगी। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर में हादसे पर बताया कि दुर्घटना में मृतकों के शव वापस लाने के प्रयास जारी हैं।
3: रास लफान परियोजना में जो वहां एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहां के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्थे नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया, जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश में देवी देवताओं की मूर्तियों के अपमान की खबरों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
3: हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश में से कुछ खबर आई कि वहां पर हिंदू भगवान के तस्वीरों के साथ अपवित्र हरकतें हुई, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। और हम लोग क्या ये उम्मीद है कि बांग्लादेश की सरकार जो वहां पर चरमपंथी लोग हैं उस पर अंकुश लगाएगी और जो वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं उसकी सुरक्षा को गारंटी करेगी।
0: खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में है। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे हैं।

0: 11 जहाज जो भारत की तरफ आ रहे हैं, इसमें से 3 भारतीय जहाज हैं जो कि क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं। इनमें 285,000 मेट्रिक टन क्रूड ऑयल है। इसके अलावा एक विदेशी पताका के साथ एक एलपीजी टैंकर जो भारत की तरफ आ रहा है और एक विदेशी पताका के साथ फर्टिलाइजर कार्गो के साथ वो आ रहे हैं। और जो अन्य 10 हमारे जहाज हैं वो भी हमारी उम्मीद है कि जल्द ही वो हॉर्मुज पार करके भारत की तरफ आ जाएंगे।
1: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हॉर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे 11,000 से ज्यादा नाविकों को निकालेगा। संगठन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने कहा कि इस अभियान में मदद के लिए जरूरी सुरक्षा की गारंटी ली गई है। इस अभियान में ईरान, ओमान और क्षेत्र के अन्य देशों और समुद्री उद्योग जगत का सहयोग

0: किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अल नीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारियां कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
1: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है, हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है, इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं, और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस बारे में चल रही खबरें भ्रामक हैं, निराधार हैं। E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में किसी तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। लखनऊ में कोचिंग सेंटर

0: पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया है। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागे और इसके साथ ही रोनाल्डो 6 विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप एल के एक अन्य मैच में कनाडा के टोरंटो में क्रोएशिया और पनामा के बीच मैच चल रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों से पद्म सम्मान ग्रहण करने वाली हस्तियों की तस्वीरें और होर्मुज़ को पार कर भारत की ओर आगे बढ़ रहे 11 ईंधन वाहक जहाजों की खबरें सबसे ऊपर छाई हैं। दैनिक भास्कर ने CUET परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक अंक पाने वाली देवीना गहलोत का चित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। नवभारत टाइम्स ने परीक्षा में सफल रहे कुछ छात्रों के चित्र के साथ इस समाचार को शीर्षक दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय के दाखिले में CUET के बाद भी 100% की रेस। देशबंधु ने मौसम के मिजाज को पहले पन्ने पर जगह दी है, खबर को शीर्षक दिया है, दिल्ली NCR में मौसम ने ली करवट और 12 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून, जबकि दैनिक भास्कर का कहना है मानसून 3 दिन देरी से मुंबई पहुंचा। पत्र ने दिल्ली NCR में अभी हफ्ते भर और गर्मी और उमस बने रहने का अनुमान प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने संकट के बीच शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में कहा है कि पश्चिम एशिया में हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाने की वजह से देश में बढ़ती महंगाई के बीच अब इसका असर औद्योगिक उत्पादन पर भी दिखने लगा है। पत्र की राय में मौजूदा संकट के लिए भले ही वैश्विक परिस्थितियां जिम्मेदार हो, लेकिन इसके समाधान के लिए कारगर कदम उठाने के बजाय इसका बोझ जनता पर डाल देने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। वहीं राजस्थान पत्रिका ने कृषि क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, वैज्ञानिकों की 7 साल की मेहनत रंग लाई, सुपरफूड ग्रेन ओट्स में भारत बन रहा आत्मनिर्भर।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद और साइबर खतरों समेत वैश्विक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को और मजबूत करने का आह्वान किया। कतर के अमीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन पर रास लाफान गैस संयंत्र दुर्घटना में 12 भारतीयों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की, कहा पाकिस्तान मानवाधिकारों के हनन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BRICS nations call for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. And now the news in detail. National security advisers and senior security officials from the BRICS nations called for stronger cooperation to address a widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats, during a high-level meeting hosted by India in the national capital. The 16th BRICS National Security Advisers meeting, held under India's chairship of the grouping led by India's NSA Ajit Doval, brought together top security representatives from member countries to discuss both traditional and emerging threats confronting the international community. According to India's Ministry of External Affairs, the discussions focused on evolving security risks that increasingly transcend national borders

0: at Toronto Stadium. The IMD has said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into parts of Maharashtra, Chhattisgarh and Madhya Pradesh during the next 2 days. It forecast heavy to very heavy rainfall over coastal Karnataka, Konkan and Goa over the next 3 days. Assam, Meghalaya, interior Karnataka, Madhya Maharashtra, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Telangana are expected to witness heavy rainfall today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Anuja. Center tightening norms for foreign contributions has been widely covered by all the dailies today. Hindustan Times writes, government issues new rules for Foreign Contribution Regulation Act to boost the fundraising ability of religious bodies registered as NGOs and to bar religious conversion. BRICS national security advisors and heads call for joint action against terrorism, cyber threats, states the Tribune. An editorial in the Pioneer writes on how e-governance is transforming Grameen Bharat. With nearly 900 million people living in rural India, the effectiveness of our Panchayati Raj institutions will shape the trajectory of the nation's development, as it is the bedrock upon which a Viksit Bharat will be built. India and US rework trade deal amid tariff changes as fresh talks begin after Modi-Trump G7 meet, notes the Asian Age. The Statesman reports about a record surge in Vaishno Devi pilgrims as the number crosses the 50 lakh mark well before the year reaches its halfway point. International Maritime Organization announces plan to evacuate vessels stuck in Persian Gulf due to the war in West Asia, writes the Hindu. And finally, The Economic Times writes about Gujarat government focusing on Ranshala to educate children of salt pan workers by converting unusable buses into classrooms equipped with smart TVs and TV connectivity dedicated to educational channels. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS nations called for stronger cooperation to address widening range of global security challenges, including terrorism and cyber threats. Prime Minister Narendra Modi gets condolence call from Qatar's Emir after 12 Indians killed in Ras Laffan gas plant blast. India strongly criticizes Pakistan's remarks over situation in POK, says Islamabad deflects attention away from its human rights abuses. India and United States open high-level trade talks in New Delhi to recalibrate proposed bilateral trade agreement. And in FIFA World Cup, Portugal thrash Uzbekistan 5-0. Match between England and Ghana draw goalless. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on EIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निपटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायज़नी की सख्त मज़म्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमरीका ने मुजवजा दो तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सीनियर सिक्योरिटी अफसरान ने दहशतगर्दी और साइबर खतरा समेत सलामती को दरपेश बहुत से आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। भारत की तरफ से यह आवाज कौमी राजधानी में मुनाकिदा एक आला सतह की मीटिंग में उठाई गई। भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की क्यादत में इस ग्रुप की भारत की सदर नशीनी के तहत मुनाकिदा ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की 16वीं मीटिंग में रुकन मुल्कों के सलामती के सरकर्दा नुमाइंदे यकजा हुए, जिसका मकसद बैनल अक्वामी बिरादरी को दरपेश रिवायती और

0: उभरते हुए खतरात से निमटना था। भारत की वजारत खारजा के मुताबिक बातचीत में सलामती को दरपेश उभरते हुए उन खतरात पर तवज्जो मरकूज की गई जो कौमी सरहदों से बाहर भी लाहक होते जा रहे हैं। मंदुबीन ने तवानाई और सबके लिए खुराक की फराहमी से लेकर आबो हवा से मुतालिक अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्द तंजीमों के हाथों उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के बेजा इस्तेमाल तक के मामलात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अस्सानी ने मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है और एक दूसरे के साथ करीबी राबता रखने से इत्तेफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने अपने शहरियों की खुशहाली और हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म को भी दोहराया और एक दूसरे की यगानगत और मदद के अपने अहद को ताज़ा किया। जनाब मोदी ने कल एक टेलीफोन बातचीत के दौरान कतर के अमीर से इतवार को कतर के रास लफान सनती शहर में एक हादसे के दौरान भारतीय बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। जनाब मोदी ने मुतासिरा कुनबों के तई हमदर्दी जाहिर करने पर कतर के रहनुमा का शुक्रिया अदा किया और जख्मियों के जल्द इलाज के लिए फौरी मदद फराहम करने को सराहा। मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने अमन के लिए जारी कोशिशों में कतर के तामीरी रोल की तारीफ की।
1: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रायजनी की सख्ती से मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि ये रायजनी अपनी नाकामियों को छुपाने और इंसानी हुकूक की पामाली से तवज्जो हटाने की पड़ोसी मुल्क की नाकाम कोशिशें हैं। नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए वजारती खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इन फर्जी दावों को उतने ही वाजह तौर पर मुस्तरद करता है जिसके ये हकदार हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान दिफा की शराकत दारी पर तर्जुमान ने कहा कि हालिया बरसों में इमारात के साथ भारत के ताल्लुकात में बड़ा इजाफा हुआ है जिसमें दिफा से मुतालिक शराकत दारी का एक अहम रोल है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने मुस्तहकम मईशतों की तामीर करने, मुस्तकिल तरक्की की रफ्तार में तेजी लाने और सबकी शमूलियत वाली तरक्की को यकीनी बनाने के लिए कसीर मुल्की मजबूत तरतआवुन के लिए कहा है। कल नई दिल्ली में तरक्की से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के आलमी इज्तिमा से वर्चुअल वसीले से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाहम मरबूत इस दुनिया में खुशहाली और चैलेंजेस मुश्तरक हैं, लिहाजा तनाज़ात और गैर यकीनी के नताइज तरक्की पजीर मुल्कों और आलमी जुनूब पर गैर मुतनासिब तरीके से मुरतब होते हैं। मोहतरमा सीतारमन ने जोर देकर कहा कि इन चैलेंजों से निमटने के लिए मरबूत आलमी कार्रवाई लाजिम है। भारत की इक्तिसादी तरक्की का खास तौर पर जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क की तरक्की बुनियादी तौर पर घरेलू मांग पर मबनी है जिसे आमतौर पर मार्केट की तय करदा शरह मुबादला की मदद हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार तरक्की करती हुई बड़ी मईशतों में शामिल है जिसकी घरेलू मजमूई पैदावार की शरह तरक्की के बारे में पेशगोई की गई है कि ये औसत मुद्दत में तकरीबन 7% रहेगी जो काफी ज्यादा है। इस समिट में जिसकी सदारत फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने की आगे बढ़ती हुई और उभरती हुई मईशतों के रहनुमा यकजा हुए जिनमें भारत, ब्राजील, चीन, केनिया, जुनूबी कोरिया जैसे G7 ममालिक और बैनुल अक्वामी मालियाती फंड के रहनुमा शामिल हैं। नीति आयोग के नायब चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार लहरी ने कहा है कि आखिरी सेमाही में भारत की मजमूई तजारत में 5.4% की शरह से तरक्की हुई है। उन्होंने नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के ताजा एडिशन के इजरा के दौरान ये बात कही। डॉक्टर लहरी ने मजीद कहा कि आखिरी सेमाही में भारत की बरामदात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई और दरामदात में 6.5% का इजाफा हुआ है। भारत के अहम मादनियात से मुतालिक मिशन में खातिरखा तेजी आई है। कानों की वजारत ने उमूमी तौर पर अहम 56 और दिफाई एतबार से अहम धात ब्लॉकों और दरियाफ्त करने के लाइसेंस वाले 11 ब्लॉकों की कामयाब नीलामी की है। वजारत ने 10 अहम और दिफाई एतबार से अहम कान ब्लॉकों को

0: सातवें मरहले की नीलामी के तहत कामयाबी के साथ नीलाम किया है। नीलाम किए गए इस तरह के ब्लॉकों की कुल तादाद 56 हो गई है, जबकि अभी तक 88 ब्लॉकों की पेशकश की गई है। नीलामी की ये शरह 63% है। वजारत ने बताया कि ऐसा पहली बार है कि मरकज ने गुजरात, उत्तराखंड और तेलंगाना में अहम मादनियात के ब्लॉकों की नीलामी की है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत और अमेरिका ने एक मुजवजा दो तरफा तिजारती माहदे को जदीद और कतई शक्ल देने के लिए आला सतह की तिजारती बातचीत शुरू की है। ये बातचीत अमेरिका की महसूल से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली की वजह से इस साल के शुरू में तय किए गए एक फ्रेमवर्क में रुकावट की वजह से की जा रही है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में अमेरिका के तिजारत के नुमाइंदे जेमिसन ग्रीर और भारत में अमेरिका के सफीर सर्गियो गौर से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: दोनों मुल्कों का मकसद 24 जुलाई से पहले एक उबूरी तिजारती माहदे की तकमील करना है, जब तिजारती शराकत दारों से दरामद किए जाने वाले सामान पर अमेरिका के आरजी 10% महसूल की मुद्दत खत्म हो जाएगी। 20 फरवरी को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इन बेहद महसूलात को खत्म करने का हुक्म दिया था। इसकी वजह से अमेरिकी इंतजामिया को सभी मुल्कों पर तिजारती कानून की 122वीं शिक के तहत 150 दिन के लिए 10% आरजी महसूल लागू करना पड़ा था। यह सिलसिला 24 फरवरी को शुरू हुआ था, जो 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। दोतरफा तिजारती कशीदगी में कमी आ जाने के बाद अब अमेरिका में ज्यादातर भारतीय अशिया पर दोतरफा तिजारती महसूल में कमी करके इसे 18% कर दिया है और इससे पहले के 25% महसूल को खत्म कर दिया है। भारत ने भी बहुत सी अमरीकी सनती और जरई अशिया पर महसूलात में कमी करने या इन्हें हटाने की तजवीज पेश की है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: इससे पहले जनाब गोयल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो भारत अमेरिका दो तरफा तिजारती माहदे पर नतीजा खेज बातचीत के बारे में पुरउम्मीद हैं। इस दौरान जनाब गोर ने भी सोशल मीडिया पर एक पैगाम भेजा है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका एक ऐसे दो तरफा मजबूत तिजारती माहदे को कतई शक्ल देने की जानिब फैसला कुन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों मुल्कों के लिए नए इक्तसादी मौके पैदा होंगे और खासतौर पर अमरीका भारत इक्तसादी शराकतदारी में गहराई पैदा होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बकौल उसके एक तारीखी अमन माहदे के हिस्से के तौर पर ईरान इस बात पर रजामंद हो गया है कि वो कभी न्यूक्लियाई हथियार हासिल नहीं करेगा। इस माहदे के सबब आबनाए हुरमुज में कशीदगी का खात्मा हो गया है। पेंसिल्वेनिया के शहर मेकनगी में मैन ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जनाब ट्रंप ने कहा कि ईरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकना इस्लामी जमहूरिया की जानिब उसकी इंतजामिया की पॉलिसी का असल मकसद है। जनाब ट्रंप ने ये बात जोर देकर कही कि ईरान की फौजी सलाहियत में शदीद कमजोरी आ गई है। उन्होंने कहा कि ईरान की मईशत और दिफा के शोबे को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक मगरबी एशिया खत्ते में ईरान की हिमायत याफ्ता ग्रुप हमले जारी रखेंगे और मिलिटेंट सरगर्मियों में मसरूफ रहेंगे, पायदार अमन इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता है। खलीज फारस के खित्ते के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर अबू ज़ैबी पहुंचने पर जनाब रूबियो ने जोर दिया कि लेबनान में जंगबंदी पर बातचीत ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात से अलग है। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने हाल ही में लेबनान के सदर जोसेफ ऑन और अमरीका के नायब सदर जेडी वेन से बात की है और ये कि अमरीकी अहलकार इस वक्त लेबनान में मसरूफ अमल हैं। समंदर से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तंजीम आईएमओ ने उन 11,000 से ज्यादा जहाजों को निकालने के मंसूबे का ऐलान किया है जो आबनाए हुरमुज में अब भी फंसे हुए हैं। आईएमओ के सेक्रेटरी जनरल अर्सेनियो डोमिगेज ने एक बयान में कहा है कि उनकी तंजीम ने इन लोगों को निकालने की कार्रवाई में मदद के मकसद से हिफाजत के लिए दरकार जमानतों और महफूज जहाज रानी की तौसीख शुदा शराइत की यकीन दहानी कर ली है। तमिलनाडु की हुकूमत ने वेटी तमजीगम विजन दस्तावेज को मंजूरी दी है। इस दस्तावेज की अहम पहल मैटरनल अंकल्स गोल्ड रिंग स्कीम है। इस स्कीम के तहत तमिलनाडु में मुस्तकिल तौर पर रिहाइश पजीर खानदानों के नवजायदा बच्चों को 1 ग्राम सोने की रिंग पेश की जाएगी, बशर्ते कि बच्चे की पैदाइश सरकारी अस्पताल में हुई हो। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कहा है कि अगले 2 दिन के दौरान जुनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी से महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम के साजगार रहने का इम्कान है। महकमे ने साहिली कर्नाटक, कोंकण और गोवा में अगले 3 दिन के दरमियान शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है।

0: फीफा आलमी कप 2026 में पुर्तगाल ने अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में ग्रुप के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। 41 साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल करके पुर्तगाल को उज्बेकिस्तान के खिलाफ 5-0 से जीत दिलाने में मदद की। रोनाल्डो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 अलग-अलग आलमी कप टूर्नामेंट में गोल किए हैं। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया है। फॉक्सब्रो के बोस्टन स्टेडियम में इंग्लैंड और घाना के दरमियान खेला गया ग्रुप एल में किसी गोल के बगैर बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया असद। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने आईएएस 2026 बैच के अफसरान से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुलाकात की खबर को सफ़े अव्वल पर शाया करते हुए लिखा है कि वजीर आजम ने कहा कि मजबूत आजम और आवाम की फलाह बहबूद पर मबनी विकसित भारत 2047 की क्यादत करें। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है अमरीका और ईरान के दरमियान अमन माहदे के बाद आबनाए हुरमुज में जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल। भारतीय परचम बरदार जहाज अपनी अपनी मुकर्रा बंदरगाहों के लिए रवाना। इसी अखबार की एक और खबर है कि दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों की एक आला सतही मीटिंग में दहशतगर्दी और साइबर खतरात समेत कई अहम मामले पर नतीजा खेज बातचीत हुई। हुकूमत एलनिनो की वजह से मानसून के असरात से निमटने और किसानों की पेशगी मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को अखबारों ने खसूसियत के साथ शाया किया है। इम्तहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तहान CUET 2026 के नतायज का किया ऐलान। उम्मीदवार सरकारी CUET पोर्टल के जरिए स्कोर कार्ड तक रसाई हासिल कर सकते हैं।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने दहशतगर्दी और साइबर खतरों समेत आलमी सलामती को दरपेश बढ़ते हुए बहुत से खतरात से निमटने के लिए मजबूत तर तआवुन के लिए कहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को रास लफान गैस प्लांट धमाके में 12 भारतीयों की हलाकत पर कतर के अमीर की तरफ से ताज़ियती कॉल मौसूल हुई। भारत ने पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की रायज़नी की सख्त मजम्मत की है। उसने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। भारत और अमेरिका ने मुजव्वजा 2 तरफा तजारती माहदे को ताज़ा शक्ल देने के लिए नई दिल्ली में आला सतह की तजारती बातचीत शुरू की है। और फीफा आलमी कप में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया। इंग्लैंड और घाना के दरमियान मैच बराबरी पर खत्म हुआ। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी पटना है। कुछ ही देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
3: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
4: सभी दिवस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
3: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 211 नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए जिला स्तर पर संयुक्त टीम का होगा गठन। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का हो रहा है आयोजन। और मौसम विभाग ने आज उत्तर बिहार के कुछ जिलों में आंधी बारिश और दक्षिण बिहार में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 211 नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में ऐसे सरकारी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं जिन्हें नेट, JRF या PhD की योग्यता प्राप्त हो। इन शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 30 जून तक कर ली जाएगी। गौरतलब है कि इन नए डिग्री महाविद्यालयों में 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, उर्दू और मैथिली विषयों की पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए IIT पटना के साथ टाई अप करने के निर्देश दिए हैं। पटना में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। साथ ही श्री चौधरी ने राज्य के विद्यालयों और छात्रावासों में नामांकित इस वर्ग के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का भी निर्देश दिया है। इस पोर्टल पर किसी भी प्रकार की शिकायत या सुझाव दिए जा सकेंगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि मिट्टी जांच की सुविधा पंचायत स्तर पर पहुंचाई जाएगी। श्री ठाकुर ने खेत बचाओ अभियान के तहत पूर्णिया जिले के कठौली गांव में आयोजित कार्यक्रम में किसानों से संवाद के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 जून तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बचाना और कृषि लागत को कम करना है।
1: खेत स्वस्थ रहेगा तब ना हम स्वस्थ। कृषि विभाग ने ये समझा कि वैज्ञानिकों के साथ खेत में जाकर देखने, तो वो 2025 में हम लोगों ने किया। अब ये खेत बचाना है तो हर एक गांव में जा रहे हैं, देख रहे हैं, पदाधिकारियों को देख रहे हैं। एक महीने का अभियान है, इसमें जो रिपोर्ट आएगा, रिसर्च होगा, उसके बाद फिर दूसरा अभियान चले।
0: कार्यक्रम के दौरान जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए किसानों ने अपने कृषि नवाचारों और सफल प्रयोगों की भी जानकारी साझा की। राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की उपस्थिति में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत ने बताया कि इसके लिए जिला स्तर पर एक संयुक्त टीम गठित की जाएगी। इस टीम में अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, जिला अग्निशमन पदाधिकारी और प्राधिकरण का एक नामित पदाधिकारी शामिल होगा। यह टीम अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानकों, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और फायर रिस्पांस प्लान सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं का निरीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करेगी। राजधानी पटना में गिग वर्कर्स के लिए अत्याधुनिक AC लाउंज की सुविधा शुरू हो गई है। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने गांधी मैदान और आयकर गोलंबर के पास बनाए गए विशेष AC लाउंज का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डिलीवरी पार्टनर से संवाद भी किया। इस दौरान श्री मिश्रा ने बताया कि बैठने की आरामदायक व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जिंग सहित विभिन्न सुविधाओं से युक्त ये लॉन्ज गिग वर्कर्स को गर्मी, बारिश और अन्य प्रतिकूल मौसम में राहत प्रदान करेंगे।
2: हर एक घर की जरूरतों को इनके माध्यम से पूरा किया जाता है। उनकी असुविधा को देखते हुए कि जितनी गर्मी पड़ रही है कि उनको एक थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिले, एक स्थान दें, थोड़ा वो रेस्ट कर लें, तो पटना स्मार्ट सिटी ने ये सोचा। प्रयोग के तौर पर दो स्थानों पर हम लोगों ने शुरू किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, मैं देखने के लिए आया। जैसे जैसे फीडबैक आएंगे, सुझाव आएंगे, आप लोगों से भी सुझाव मिलेंगे, तो इसको और हम बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे।
0: गौरतलब है कि पटना देश का तीसरा शहर है जहां गिग वर्कर्स के लिए विशेष एसी लाउंज सुविधा विकसित की गई है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जाएगा। इसको लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज 18 परीक्षा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत विभिन्न स्टेशनों से चलाई जाएंगी। इधर रेलवे ने कल भी 9 परीक्षा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया था। केंद्र सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और इसकी निरंतर निगरानी की जा रही है। निगरानी में तेल कंपनियां, वाहन निर्माता, ईंधन परीक्षण एजेंसियां और अन्य पक्ष शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही खबरें भ्रामक और निराधार हैं। सरकार ने कहा है कि E20 पेट्रोल की शुरुआत के बाद से एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन की खराबी या वाहन में तकनीकी खराबी की कोई व्यापक शिकायत सामने नहीं आई है। बिहार संग्रहालय ने पिछले वर्ष 5 लाख से अधिक टिकटधारी आगंतुकों का रिकॉर्ड दर्ज किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार संग्रहालय समिति की शासी निकाय की बैठक में संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समिति नई दिल्ली, गुजरात, ओडिशा और तेलंगाना समेत देश भर में कुल 9 संग्रहालयों के विकास और स्थापना में अहम भूमिका निभा रही है। बैठक में मुख्यमंत्री ने लोक कलाओं से संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। हज यात्रा 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। बिहार राज्य हज समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहम्मद राशिद हुसैन ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित है। आवेदक आधिकारिक वेबसाइट और हज सुविधा ऐप के जरिए आवेदन कर सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मौसम के दो रुख देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ उत्तर बिहार में मानसून के प्रभाव से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं, वहीं दक्षिण बिहार में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा समेत दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिलों में लू की चेतावनी जारी की है।
5: राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। इसके बाद अगले 3 दिन के दौरान तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक गिरावट की संभावना है। वहीं इस अवधि में 41.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इस दौरान बक्सर, गया जी और शेखपुरा में लू की स्थिति बनी रही। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के चलते कोसी और महानंदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। इसके चलते सहरसा, सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज जिले के निचले इलाकों में बाढ़ और कटाव का खतरा मंडराने लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड में महानंदा का जलस्तर बढ़ने से कटाव शुरू हो गया है। इधर कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ ही सहरसा के महिषी और सुपौल के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड के निचले इलाकों में पानी तेजी से फैल रहा है। वहीं दरभंगा में कमला बलान नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से खेधा पंचायत के कुछ गांवों का संपर्क पंचायत मुख्यालय से कट गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने के लिए खरीफ फसल के लिए एहतियाती तैयारी कर रही है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में कहा कि बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों में अब तक लगभग 43% कम वर्षा हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने की आशंका है।
6: ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले हमारी उच्च प्राथमिकता वाले जिले होंगे क्योंकि इनमें सिंचाई 25% से कम है। मध्यम प्राथमिकता वाले मतलब जहां 25-50% सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं ऐसे 76 जिले हैं और 128 जिले निम्न प्राथमिकता वाले इसलिए वहां सिंचाई के लिए डैम और बाकी चीजों की व्यवस्था है।
0: श्री चौहान ने कहा कि कार्य योजना के तौर पर वैकल्पिक फसलों, कम अवधि वाली किस्मों, फसल विविधीकरण और तालाबों, जलाशयों, चेक डैम, फॉर्म बाउंड और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पटना न्याय मंडल की सभी अदालतें 29 जून से सुबह 10 बजे से शाम 5:30 तक चलेंगी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुपेश देव के अनुसार प्रातःकालीन अदालत की बैठकें 27 जून तक ही होंगी। 29 जून से सभी अदालतों में दिवाकालीन बैठकें शुरू हो जाएंगी। गृह विभाग कारा ने पटना स्थित बेऊर जेल में भ्रष्टाचार और अराजकता के मामले में जेल अधीक्षक नीरज कुमार झा समेत 8 को निलंबित कर दिया है। इनमें 1 कारा उपाधीक्षक, 4 सहायक अधीक्षक और 2 हवलदार शामिल हैं। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ऑटो रिक्शा से लगभग 23 किलो गांजा के साथ चालक को गिरफ्तार किया है। यह ऑटो रिक्शा नेपाल से आ रहा था। पश्चिम चंपारण जिले के कुमारबाग थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने पारिवारिक विवाद के बाद पत्नी समेत 3 बच्चों को नहर में फेंक दिया। हादसे में 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई जबकि पत्नी को बचा लिया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, सभी सरकारी पॉलिटेक्निक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनेंगे। प्रभात खबर ने भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, SDPO और तत्कालीन थानेदार सहित अन्य पुलिस वालों पर हत्या की प्राथमिकी। दैनिक भास्कर लिखता है, CUET में 100% वाले 20% बढ़े, प्रीमियम संस्थानों में दाखिला कठिन होगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, नेशनल हाईवे पर अब गाड़ी मरम्मत की मिलेगी सुविधा। अखबार लिखता है, NHAI ने दिया क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश। राष्ट्रीय सागर की प्रमुख खबर है, पटना के 106 कोचिंग संस्थानों को बिहार अग्निशमन विभाग ने थमाया नोटिस। आज अखबार के शब्द हैं, अब बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 211 नवस्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के योग्य शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। राज्य के निजी और सरकारी अस्पतालों में व्यापक अग्नि सुरक्षा ऑडिट के लिए जिला स्तर पर

0: क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:06 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म जन्नत से। इस गीत को आवाज़ दिया है के ने। गीतकार हैं सैयद कादरी और संगीत है प्रीतम का।

0: कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म किसना से। इस गीत को आवाज दिया है सुखविंदर सिंह, इस्माइल दरबार, आयशा एवं साथी ने। संगीत है AR रहमान एवं इस्माइल दरबार का। श्रोताओं, इस गीत से पहले कुछ जानकारियों को सुनते हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
3: The future feels effortless with the Grand Vitara, because some journeys deserve more than just movement. They deserve comfort, presence and peace of mind. This is your opportunity to bring home the Grand Vitara at just ₹8,999 per month. Yes, ₹8,999 per month. Step into a world of refined performance and hybrid technology, along with 6 airbags as standard. Less fuel stress, more driving pleasure. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
4: Nexa. आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से। उमंग।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म रामलीला से। इस गीत को आवाज़ दिया है अरिजीत सिंह ने। गीतकार हैं सिद्धार्थ गरिमा और संगीत है संजय लीला भंसाली का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। कार्यक्रम का आखिरी गीत जो है वो है फिल्म गुंडे से। इस गीत को आवाज दिया है बप्पी लहरी एवं नेहा बहसीन ने। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है सोहेल सेन का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं अनिल कुमार आनंद।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं अनिल कुमार आनंद। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कलाकार हैं अनिल कुमार आनंद। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी को सुनते हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं अनिल कुमार आनंद। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार हैं अनिल कुमार आनंद। अब आइए इनके स्वर में सुनते हैं कबीरदास की रचनाएं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। गायक कलाकार थे अनिल कुमार आनंद। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का पहला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म हीना से। इस गीत को आवाज दिया है लता मंगेशकर ने। गीतकार एवं संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्म से। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है सौतन फिल्म से। इस गीत को आवाज दिया है किशोर कुमार ने। गीतकार हैं सावन कुमार और संगीत है उषा खन्ना का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म सागर से। इस गीत को आवाज दिया है किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। अब जो गीत हमने लिया है वो लिया है फिल्म जिगर से। इस गीत को आवाज दिया है अभिजीत एवं साधना सरगम ने। गीतकार हैं समीर और संगीत है आनंद श्रीवास्तव का।

श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म खिलाड़ी से। इस गीत को आवाज दिया है अभिजीत एवं अलका याग्निक ने। गीतकार हैं अनवर सागर और संगीत है जतिन ललित का।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत, कलाकार हैं बसंत कुमार। आइए इनके स्वर में सुनते हैं ये देवी गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, कलाकार थे बसंत कुमार। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। 10:45 होने ही वाले हैं। अब आप सुनेंगे समन्वित कार्यक्रम आओ साथ चलें, हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

श्रोता, जब हम ज्ञान, दर्शन, चिंतन और बौद्धिक चेतना की बात करते हैं तो भारत के नक्शे पर एक ऐसा प्रदेश उभर कर आता है जिसे न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को सोचना, समझना और जीना सिखाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने प्रदेश बिहार की।

बिहार, यह सिर्फ दो अक्षरों का नाम नहीं या फिर एक राज्य की भौगोलिक सीमा नहीं है। यह नाम इतिहास के पन्नों पर ज्ञान की स्याही से लिखा गया एक अमर दस्तावेज है। बिहार शब्द की उत्पत्ति ही विहार से हुई है, जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना, रुकना और ध्यान लगाना। यह बौद्ध भिक्षुओं की वह तपोभूमि रही है जहां विचारों को पंख मिले और इंसान की बुद्धि ने बुद्धत्व का मार्ग खोजा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार की उसी महान बौद्धिक विरासत की, जिसने सदियों तक दुनिया का मार्गदर्शन किया और आज भी हमारी चेतना का हिस्सा बनी हुई है।

श्रोता, बिहार की बौद्धिक समृद्धि का सबसे पहला और मजबूत स्तंभ है यहाँ का आध्यात्मिक दर्शन। ये वो भूमि है जहाँ विचारों की स्वतंत्रता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। आज से लगभग 2500 साल पहले जब दुनिया रूढ़ियों में उलझी जकड़ी

हुई थी तब इसी बिहार की धरती पर दो महापुरुषों का अवतरण हुआ है, जिन्होंने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। महात्मा बुद्ध, जो ज्ञान की खोज में कपिलवस्तु से निकले और उन्हें परम ज्ञान यानी बोधत्व की प्राप्ति कहाँ हुई? आप जानते हैं, बिहार के ही गया जी में, यानी बोध गया में। निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे जब सिद्धार्थ को ज्ञान मिला तो वो बुद्ध कहलाए। यह मानो बुद्धि और विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति थी। बुद्ध ने कहा, आप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। यह बौद्धिक आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा संदेश था।

ठीक इसी दौर में इसी भूमि पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का संदेश भी गूंजा। वैशाली की पावन धरती पर जन्मे महावीर ने स्यादवाद और अनिकांतवाद का दर्शन दिया। अनिकांतवाद का सीधा संबंध हमारी बौद्धिक सहिष्णुता से है। यह दर्शन सिखाता है किसी भी सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, इसलिए हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। सोचिए, आज की आधुनिक दुनिया जिसे टॉलरेंस या सहिष्णुता कहती हैं, उसकी नींव सदियों पहले इसी बिहार की बौद्धिक चेतना ने रख दी थी।

और केवल यही नहीं, जनकपुर और मिथिला का क्षेत्र याद कीजिए, राजा जनक की सभा जहां शास्त्रार्थ की परंपरा थी, जहां याज्ञवल्क्य और गार्गी जैसे मनीषी उठते थे। गार्गी जो नारी चेतना और अगाध विद्वता का प्रतीक बनी, जिन्होंने भरे दरबार में उस समय के सबसे बड़े विद्वान को चुनौती दी थी। यह प्रमाण है कि बिहार की बौद्धिक समृद्धि में महिलाओं की भागीदारी उतनी ही प्राचीन है जितना कि हमारा इतिहास।

श्रोता, बिहार की बौद्धिक समृद्धि का जिक्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम दुनिया के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की बात ना कर लें। एक दौर था जब दुनिया के कोने कोने से, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, और भारत में ज्ञान का वह महाकेंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। 5वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक इमारत भर नहीं था, वह ज्ञान का एक जीवंत समंदर था। 9 मंजिला पुस्तकालय जिसका नाम धर्मगंज था और जिसमें रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक जैसे खंड थे। कहते हैं कि जब इस पुस्तकालय में आग लगी तो किताबें महीनों तक जलती रहीं। सोचिए कितना अगाध ज्ञान संचित रहा होगा वहां। नालंदा की विशेषता क्या थी? वहां की प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि द्वारपाल, यानी जिसे आज हम गेटकीपर कहते हैं, वे ही छात्रों की परीक्षा ले लेता था, और केवल तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्र ही अंदर प्रवेश पा सकते थे। ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने अपनी डायरी में नालंदा के इस बौद्धिक स्तर की जो तारीफ की है, उसे पढ़कर आज भी हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और केवल नालंदा ही क्यों, भागलपुर के पास स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, वज्रयान, बौद्ध धर्म और दर्शन का यह बहुत बड़ा केंद्र था। इसके अलावा उदंतपुरी और जगदल जैसे शिक्षा केंद्र भी इसी बिहार की मिट्टी पर फले फूले। ये विश्वविद्यालय इन बातों के सबूत हैं कि बिहार केवल खेती किसानी का प्रदेश नहीं रहा है, यह दुनिया का बौद्धिक पावर हाउस था।

0: और थोड़ी बात कर लेते हैं साहित्य के। साहित्य के क्षेत्र में भी बिहार का योगदान अद्वितीय रहा है। आधुनिक काल में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लेखनी को कौन भूल सकता है भला। कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल लिखकर हिंदी साहित्य की आंचलिकता को एक नई दिशा दी। राम वृक्ष बेनीपुरे, बाबा नागार्जुन और उर्दू अदब में बिस्मिल अजीमाबादी, जिनका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज भी रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ा देता है। यह सब बिहार की उसी बौद्धिक उर्वरता की ही देन है। श्रोता, इतिहास गवाह है कि बिहार ने जब जब अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया है, दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन आया है। चाहे वह प्राचीन काल का ज्ञान हो, मध्यकाल की सूफी संत परंपरा हो, या आधुनिक काल में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, जहां बिहार की जनता ने गांधी जी को महात्मा बनाने की वैचारिक और नैतिक जमीन तैयार करके दी। आज बदलते हुए दौर में जब हम 21वीं सदी के तकनीक युग में जी रहे हैं, तब भी बिहार के युवाओं का बौद्धिक कौशल देश विदेश में अपनी चमक बिखेर रहा है। देश के सबसे कठिन प्रशासनिक परीक्षाओं यूपीएससी से लेकर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्रों तक बिहार के मेधावी छात्र अपनी बौद्धिक विरासत का परचम लहरा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने इस गौरवशाली अतीत को सिर्फ याद ना करें, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर एक बार फिर से बिहार को ज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प लें। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि बिहार की मिट्टी में एक अजीब सी कशिश और बौद्धिक खुशबू है। यह वो भूमि है जो विपरीत परिस्थितियों में भी निखरना जानती है। आज के आओ साथ चले कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था मोहम्मद शाहिद सबा ने। अब मुझे यानी संजय किशोर को और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद शाहिद सबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे हैं।
2: मीडियम वेव 205.76 मीटर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं पेश है कार्यक्रम नई फिल्मों से।

प्रोग्राम का पहला नगमा आपने सुना मधुबंती बागची और सुमंत मुखर्जी की आवाज़ों में फिल्म हाउसफुल का गीत। अब आइए सुनते हैं सोनू निगम और कृष्ण कलीसाह का गाया गीत परम सुंदरी फिल्म में।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथा लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
1: सुबह की सुहानी धूप में ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
2: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
1: रूबरू होंगे आप खबरों से,
2: देश दुनिया की ताज़ा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
1: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
2: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
1: आकाशवाणी भागलपुर से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर
2: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
1: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
2: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
1: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज पर।
2: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं,
1: तो जरूर सुनिए
0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
2: हम अपने सुनने वालों को बताते चलें, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से और प्रोग्राम का अगला गीत द डिप्लोमेट फिल्म से आवाजें वरुण जैन और रोमी की।

अब्दुल शेख का कह गीत आप सुन रहे थे। तुमको मेरी कसम फिल्म में, और इस गीत के साथ ही समाप्त होता है आज का कार्यक्रम नई फिल्मों से। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता।

दोस्तों नमस्कार आदाब, स्वागत है आपका फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में जिसका नाम आप जान रहे हैं। कार्यक्रम है गुलदस्ता। 30 मिनट का यह कार्यक्रम होता है और इस प्रोग्राम के दौरान हम आपसे करते हैं बातें और सुनवाते हैं कुछ सदाबहार और दिलकश गीत। आज के इस कार्यक्रम के साथ हाजिर है आपका दोस्त इस्माइल, करता है स्वागत और खुश आमदीद। दोस्तों प्रोग्राम का आगाज़ हम करने जा रहे हैं बहुत ही रोमांटिक गीत से, और इससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि हर बात जानते हुए दिल मानता न था, हर बात जानते हुए दिल मानता न था, हम जाने एतबार के किस मरहले में थे।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: हम अपने श्रोताओं को बता दें, इस समय आप सुन रहे हैं गुलदस्ता कार्यक्रम आकाशवाणी भागलपुर के जरिए। और प्रोग्राम में अगला गीत, इससे पहले कहते हैं कि क्या जानिए क्या सोच के अफसुरता हुआ दिल, क्या जानिए क्या सोच के अफसुरता हुआ दिल, मैंने तो कोई बात पुरानी नहीं लिखी।

और हम अपने श्रोता को एक छोटी सी जानकारी देते चलें, आप हमारे प्रोग्राम को रेडियो के साथ साथ न्यूज़ होने या आईआर ऐप के ज़रिए भी सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी।

और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी मरहले पर। एक गीत खास आपके लिए, इससे पहले अंबरीन हसीब अंबर की लिखी दो लाइन हम आपको सुनाना चाहेंगे। कहते हैं कि हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग, हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग, तू जो बिछड़ा तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की।

श्रोताओं, तो इस गीत के साथ ही वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले प्रोग्राम में हम होंगे आपके साथ। आज के इस कार्यक्रम से स्माइल को दे अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना फिल्म संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम गुलदस्ता, ये आकाशवाणी भागलपुर है। दिन के 12 बजे हैं, वही सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम नारी लोक, प्रस्तुत करते हैं श्री पार्वती के।
1: नारी लोक सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के नारी लोक कार्यक्रम में। बहनों, महिलाएं परिवार की धुरी होने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला है। वे भावी पीढ़ी को संस्कारित करती हैं और अपनी बहुआयामी भूमिकाओं जैसे माता, बहन, पत्नी, बेटी के माध्यम से समाज में प्रेम, सहयोग और नैतिक मूल्यों को स्थापित करती है, समग्र विकास की गति को दिशा देती है। बहनों, माँ बच्चों की पहली शिक्षिका और उनके संस्कारों का स्रोत होती है। वे परिवार के वातावरण को सकारात्मक और जीवंत बनाए रखती है, साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, त्याग और सामंजस्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक कुशल गृहिणी की तरह वे सीमित संसाधनों में भी अपने परिवार का बेहतरीन प्रबंधन करती हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता और परिवार में शांति बनी रहे। परिवार को संस्कारित करके वे एक आदर्श और अपराध मुक्त भावी पीढ़ी का निर्माण करती है, जो समाज की आधारशिला है। बहनों, आधुनिक युग में महिलाएं केवल घरेलू कामों तक ही सीमित नहीं हैं, वे देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, राजनीति, शिक्षा, व्यापार और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं और अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रही हैं। भारतीय संस्कृति, कला, रीति रिवाजों को सहेजने और उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करने में हम महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहनों, अब इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: मैं ज्योति कुमारी, ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं, यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर एक प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
4: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
5: अरे मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
4: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
5: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
4: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
1: बहनों, अब हम शुरुआत करते हैं प्यारे प्यारे गीतों और हमारी आपकी बातों से सजे कंपेयरिंग आधारित कार्यक्रम के। आज इसमें हम बातें करेंगे प्रेम की, जो मानव जीवन की सबसे सुंदर, पवित्र और गहन अनुभूतियों में से एक है। ये केवल एक

भावना नहीं बल्कि जीवन को अर्थ, आनंद और ऊर्जा देती है। इसका एहसास मानव हृदय को कोमल बनाता है। प्रेम का अर्थ केवल स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण मात्र नहीं है, ये एक निस्वार्थ भावना है जिसमें त्याग, समर्पण, विश्वास, सम्मान ये सभी शामिल हैं। तभी ये हमारे जीवन को सुरभित करता है। और कहीं न कहीं ये सवाल हम सभी के मन में उठता है कि आखिर इस अद्भुत अलौकिक एहसास की शुरुआत कब और किसने की। वो रंग जिससे पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। तो आप भी विचार कीजिए। तब तक सुनते हैं ये गीत।

बहनों, हमें ऐसा लगता है कि प्रेम कोई भौतिक वस्तु नहीं, ये उस परमात्मा की का अलौकिक उपहार हम मानव के लिए है। ये वो एहसास है जिसे शब्दों में कभी बयान नहीं किया जा सकता। ये उस अनादि अनंत ईश्वर की तरह है जो सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। ये जीवन का सबसे हसीन जज्बा है। बोलने में ये जितना मीठा, इसकी अनुभूति उतनी ही प्यारी है। जब कोई इस अवस्था में पूर्णतः डूबता है तो वो अपने साथी को ही सर्वस्व मानता है, उसी में ईश्वरत्व का भाव आ जाता है।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गाँव में तो पहले मैं 13 नंबर वार्ड का है। मेरा गाँव है सरैया, मोहनपुर पंचायत है। एक काम है उनके वही गली नली है, वहाँ पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका। यही काम बेसी खास बच्चे हैं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। फोन इन बहनों की पसंद की रिकॉर्डिंग 25 जून गुरुवार को दिन के 1:30 बजे से 2 बजे के बीच होनी है। जो बहनें अपने पसंद के गीत सुनना चाहती हैं वे हमें इसी समय अवश्य फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर है 2400981। भागलपुर से बाहर की बहनें एसटीडी कोड 0641 लगाकर हमें कॉल करें। सूचना समाप्त हुई। बहनों, इस अनोखी दुनिया में खोकर कोई बाहर आना ही नहीं चाहता। हम जिसे प्रेम करते हैं खुली आंखों से उसी के सपने देखते हैं। उनके साथ बिताए पलों को हम बार बार दोहराते हैं। हमारा मन सदैव उनका सामीप्य चाहने लगता है, उसकी मुस्कुराहट पर खिल उठता है, उस पर सर्वस्व समर्पित करना चाहता है। और तब ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा ये संबंध आज का नहीं बल्कि युगों युगों का है।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद। श्रोताओं आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं, शांत रहना कमजोरी नहीं, ये समझदारी की निशानी है, क्योंकि हर जवाब शब्दों से ही नहीं लेकिन व्यवहार से भी दिया जाता है। इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको उमंग कार्यक्रम की ओर से हमारा आभार। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, महताब जाटव, मिराज जाटव और अल्ताफ जाटव। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू। जेल रोड कानपुर से सरफुद्दीन फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम कुटरिया। भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल। तो श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि हम हर बार कहते हैं, इस बार भी कहेंगे कि जुड़े रहिए आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। और आइए अब चलते हैं आज की श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं जहां तक गुफाओं की बात है, लगभग सभी अजंता और एलोरा की गुफाओं से परिचित हैं, लेकिन उमंग कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य है उन जानकारियों को उपलब्ध कराना जो लोक संज्ञान में कम है लेकिन पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी तो श्रोताओं, कल हमने बात की थी भीम बैठका की गुफाओं के बारे में, आज हम बात करेंगे कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। कुटुम्बसर की गुफाओं को भारत की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में गिना जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ स्थित हैं। श्रोताओं ये गुफाएं स्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर। ये गुफाएं भूमि से लगभग 35 से 40 मीटर नीचे हैं। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं, लेकिन श्रोताओं जब भी हम ऐसे स्थानों की बात करते हैं तो ये जिज्ञासा जरूर मन में आती है कि इनकी खोज कैसे हुई। तो आपको बता दें कि कुटुम्बसर गुफा का जनजातीय नाम गोपनसर था। सन 1951 की बात है, कुछ स्थानीय चरवाहे एक साही का पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते वे एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां ढेर सारी झाड़ियां थीं, पत्थर भी थे। जब उन्होंने झाड़ियों को थोड़ा हटाया तो क्या देखते हैं कि वहां एक बहुत बड़ी गुफा का प्रवेश द्वार है। जी चरवाहे उस गुफा की बनावट देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वहां चट्टानों के आकार विचित्र थे। वे अद्भुत आकार के थे, जैसे किसी ने उन्हें तराश कर बनाया हो। तो आइए जानते हैं कि उन पत्थरों को तराशने वाला कौन था। श्रोताओं यही तो खास और बड़ी अनोखी बात है कुटुम्बसर की गुफाओं के बारे में। जब विशेषज्ञ यहां पर आए तो उन्होंने पता लगाया कि चट्टानों को तराशने वाली प्रकृति ही थी। यहां पानी हमेशा टपकता रहता है, पानी के लाखों वर्षों से टपकते रहने के कारण इन चट्टानों को आकार मिला। यहां की चट्टानें चूना पत्थर से बनी है। श्रोताओं इन गुफाओं में कुछ आकृतियां तो ऐसी हैं जो किसी पशु, मुख्य रूप से हाथी, बाघ, विशाल मानव आकृति और शिवलिंग की तरह भी दिखाई देती हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, कैसे इन आकृतियों को प्रकृति ने लाखों वर्षों से पानी की बूंदे टपकाकर बनाया, अद्भुत है ना। जी किसी ने लिखा है कि यदि प्रकृति को शिल्पकार के रूप में देखना है तो कुटुम्बसर की गुफाओं में जरूर जाइए। इन गुफाओं के ऊपर भूमि में कई भूमिगत जल के झरने हैं जहां से निरंतर पानी की बूंदे गिरती रहती हैं। वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में अनेक दुर्लभ जीवों के जीवाश्म भी ढूंढे हैं। एक बात और आपको बता दें श्रोताओं कि इन गुफाओं के अंदर हमेशा घुप अंधेरा रहता है। वहां जाने के लिए पर्यटक गाइड्स और शक्तिशाली बैटरियों वाले लैंप्स लेकर ही जाते हैं। अंदर पानी बहता रहता है, लेकिन एक बड़ी रोचक बात है इन गुफाओं की,

0: आपको बताएं क्या है वो? वो ये कि यहां के पानी में जो मछलियां पाई जाती हैं वे अंधी होती हैं, देख नहीं पाती। यहां के अन्य जलज प्राणी भी देख नहीं सकते। लेकिन एक सवाल है श्रोताओं कि भला ऐसा क्यों है, ना ये बड़ी अजीब बात? जी हाँ श्रोताओ, वैज्ञानिकों के अनुसार यहां हमेशा अंधकार रहता है। इससे संभवतः मछलियों और जलज जीवों की आंखें तो हैं, लेकिन उनमें देखने की क्षमता का विकास नहीं हुआ, या फिर धीरे धीरे देखने की क्षमता समाप्त हो गई। एक सिद्धांत ये भी है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार में रहने के कारण उनकी आंखें पूर्ण विकसित नहीं हुई, लेकिन दूसरी इंद्रियां अधिक विकसित हो गई। मछलियां पानी में कंपन, स्पर्श और रासायनिक संकेतों जैसे गंध इत्यादि के माध्यम से रास्ता और भोजन तुरंत पहचान लेती हैं। इसलिए श्रोताओं, कुटुंब स्तर की मछलियों को दुनिया भर में ब्लाइंड केव फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। और हाँ, इन गुफाओं की एक और बड़ी खास बात है, यहाँ के कुछ भागों में यदि फुसफुसा करके भी कुछ कहा जाए तो बड़ी दूर तक ये आवाज सुनाई पड़ती है। श्रोताओं, यहाँ पर कार्यकर्ता इको या गूंज का सिद्धांत। श्रोताओं, ये कहा जा सकता है कि ये गुफाएं वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ के जंतु विकासवाद और भूविज्ञान के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी भारत की एक और रहस्यपूर्ण और अनोखी गुफा कुटुंब सर के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, कुटुंब सर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं? आप हमें हमारे IVRS नंबर 8804405559 पर या ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर इस प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज के हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर शैक्षिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम लीव्स ऑन द ट्री आर फॉलिंग। श्रोताओं, अंग्रेजी का ये सुंदर गीत पतझड़ और वसंत के मौसमों के बीच की प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है और विशेषकर संदेश देता है कि हमें प्रकृति का अवलोकन करके उनके सौंदर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करके हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज।
1: Children, have you ever seen the leaves growing in the tree? The new tender leaves spurting out from the branches? Like the flowers blossoming? Yes, we want to see them as the flowers blossom and leaves grow. But we never see them growing closely. Here is a song which makes you feel that you notice the growing of leaves and blossoming of flowers. Come on, let's sing the song to know and notice. But before we sing it, let's recite the song. Repeat after me, all right?
2: Yes!
1: The leaves on the trees are turning green.

0: इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम। बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
2: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को शत प्रतिशत चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
3: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
2: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
3: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
1: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
2: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
1: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जगतीतल तासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
2: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त

0: तो बन गए। उन्होंने लिखा था,
1: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
0: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
1: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा मुझे ये देखकर आश्चर्य बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
0: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे। गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
2: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: रांची आकर वे कुछ समय के लिए सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की 2 प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
2: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
3: आइए आइए फादर बुलके, आपका स्वागत है।
1: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
3: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
1: जी मैं प्रस्तुत हूं।
3: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के 2 पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
1: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुलके ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी। इस यूरोपीय श्वेत वर्णीय ईसाई पुरोहित को डॉक्टर वर्मा ने प्रारंभ में नौसिखिया समझा था, लेकिन जब उन्होंने व्याख्या पढ़ी तो
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
1: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।

0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।

0: आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 205.76 मीटर और एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है लोकरंग कार्यक्रम, गायिका है रेखा देवी। इनसे पहले सुनिए देवी गीत।

0: टेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: घर सम्मानी कौशल्या देवी खांग पंचायत। गांव के तो बढ़ा रहे हैं कि गली नली बना रहा है, हमको गाँव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सम्मान पा के बढ़िया लगा। गांव का फायदा तो है कि हमको गांव ने पानी गिरे के साधन नहीं था, वो सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: अब आइए सुनते हैं मनोन।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
1: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत श्यामा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: लोकरंग कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं रेखा देवी के गाए लोकगीत। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम को आप पुनः प्रादेशिक समाचार के बाद सुन सकेंगे। और प्रादेशिक समाचार के लिए आइए शामिल होते हैं रांची के प्रसारण में।

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद रांची में स्वास्थ्य विभाग के नव नियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। राज्य के चिकित्सा ढांचे को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का विपक्ष पर तीखा हमला। कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों को चुनावों में मिला करारा जवाब। नामांकन गड़बड़ी की जांच के लिए रिम्स पहुंची सीआईडी की टीम। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, गड़बड़ी में शामिल दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र के समक्ष मजबूती से रखा झारखंड का पक्ष। किसानों के लिए मांगा राहत पैकेज। और संताल दौरे के दूसरे दिन साहिबगंज के बरहरवा पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार। बीएलओ प्रशिक्षण का किया औचक निरीक्षण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नव नियुक्त अभ्यर्थियों को अब से थोड़ी देर बाद नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस विशेष समारोह में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी विशेष रूप से उपस्थित हैं। समारोह के दौरान विशेषज्ञ चिकित्सक, हाथ सुरक्षा पदाधिकारी, सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर जैसे पदों के लिए नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने पहले नारी शक्ति वंदन अधिनियम को खारिज कर डेस्क थपथपाकर जश्न मनाया था, जिसका महिलाओं ने चुनावों में करारा जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि दशकों से लंबित इस ऐतिहासिक कानून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हकीकत में बदला है।
1: नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 33% आरक्षण

0: ने की जो बात थी जो उन्होंने रिजेक्ट किया, तो उनको पता चल गया कि महिलाएं सब बर्दाश्त कर सकती है, अपना अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकती। और जब ये बिल गिरा तो मेज थपथपाकर उन्होंने खुशियां मनाई। तो बंगाल के चुनाव में, आसाम के चुनाव में करारा जवाब उन्होंने दिया है और महिलाओं का उसका अधिकार मिले। कई दशक से ये बिल आ रहा था लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको मूर्त रूप दिया है और आने वाले समय में उनको पूरा अधिकार मिले, इसके लिए सहयोग करें।
1: राज्य में ठोस कचरे से बिजली उत्पादन की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। शहर का कचरा लोगों के लिए परेशानी नहीं बल्कि बिजली का एक नया और पर्यावरण अनुकूल स्रोत बनेगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के जरिए प्रतिदिन ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और ग्रिड को अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति होगी।
2: सिंगल यूज प्लास्टिक से हम बिजली उत्पादन कैसे करें, उसके लिए हम एक विजन प्लानिंग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। एकाध स्टेटों में इस तरह की मॉडल शुरुआत हुई है। जिन स्टेटों पर इस तरह का मॉडल तैयार करके प्रोडक्शन लिया जा रहा है, उसका हम अवलोकन करने की राज्य में भी हम लोग इस तरह का एक दो प्लांट लगाएंगे, ताकि कचरा का कचरा प्रबंधन भी हो जाए और बिजली भी हम उससे ले पाए।
1: इस बीच भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि केवल घोषणाएं करने से धरातल पर काम नहीं होता और पूर्व की कई कल्याणकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। श्री शाह ने कहा कि नगर निगम और प्रशासन पहले शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था को सुधारे, क्योंकि कचरे का सही उठाव न होने से जनता त्रस्त है।
3: सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का स्कीम था, वो करप्शन के भेंट चढ़ गया। छोटे छोटे नगर परिषद आप जाइए या नगर निगम जाइए, वहाँ पर आपको एक ही कहानी मिलेगी, या तो जमीन नहीं मिल रही है, और अगर जमीन मिल भी गई तो वहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट पावर प्लांट है वो कई सालों से नहीं लगा। अन्य योजनाओं की तरह यह भी करप्शन की भेंट चढ़ेगा।
1: राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने धनबाद के बरवाड्डा में पत्रकारों से बातचीत में राज्यसभा चुनाव में गठबंधन उम्मीदवार की हार के लिए भाजपा पर धनबल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य में 200 से अधिक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को लाया गया है और जल्द ही बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जाएंगी। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र सरकार से राज्य के किसानों के लिए राहत पैकेज की मांग की।

0: रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची स्थित रिम्स में नामांकनों में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए झारखंड सीआईडी की टीम अस्पताल पहुंची है। सीआईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने रिम्स प्रबंधन से मुलाकात कर पूर्व में हुए एडमिशन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों और फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बड़ी कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार या अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
1: जांच का आदेश दिया था राज्य के सभी निजी मेडिकल कॉलेज हो या सरकारी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर जो यूजी और पीजी एजुकेशन जो ले रहे हैं, प्रवेश पत्र जो काउंसलिंग जो हुआ था, उसमें कई लोगों ने जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र गलत दे दिया है, भेज दे दिया है। तो उसी के तहत हमने जाँच का आदेश दिया था और 3 संसद मेंबर्स की कमेटी हमने बनाकर थोड़ी जाँच करो।
0: राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संथाल परगना दौरे के दूसरे दिन आज साहेबगंज के सीमावर्ती प्रखंड बरहरवा का दौरा किया। उन्होंने +2 उच्च विद्यालय में बीएलओ और सुपरवाइजरों को दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण किया और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर अंतर्गत सोन पोखरी गांव में खेत की जुताई के दौरान एक पुराना मोर्टार शेल मिलने से कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए सीआरपीएफ के बम निरोधक दस्ते की मदद से इस भारी विस्फोटक को सुरक्षित कर दिया है। पुलिस के अनुसार सेना की विशेषज्ञ टीम की जाँच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेडियो फरमाइशों के लिए दुनिया भर में मशहूर कोडरमा का डुमरी तिलैया अब एक खास मिठाई के लिए विश्व मानचित्र पर चमकेगा। ये मिठाई केसरिया कलाकंद है जो जीआई टैग पाने वाला राज्य का एकमात्र खाद्य पदार्थ बन गया है। 60 के दशक में विभाजन की त्रासदी झेलकर पाकिस्तान से आए हंसराज और मुल्कराज भाटिया परिवार ने इस हुनर की नींव रखी थी। इस उपलब्धि से स्थानीय व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई उड़ान मिलेगी।
2: 60 साल पहले हम लोग पाकिस्तान से जो डिवाइड हुआ उसके बाद में यहाँ के बसे हम लोग तिलैया में मिठाई की दुकान खोली और सबसे फर्स्ट कलाकंद हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। इतना फेमस हुआ कि फॉरेन तक गया। फादर का ये प्रोडक्ट है, जीआई टैगिंग हमको मिल रही है, इसका सुन के बहुत ही खुशी हुई है और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं।
0: आज दोपहर के सेशन में घरेलू इक्विटी इंडेक्स लगभग 0.7% ऊपर ट्रेड कर रहे थे। सेंसेक्स 603 अंक बढ़कर 76,804 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 154 अंक बढ़कर 23,978 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,800 रुपये प्रति ग्राम 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,35,000 रुपये प्रति किलो है। 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सुरक्षित और सुगम यात्रा को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत और नए सुरक्षा केंद्रों की स्थापना से नागरिक सेवाएं अधिक पारदर्शी और सुलभ हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद रांची में स्वास्थ्य विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। राज्य के चिकित्सा ढांचे को मिलेगी मजबूती। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का विपक्ष पर तीखा हमला, कहा नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों को चुनावों में मिला खरारा जवाब। नामांकन गड़बड़ी की जांच के लिए रिम्स पहुंची सीआईडी की टीम। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा गड़बड़ी में शामिल दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कानूनी कार्रवाई। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र के समक्ष मजबूती से रखा झारखंड का पक्ष। किसानों के लिए मांगा राहत पैकेज और संताल दौरे के दूसरे दिन साहेबगंज के बरहरवा पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, बीएलओ प्रशिक्षण का किया औचक निरीक्षण। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाश आकाशवाणी।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं मिराज अहमद ग्राम पंचायत अमथुआ प्रखंड काको जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है वहाँ पार्क बनवाया जाए और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया है कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए विवाह गीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पठिया पंचायत से ज्योति कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं ज्योति कुमारी, ग्राम पंचायत राज मठिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज मैंने जितने सारे कार्यों का वर्णन हम सभी मुखिया जी इस प्लेटफॉर्म पे आके वर्णन कर रहे हैं, यह सारी की सारी छुपी रह जाती अगर अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान सहयोग करके हमारे धरातल को, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ उभार कर मंच प्रदान नहीं करती। तो आज इस मंच पे आके हम सभी प्रतिभागी यहाँ पर अपने आप को गौरवपूर्ण महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए फिर से एक बार अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में आपने सुना रेखा देवी के गाए लोकगीत, प्रसारण आकाशवाणी भागलपुर से किया गया। 1:30 बजने वाले हैं, प्रस्तुत है घरांगन कार्यक्रम, प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

सभी श्रोता बहनों को आरू का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, पर्यावरण परिवर्तन के कारण हम सभी का जीवन भी बदल गया है और दुखद बात यह है कि यह बदलाव सकारात्मक नहीं है। समय पर वर्षा का नहीं होना, जानलेवा 40 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का होना, अत्यधिक बाढ़ आना या कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ना और इन समस्याओं की वजह से हमारा कृषि उपज भी सामान्य नहीं होता और कभी कभी तो पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है। और बहनों, तकनीकी

0: नतीसे बेहतर जीवन स्तर के लिए हम सब एक ऐसी अंधी चूहा दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं कि हमारा जीवन ही दौड़ने में खप सा जाता है। सुकून और चैन के साथ आनंद से कैसे रहना है, ये तो हम सब भूल ही गए हैं। लेकिन बहनों, जिंदगी में जितना अपने सपनों के लिए भागना महत्वपूर्ण है, उतना ठहरना भी। इससे बहनों, हमारे जीवन में ना सिर्फ एक सामंजस्य बना रहेगा, बल्कि बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसलिए होती है कि हम हमेशा किसी न किसी वजह से परेशान रहते हैं, किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं। साथ ही बहनों, लोगों से मिलना जुलना, घूमना फिरना भी जरूरी है, आखिर हैं तो हम सब इंसान ही। साथी बहनों, ये घूमना फिरना अपने देश के अलग अलग क्षेत्रों के रीति रिवाज, परंपराओं को समझने के लिए तो आवश्यक है ही, साथ ही अगर आपको मौका मिले दूसरे देशों में जाके वहाँ की संस्कृति को समझने का, तो यह भी बहुत अच्छा है, अहो भाग्य है। लेकिन बहनों, दूसरे देश में प्रवेश करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पासपोर्ट की। बहनों, वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में किसी भी देश के नागरिक के लिए पासपोर्ट मात्र एक दस्तावेज नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी राष्ट्रीयता, पहचान और संप्रभुता का सबसे बड़ा प्रतीक है। भारत जैसे तेजी से उभरते हुए और गतिशील देश में, जहां करोड़ों नागरिक शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और पर्यटन के लिए विदेशों का रुख कर रहे हैं, वहां पे एक पारदर्शी, सुरक्षित और त्वरित पासपोर्ट प्रणाली का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी आवश्यकता और इस क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व सुधारों को रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 24 जून को पूरे देश में राष्ट्रीय पासपोर्ट सेवा दिवस अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिवस हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के एक अत्यंत सफल और नागरिक अनुकूल डिजिटल कायाकल्प की कहानी को बयां करता है। बहनों, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इस विशेष दिन को चुनने के पीछे एक गहरा ऐतिहासिक कारण है। दरअसल 24 जून 1967 को ही तत्कालीन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद स्वतंत्र भारत का पहला पासपोर्ट अधिनियम लागू हुआ था। बहनों, 1967 के पासपोर्ट अधिनियम से पहले भारत में पासपोर्ट जारी करना पूरी तरह से एक प्रशासनिक और विवेकाधीन निर्णय माना जाता था। सरकार तय करती थी कि किसे विदेश जाने की अनुमति दी जाए और किसे नहीं। लेकिन 1967 में सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद इस अधिनियम को पारित किया गया। इस कानून ने यह स्थापित किया कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को विदेश यात्रा करने और उसके लिए पासपोर्ट प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, जिसे कानूनी प्रक्रिया के बिना छीना नहीं जा सकता। इसने पासपोर्ट जारी करने, अस्वीकार करने और रद्द करने की एक स्पष्ट, कानूनी और पारदर्शी प्रक्रिया तय की। इस प्रकार 24 जून का दिन भारतीय नागरिकों को एक बड़ा लोकतांत्रिक अधिकार मिलने का प्रतीक बन गया। बहनों, एक समय था जब भारत में पासपोर्ट बनवाना किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के बाहर लंबी कतारें, एजेंटों और दलालों का बोलबाला, महीनों तक पुलिस सत्यापन का इंतजार और कार्यालयों के अनगिनत चक्कर काटने के बाद भी पासपोर्ट का ना मिल पाना एक आम बात थी। लेकिन 21वीं सदी में भारत सरकार ने इस पूरी व्यवस्था को बदलने का निर्णय लिया। वर्ष 2010 में विदेश मंत्रालय ने TCS के साथ मिलकर सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल के तहत पासपोर्ट सेवा परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना ने देश में पासपोर्ट क्रांति का सूत्रपात किया। बहनों, पारंपरिक धूल धूसरित सरकारी कार्यालयों की जगह आधुनिक वातानुकूलित और अत्याधुनिक तकनीक से लैस पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसे हम संक्षिप्त में PSK कहते हैं, खोले गए, जहां टोकन प्रणाली और डिजिटल ट्रैकिंग से काम होने लगा। साथ ही बहनों, देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को राहत देने के लिए विदेश मंत्रालय ने डाक विभाग के साथ हाथ मिलाया। इसके तहत देश के प्रमुख शहरों के मुख्य डाकघरों में ही डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किए गए। वर्ष 2014 में जहां देश में केवल 77 पासपोर्ट केंद्र थे, वहीं आज देश के कोने कोने में 500 से अधिक PSK और POPSK सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बिहार के सुदूर क्षेत्रों जैसे दरभंगा, पश्चिमी चंपारण तक अब इन केंद्रों का जाल फैल चुका है, जिससे हर लोकसभा क्षेत्र इस सेवा से जुड़ गया है। बहनों, सरलीकरण और नागरिक अनुकूल सुधार तकनीकी बदलावों के साथ साथ सरकारों ने नियमों का भी सरलीकरण किया है, जिससे समाज के हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं, अनाथ बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रक्रिया बेहद सुगम हो गई है। पहले बहनों, जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में केवल जन्म प्रमाण पत्र की अनिवार्यता थी, लेकिन अब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को भी मान्यता दे दी गई है। बहनों, विवाहित महिलाओं के लिए शादी का प्रमाण पत्र देने या तलाकशुदा महिलाओं के लिए पूर्व पति का नाम लिखने की बाध्यता को भी खत्म कर दिया गया है। साथ ही बहनों, पहले पुलिस वेरिफिकेशन में महीनों लग जाते थे और भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती थी। अब एम पासपोर्ट पुलिस ऐप के जरिए पुलिसकर्मी सीधे मौके पर जाकर टैबलेट या स्मार्टफोन से डिजिटल रिपोर्ट भेजते हैं, जिससे सत्यापन का समय घटकर मात्र कुछ दिन रह गया है। बहनों, एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप के माध्यम से नागरिक अपने फोन से ही आवेदन कर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। साथ ही डिजी लॉकर के एकीकरण से अब कागजी दस्तावेज साथ ले जाने की जरूरत भी कम हो गई है। बहनों, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक कूटनीति मजबूत हो रही है, भारतीय पासपोर्ट की ताकत और इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 में जहां भारत में सालाना लगभग 91 लाख पासपोर्ट जारी होते थे, वहीं वर्तमान दशक में यह संख्या बढ़कर प्रतिवर्ष 1.46 करोड़ से अधिक हो गई है। यह वृद्धि भारतीय नागरिकों की बढ़ती वैश्विक आकांक्षाओं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पर्यटन को दर्शाती है। आज दुनिया के कई देश भारतीय नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल और वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा दे रहे हैं, जो वैश्विक पटल पर भारत की बढ़ती साख का प्रमाण है। बहनों, भारतीय पासपोर्ट सेवा अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। भविष्य की बढ़ती सुरक्षा और चुनौतियों को अंतर्राष्ट्रीय विमानन मानकों को ध्यान में रखते हुए सरकार दो महत्वपूर्ण मोर्चों पर काम कर रही है। पहला है ई पासपोर्ट और दूसरा है पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम। बहनों, राष्ट्रीय पासपोर्ट सेवा दिवस केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि का उत्सव नहीं है, बल्कि यह इस बात का जीवंत उदाहरण है कि कैसे सही नीति, आधुनिक तकनीक और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के माध्यम से सरकारी सेवाओं को पूरी तरह से नागरिक केंद्रित बनाया जा सकता है। जिस पासपोर्ट को पाने के लिए कभी लोग महीनों तक कतारों में खड़े रहते थे, वह आज न्यूनतम समय में पारदर्शिता के साथ नागरिकों के घर तक स्पीड पोस्ट से पहुंच रहा है। पासपोर्ट सेवा की यह अभूतपूर्व सफलता डिजिटल इंडिया और गुड गवर्नेंस के सपनों को साकार करती है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर केंद्रीय पासपोर्ट संगठन और इससे जुड़े सभी हितधारकों की सराहना की जानी चाहिए, जो भारत के नागरिकों को वैश्विक नागरिक बनने के सफर को सुगम, सुरक्षित और सम्मानजनक बना रहे हैं। बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ संदेशों को।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। श्री यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन हैं यशस्वी मुखिया।
2: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत ग्यामा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
0: बहनों, एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। तो बहनों, अब सफर शुरू करते हैं कुछ गीत संगीत का, तो सुनते हैं यह लोकगीत।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। मोहनपुर पंचायत से ओम रानी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मेरा नाम है रानी देवी, मैं भागलपुर जिला को है। मेरे गाँव में पहले मैं 13 नंबर वार्ड का है। मेरा गाँव है सरैया, मोहनपुर पंचायत है। एक काम है बुंकी हुई गली नली है, वहाँ पानी फंस रहा है, वो पानी निकलना की जरूरी है उसका। यही काम बेसी खास बच्चे है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ता का विषय है आंगन की देहरी और नारी स्वावलंबन, और वार्ताकार हैं श्रीमती विद्या भारती।

0: कार्य से है, जिससे कि कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। इस प्रथा को कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शोषित करने वाली प्रक्रिया माना है। अतीत में बाल श्रम का कई प्रकार से उपयोग किया जाता था, लेकिन सार्वभौमिक स्कूल शिक्षा के साथ औद्योगिकरण, काम करने की स्थिति में परिवर्तन तथा कामगारों, श्रमाधिकार और बच्चों के अधिकार की अवधारणाओं के चलते इसमें जन विवाद प्रवेश कर गया। बाल श्रम अभी भी कुछ देशों में आम बात है। मानव जीवन में बाल्यावस्था यानी बचपन सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों को सांसारिक जिम्मेदारियों की कोई जानकारी नहीं होती है, पर उससे श्रम करवाया जाता है। कभी कभी तो स्थिति काफी अमानवीय हो जाती है। बच्चे तनाव एवं बोझ से लद जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में गरीबी भी महत्वपूर्ण कारक है। गरीब परिवार में बच्चों को छोटी उम्र से ही अपने एवं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मेहनत करना पड़ता है। ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं है, फिर भी करना पड़ता है। अपने देश भारतवर्ष में भी बाल श्रम बड़े पैमाने पर होता है। उद्योग धंधे से लेकर कृषि कार्य, घरेलू सेवा में, पर्यटन, होटल, रेस्तरां इत्यादि जगहों पर हम आसानी से बाल श्रम देख सकते हैं। बाल श्रम में लड़के एवं लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। यहां लड़कियों की स्थिति काफी दयनीय होती है एवं उन्हें भावनात्मक चोट भी पहुँचती है। बाल श्रम बच्चों के बुनियादी अधिकारों पर हमला है। बच्चे मानसिक एवं शारीरिक रूप से उम्र से पहले ही परिपक्व भी हो जाते हैं। बच्चों पर रसायन, शोर, प्रदूषण और गर्मी आदि दुर्घटना का प्रभाव पड़ता है। इससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। बाल श्रमिकों की एक बड़ी संख्या खनन, परिवहन और निर्माण क्षेत्रों में लगा है। सरकार की ओर से बाल श्रम निषेध के लिए कई कानून बनाए गए हैं। बाल श्रम लॉ है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवाना है। भारत में कई कानून बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के अधिनियमित किया गया है, जो इस प्रकार है। बाल श्रम अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952। अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक वातावरण में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 21 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों का शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 39 बच्चों को एक स्वस्थ, सुविधापूर्ण, स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जीने की व्यवस्था करता है। घरेलू कार्य में लगे बाल श्रम के मामले में सरकार ने विशेष सख्ती बरती है एवं प्रतिबंध भी लगाया है, क्योंकि इनमें बालिकाएं ज्यादा संलग्न है। सरकार की ओर से विशेष परिस्थितियों में बच्चों की मदद करने के लिए एक विशेष सेल की भी व्यवस्था की गई है। बाल श्रम निषेध कानून होने के बावजूद भी बाल श्रम थम नहीं रहा है। हमारी सोच इतनी विस्तृत नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। महिलाओं एवं बच्चों के बीच एक संवेदनापूर्ण भावना होती है। महिलाएं बच्चों की दुर्दशा देख नहीं पाती हैं। महिलाओं की जागरूकता से बाल श्रम पर अंकुश लगाया जा सकता है। महिलाएं घर परिवार से लेकर गली, गांव, चौक, चौराहों हर ओर से आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं अपने परिवार के बच्चों के समुचित विकास के लिए प्रयासरत हैं। वे संघ एवं समुदाय बनाकर गरीब बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। हमारे गली में बुद्धिजीवी वर्ग की महिलाएं बच्चों को अपने खर्च से शिक्षित कर रही हैं। गरीबी में पल रहे बच्चों को शिक्षित करना भी एक जिम्मेवारी का काम है। समाज में महिलाओं को यह भी देखना चाहिए कि यदि कहीं बाल श्रम लिया जा रहा है तो इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को दे एवं उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही कराए, ताकि इस पर रोक लगे। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हर महिला का यह फर्ज बनता है कि वह बाल श्रम को रोकने के लिए पुरजोर प्रयास करे एवं बच्चों को शिक्षित होने के लिए प्रेरित करे। साथ ही गरीबी में पल रहे बच्चों के माँ बाप को भी समझाए कि यह उचित नहीं है कि बच्चों से श्रम न करवाकर उन्हें शिक्षित करे। हर महिला की यह सोच बननी चाहिए कि वह अपने प्रयास से जहाँ तक हो सके एक गरीब बच्चे को शिक्षित करे एवं उन्हें अपने पैर पर खड़ा होने में सहायता करे।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। खांग पंचायत से कौशल्या देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: घर सम्मानी कौशल्या देवी खांग पंचायत। गाँव के तो बढ़ा रहे हैं कि गली नली बना रहा है, हमको गाँव ने अथी पंचायत भवन नहीं बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहे हैं मगर नहीं हो रहा है, आगे बढ़ाने चाह रहा है। ये सम्मान पा के बढ़िया लगा। गांव का फायदा तो है कि हमको गांव में पानी गिरे के साधन नहीं था, वो सब के बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: बहनों अभी आप सुन रही थी एक पूर्व प्रसारित वार्ता। वार्ता का विषय था बाल श्रम निषेध कानून के अनुपालन में महिलाओं की भूमिका और वार्ताकार थी अनिमा कुमारी। इसी के साथ बहनों समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आशा करती हूँ कि आपको कार्यक्रम पसंद आया हो। सभी को आरू का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन, ये आकाशवाणी भागलपुर है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे पटना केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय चयन परिषद आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन कर रहा है। परीक्षा का आयोजन दो पालियों में किया जा रहा है, इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इधर रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चला रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज भी 18 परीक्षा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत विभिन्न स्टेशनों के बीच चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय से प्राप्त सूचना के अनुसार शाम 5 बजे सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में यह बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बकचपरा गंगा घाट पर गंगा नदी में स्नान के दौरान 5 युवतियां डूब गईं। इनमें से 3 युवतियों का शव बरामद किया गया है, वहीं अन्य 2 की तलाश की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। इधर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकारामपुर गंगा घाट पर डूबने से एक युवक की मौत हो गई। राजधानी पटना में गिग वर्कर्स के लिए अत्याधुनिक एसी लाउंज की सुविधा शुरू कर दी गई है। नगर विकास और आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने गांधी मैदान और आयकर गोलंबर के पास बनाए गए विशेष एसी लाउंज का निरीक्षण किया। लाउंज में शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जिंग सहित विभिन्न सुविधाएं दी गई हैं। पटना देश का तीसरा शहर है जहां गिग वर्कर्स के लिए विशेष एसी लाउंज सुविधा विकसित की गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के उत्तरी भागों में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की संभावना है। इधर राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अनेक स्थानों पर लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने इन स्थानों पर अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रोहतास जिले के डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीसैप परिसर में आज 1355 महिला सिपाहियों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया और नई जिम्मेदारी की शपथ ली। बीसैप 2 की समादेष्टा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। नालंदा, पटना और गोपालगंज जिला बल से संबद्ध इन महिला सिपाहियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर जिम्मेदारी संभाल ली है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में आज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉड की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध कारोबार पर नियंत्रण के साथ ही नशे के विरुद्ध जागरूकता को लेकर चर्चा की गई। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर रेलमंडल अंतर्गत हाथीदह और बेगूसराय स्टेशन के बीच राजेंद्र पुल पर आज सुबह ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार टूट जाने से रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। रेल अधिकारियों के अनुसार इसे ठीक कर लिया गया है और रेलखंड पर परिचालन बहाल हो गया है। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग पर पुलिस लाइन के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड आज रियासत में मुख्तलिफ मराकज पर बिहार पुलिस में सिपाही इम्तहान का इनाकाद कर रहा है। इम्तहान का इनाकाद 2 नशस्तों में किया जा रहा है। इसे मद्देनज़र रखते हुए तहफ़ के मुनासिब इंतज़ाम किए गए हैं। सभी मराकज़ पर मजिस्ट्रेट की निगरानी में पुलिस दस्ता को तैनात किया गया है। इधर रेलवे उम्मीदवारों की सहूलत के लिए कई स्पेशल ट्रेन चला रहा है। मशरक़ी वस्त रेल के चीफ पब्लिक रिलेशन अफसर सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज 18 इम्तहान स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत मुख्तलिफ स्टेशनों के बीच चलाई जाएगी। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी की सदारत में आज रियासती काबीना का एक अहम इजलास मुनक़िद किया जाएगा। काबीना सेक्रेटरीट से मौसूल इत्तला के मुताबिक यह इजलास शाम 5 बजे सेक्रेटरीट में वाक़ काबीना हॉल में होगा। इजलास में कई अहम तजावीज़ पर तबादला ख्याल की उम्मीद है। मुंगेर ज़िला के मुफसिल थाना हलका के तहत श्यामपुर बकचपरा गंगा घाट पर गंगा नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चियों की मौत डूबने से हो गई। इनमें से 3 बच्ची की लाश निकाली गई है, वहीं दीगर 2 की तलाश जारी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर जाए वकूफ पर कैंप कर रहे हैं। इधर मुफसिल थाना हलका के तहत टीकारामपुर गंगा घाट पर डूबने से 1 नौजवान की मौत हो गई। राजधानी पटना में गिग वर्कर्स के लिए जदीद तरीन AC लॉन्च की सहूलत शुरू हो गई है। वजीर शहरी तरक्यात व रहाइश नीतीश मिश्रा ने गांधी मैदान और इनकम टैक्स गोलंबर के करीब बनाए गए खसूसी AC लॉन्च का जायजा लिया। लॉन्च में साफ पीने के पानी, मोबाइल चार्जिंग समेत कई सहूलतें दी गई हैं। पटना मुल्क का तीसरा शहर है जहाँ गिग वर्कर्स के लिए खसूसी AC लॉन्च की सहूलत को फ़रोग दिया गया है। रियासत के शुमाली हिस्सों में मानसून की सरगर्मी से बारिश का दौर जारी है। महकमे मौसमियात ने आज मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया समेत रियासत के शुमाल मगरब और शुमाल वस्त हिस्सों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई मकामात पर बिजली गिरने का भी खदशा है। इधर रियासत के जनूब मगरब हिस्सों में सख्त गर्मी पड़ रही है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा समेत रियासत के जनूबी हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात पर लू की सूरत हाल बनी रहेगी। महकमा ने इन मकामात पर आइंदा 48 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक के इजाफा का इम्कान जाहिर किया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ रियासत का गर्म तरीन मकाम रहा। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतास जिला के डेहरी वाके बिहार स्पेशल मुसल्लह पुलिस बी सैप कैंपस में आज 1355 खवातीन सिपाहियों ने पासिंग आउट परेड में शिरकत की और नई जिम्मेदारी का हलफ लिया। बी सैप 2 की कमांडेंट और सीनियर आईपीएस अफसर लिपि सिंह ने परेड का मुआयना किया। नालंदा, पटना और गोपालगंज जिला फोर्स से मुतालिक इन खवातीन सिपाहियों ने कामयाबी के साथ तरबियत मुकम्मल करके जिम्मेदारी संभाल ली है। अररिया के जिला मजिस्ट्रेट विनोद दुहन की सदारत में आज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर का जिला सतह का जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में मनशियात की स्मगलिंग और उसके गैर कानूनी कारोबार पर काबू पाने के साथ साथ नशे के खिलाफ बेदारी के हवाले से तबादले ख्याल किया गया। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर रेलवे डिवीज़न के तहत हाथीदह और बेगूसराय स्टेशनों के दरमियान राजेंद्र पुल पर आज सुबह ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार टूट जाने से ट्रेनों की आमद रफ्त मुतासिर हुई। रेलवे हुकाम के मुताबिक इसे ठीक कर लिया गया है और रेल रूट पर आमद रफ्त बहाल कर दी गई है। सुपौल जिला के सदर थाना इलाके के तहत सहरसा सुपौल मेन रोड पर पुलिस लाइन के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से एक किसान शदीद जख्मी हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म होता है।
2: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के हर एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप दोपहर समाचार सुनेंगे दिल्ली केंद्र से।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ

0: इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि साध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने साध्यक्ष के तौर पर पाकिस्तान के आचरण की आलोचना की। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में पी हरीश ने जम्मू कश्मीर पर भारत के लंबे समय से चले आ रहे रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है।
1: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। ये हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
0: ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने सुरक्षा स्थिति में सुधार को देखते हुए भारतीय नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय दूतावास ने कहा कि बदलते घटनाक्रमों के बावजूद भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचना चाहिए। बहुत आवश्यक होने पर ईरान यात्रा करने वालों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने तथा स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह दी गई है। विश्वसनीय स्रोतों के जरिए स्थानीय घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है। लोगों से दूतावास को अपने बारे में जानकारी देने की सलाह दी गई है। ताजा जानकारी और आगामी परामर्श के लिए दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार नजर बनाए रखने को कहा गया है। किसी भी तरह की सहायता के लिए दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर है +98912810915। दूसरा नंबर है +98912810909। तीसरा नंबर +98912810902 और चौथा नंबर है +98993217935। इसके अलावा भारतीय नागरिक cons.tehran@mea.gov.in पर ईमेल के जरिए भी दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि समान मूल्यों और आपसी विश्वास वाले देशों को और अधिक निकटता से मिलकर काम करना चाहिए। सियोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ये बात कही।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बैठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 3 दिन की खाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसका उद्देश्य ईरान के साथ हुए नए संवाद और समझौते के बाद प्रमुख अरब सहयोगियों को विश्वास दिलाना है।
1: 4 महीने से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ नया समझौता किया है। श्री रूबियो कल देर रात अबू धाबी पहुंचे। उनका संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में बातचीत का कार्यक्रम है। इस सप्ताह के अंत में वे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे क्षेत्रीय सहयोगियों को अमरीका और ईरान के बीच लागू अंतरिम शांति समझौते और संभावित अंतिम समझौते के ढांचे के बारे में जानकारी देंगे। यात्रा से पहले श्री रूबियो ने कहा कि उनकी यात्रा उद्देश्य ईरान और अमेरिका की बातचीत में खाड़ी देशों की राय को महत्व देना है। उन्होंने कहा कि

0: से पूरी सरकार चलनी है, सेंट्रल विस्टा और यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के जितने भी कार्यालयों में काम करने वाले सब लोग, उनको एक ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए आज भूमि पूजन अथवा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आज ये की गई है। और ये जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद दिल्ली के बहुत से छोर आपस में जहाँ जहाँ मेट्रो लाइन चलती है उनको ये जोड़ेगी। अब ये जो लाइन है ये आर के आश्रम से लेकर के और इंद्रप्रस्थ तक, जिसके अंदर 9 स्टेशन है।
1: केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ताराताला के पास निर्माणाधीन गोदाम के छत गिरने से 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है। मलबे में कुछ और लोग फंसे हुए हैं। अग्निशमन और आपातकालीन सेवा कर्मी तथा पुलिस बल मौके पर पहुंच चुके हैं। बचाव अभियान जारी है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। ये दिन 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण का क्रियान्वयन, चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत, नए पासपोर्ट सुरक्षा केंद्रों और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना तथा रिकॉर्ड स्तर पर पासपोर्ट जारी करने से यात्रा सुगम हो रही है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सेवा, सुशासन और नागरिक सुविधा के संकल्प के साथ इंडिया पोस्ट द्वारा संचालित डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के माध्यम से पासपोर्ट सेवाएं देश के सुदूर क्षेत्रों तक भी पहुंच रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि रानी दुर्गावती एक वीर रानी और नारी शक्ति का प्रतीक थी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रानी दुर्गावती ने अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा में अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक और मध्य महाराष्ट्र में भी अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम रह सकता है। असम, मेघालय, कर्नाटक के भीतरी भाग, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 29 तारीख तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में शनिवार तक तेज हवा के साथ वर्षा का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में तेज बारिश से असम के विभिन्न सीमावर्ती जिले के निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि असम में सभी संबंधित विभाग हाई अलर्ट पर हैं।
2: अरुणाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के बाद असम में संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संभावित एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। इसके परिणाम स्वरूप असम में धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ और सोनितपुर सहित निचले क्षेत्रों में नदियों के जलस्तर और प्रवाह की गति में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। अगले 1 से 2 दिनों में बाढ़ का पानी और आगे के क्षेत्रों की ओर बढ़ सकता है। SDRF, NDRF और अन्य इमरजेंसी रेस्पॉन्स दलों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया है। निचले तथा बाढ़ संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश पालन करने, जलमग्न क्षेत्रों से दूर रहने तथा छोटी नावों से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: हॉकी इंडिया ने 5 से 14 जुलाई तक ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम नए कोच टिम वाइट के नेतृत्व में जूनियर एशिया कप सहित आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के सिलसिले में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में 7 मैच खेलेगी। खैदम शिलेमा चानू टीम की कमान संभालेंगी, जबकि निधि और एंगल हर्षारानी मिंज गोलकीपर की जिम्मेवारी संभालेंगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मैक्सिको में खेले गए ग्रुप के मैच में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली। डैनियल मुनोज के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से कोलंबिया ने लगातार दूसरी जीत हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले पुर्तगाल ने ह्यूस्टन में इसी ग्रुप के एक मैच में उज्बेकिस्तान को 5-0 से हराया।

0: 41 वर्षीय क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दो शानदार गोल की बदौलत पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत दर्ज की। रोनाल्डो अब 6 अलग अलग विश्व कप टूर्नामेंट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 908 अंक की उछाल के साथ 77,109 पर, जबकि निफ्टी 241 अंक बढ़कर 24,065 पर कारोबार कर रहा था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में स्थित ऐतिहासिक हेमिस मठ में आज उत्साह और श्रद्धा के साथ हेमिस उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिन के उत्सव में देश विदेश के हजारों श्रद्धालु, पर्यटक, संस्कृति प्रेमी और बौद्ध विद्वान शामिल हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला हेमिस उत्सव लद्दाख के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में से एक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान पर सहअध्यक्ष के तौर पर अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ईरान में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए संशोधित परामर्श जारी कर गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी। कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और अचानक बाढ़ के बाद असम में हाई अलर्ट। हॉकी इंडिया ने अगले महीने ब्रिटेन दौरे के लिए 24 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 205.76 मीटर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 2:30 बजे हैं। पेश है फिल्मी गानों का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला गीत परदेसी बापू फिल्म से गायक कलाकार उदित नारायण।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
3: तिलका मांझी तो बहुत।
2: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
4: बख्शी जगबंधु तो
3: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
5: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।

0: गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
1: सुबह के सुहानी धूप में ओस की नन्ही नन्ही बूंदों के साथ आकाशवाणी भागलपुर आपके लिए लेकर आया है जानकारियों का खजाना।
2: कई स्थापित कार्यक्रमों के साथ हम आपको लिए चलेंगे मनोरंजन की दुनिया में।
1: रूबरू होंगे आप खबरों से,
2: देश दुनिया की ताज़ा जानकारी और स्थानीय हलचलों को आप जान पाएंगे एक नए अंदाज में।
1: और ये सब होगा आकाशवाणी भागलपुर की प्रस्तुति गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में।
2: सुनिए हर दिन प्रातः 7 बजे से 7:55 तक
1: आकाश

0: आकाशवाणी भागलपुर से, मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: भागलपुर से गुजरने वाली ट्रेनों का हाल जानिए,
0: साथ ही हाल जानिए मौसम का।
1: मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला के अंतर्गत
0: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: इसे आप मोबाइल पर न्यूज ऑन AIR ऐप डाउनलोड करके भी सुन सकते हैं,
0: तो जरूर सुनिए गुड मॉर्निंग विक्रमशिला।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम को हम आगे भी जारी रखेंगे, फिलहाल एक सूचना सुनिए। फोन इन बहनों की पसंद की रिकॉर्डिंग 25 जून दिन गुरुवार को 1:30 से 2 बजे के बीच होनी है। जो बहनें अपने पसंद के गीत सुनना चाहती हैं वे हमें इसी समय फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर है 2400981। भागलपुर से बाहर की बहनें STD कोड 0641 लगाकर हमें कॉल करें। सूचना समाप्त हुई और प्रोग्राम का अगला गीत चल मेरे भाई फिल्म से।

कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया गीत आप सुन रहे थे चमत्कार फिल्म में। प्रोग्राम के आखिर में सुनिए कुमार सानू का गाया गीत, फिल्म है डुप्लीकेट।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अमथुआ पंचायत से मिराज अहमद हैं यशस्वी मुखिया।
1: मैं मिराज अहमद, ग्राम पंचायत अमथुआ, प्रखंड काको, जिला जहानाबाद। बेहतरीन छठ घाट बनाना है तालाब किनारे जो है, और उसके बाद वहाँ पर पूरा चबूतरा बनाया बैठने के लिए जो है, वहाँ पार्क बनवाया जाए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है बर्थिन लोग को बहुत दिक्कत होती थी कपड़ा चेंजिंग करने के लिए, वहाँ पर चेंजिंग रूम हमने बनवाया है कि जो ऐसा प्रोग्राम जिन्होंने कराया है ये काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।
2: रविंद्र संगीत में समय आप सुन रहे हैं कनिका बनर्जी को।

रविंद्र संगीत में भी आप सुन रहे थे कनिका बनर्जी को। हम आकाशवाणी भागलपुर से बोल रहे हैं। समूह स्वर में सुनिए देशभक्ति गीत।

0: समोसर में आपने सुना देशभक्ति गीत। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब से संध्या 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम और संध्या 5 बजे से आकाशवाणी भागलपुर के कार्यक्रम। विविध भारती के कार्यक्रम के लिए आइए शामिल होते हैं दिल्ली के प्रसारण में।
1: सुंदरता है, लेकिन उन्हें सम्मान के साथ स्वीकारना उतना ही आवश्यक है।
2: हाँ, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए। कोई किस विचारधारा का हो सकता है, कोई किसी विचारधारा का। हम अपनी विचारधारा उस पर थोपे नहीं, और विचारों में अपने का अंतर होना स्वाभाविक है, लेकिन छोटी छोटी बातों से जो बड़े विवाद होते हैं उनसे भी हमें बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, किसी पोस्ट पर, किसी फोटो पर, वीडियो पर या समाचार पर एक छोटी सी टिप्पणी से बहस शुरू हो जाती है, और वो बहस इतनी लंबी हो जाती है कि व्यक्तिगत हो जाती है ये चीजें, और एक दूसरे को हम भला बुरा कहने लग जाते हैं, आरोप देने लग जाते हैं।
1: और एक बात है ना मंदाकिनी जी, कि जो शब्द होते हैं ना उसमें भावनाएं नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको ऐसी कोई बात हंसते हंसते बोल दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पर वही बात जब मैं मैसेज के रूप से मैं आपको लिखूंगी तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लग सकता है कि इन्होंने ऐसे कैसे लिख दिया।
2: हाँ, हाँ।
1: तो लिखना नहीं, अगर आपको बोलना भी है तो कोई बात आप बोल कर लिखिए, ना कर लिखिए। और जब हम ये लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है।
2: हाँ,
1: तो हम ये समय जो होता है ना बहुत अनमोल होता है। तो सोशल मीडिया पर बेवजह बहस करते करते लोगों को पता ही नहीं चलता कि कितना समय व्यर्थ हो गया। समय है जो परिवार, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य, स्वयं के विकास में जो लगाया जा सकता है वो हम बिल्कुल पूरे टाइम बर्बाद कर देती
2: है। और इससे क्या होता है सोनाली, हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती
1: है, बहुत ज्यादा बिगड़ती है।
2: हमें शांति चाहिए, मानसिक शांति की जरूरत है ना आजकल, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम मानसिक रूप से बीमार से हो जाते हैं, क्योंकि लगातार जो है हम इतनी नकारात्मक चीजें पढ़ते हैं, चर्चाएं पढ़ते हैं, इतना विवाद उसमें देखते हैं, तो मन में तनाव और बेचैनी तो आएगी ही। और हम भी अपनी बात लिखते हैं, कई बार हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लग जाते हैं। तो सोचिए, हमें लगता है अच्छा मुझे हरा दिया, ये बात लो मैं ये लिख देती हूँ,
1: चलिए ये तो मेरी बात मैं लिख कर ही रहूंगा। हाँ। रहूंगी, है ना।
2: तो ये जब चीजें आती हैं तो आप अच्छी सोच और सकारात्मक ऊर्जा

0: की जगह क्रोध और निराशा से घिरने लगते हैं
1: और रिश्तों में दूरी आ जाती है। जहाँ गुस्सा है तो वहाँ पर रिश्तों में दूरी बहुत ही स्वाभाविक सी बात है और यह ऑनलाइन विचारों का मतभेद व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित कर देता है। हमें याद रखना चाहिए कि रिश्ते बहस जीतने से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा। और एक बात और है कि हम हर विषय पर अपनी टिप्पणी पर अपनी बात कहना बहुत जरूरी समझते हैं या अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं तुरंत। ये बहुत गलत आदत है। आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए।
1: थोड़ा सोचे समझे संयम से काम
0: है। हाँ वो संयम यहाँ काम आता है कि हमें क्या कहना है। समझदारी इसी में होती है सोनाली कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है जिस पर हम अपनी राय दें या समय की बर्बादी तो नहीं है। हम किससे बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं ये सब भी हमें समझना होगा।
1: और मंदाकिनी जी एक और बात है, इतने ज्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल होता है कि यानी घृणा मन में उत्पन्न होने लगती है। बहुत कड़वे बहुत गंदे बहुत भद्दे अभद्र भाषा का बहुत
0: इस्तेमाल होने लगता है
1: तो वो एक गलत है। वो क्या है, एक को देख के दूसरा भी उसी तरह
0: जी उसे आप देखिए ना समाज में कितना गलत संदेश जाता है। हमारे बच्चे जब इसे पढ़ते हैं तो वो भी यही भाषा सीख रहे हैं। उनके मन में भी वो सम्मान और आदर नहीं होता। कई बार स्त्रियों की फोटो होती है, लोग उस पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे होते हैं तो जो बच्चा है वो भी यही देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसे भी लगता है कि ये सब आम बात है और ऐसा कर देना चाहिए। बड़ा होकर वो भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगता है।
1: ये सोशल मीडिया के इतने फायदे हैं कि उसका उपयोग हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए, अच्छे विचार फैलाने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और समाज में जागरूकता लाने के लिए किया जा सकता है, पर हो रहा है उल्टा।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये विवाद का मंच नहीं है, संवाद का माध्यम है। आप संवाद करिए, समय का मूल्य समझिए। समय जीवन की जैसा कि सबसे कीमती संपत्ति है, इसको आप जाने, और जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो आप सोशल मीडिया में लिखिए, आप लोग लिखते हैं लगातार, लेखक हैं, बहुत अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी जानकारियां देते हैं लोग। और आप अपनी बनाइए एक ऐसी जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं, अपने मन की बात, और फिर लोगों के विचार आमंत्रित करें तो अपनी ऊर्जा उन कामों में लगाएं जो आपके जीवन को, आपकी भावनाओं को, आपके दिमाग को बेहतर बनाती है।
1: यानी सोशल मीडिया स्वयं अच्छा या बुरा नहीं, उसका उपयोग हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात को विवाद बनाने के बजाय समझदारी और संयम से काम ले तो यही माध्यम ज्ञान जुड़ाव और सकारात्मक बदलाव का साधन भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, बहुत ज्ञान है। आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो नई नई जानकारियां, हमें अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलती हैं। हम उस पर अगर अपना ध्यान लगाते हैं तो यकीनन आपको बहुत सारी जानकारी पढ़ने को मिलती है, बहुत ज्यादा ज्ञान आपको मिलता है।
1: यानी पुराना जमाना याद कीजिए ना, जब सोशल मीडिया नहीं था तो हमें कितनी सारी किताबों को रेफर करना पड़ता था कि इस किताब में इस लेखक ने इतनी अच्छी बात लिखी, उस किताब में
0: लाइब्रेरी में जाना होता था, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़नी पड़ती थी किताबें।
1: तो एक क्लिक पर इतनी सारी यानी ज्ञान का भंडार खुला है,
0: बैठे हुए मिल जाता है। और मुझे तो ये भी याद है सोनाली कि कई बार हमें ऐसे टॉपिक्स पर संवाद लिखने होते थे स्कूल कॉलेज में कि हमें अपने पास या अपने माता पिता के साथ साथ पड़ोसी लोगों के पास भी जाकर कई बार विचार जानने पड़ते थे कि अंकल आप इस विषय के हैं, हमें क्या इस पर कुछ लिखा पाएंगे, है ना। तो ये सब बातें भी हमारे जीवन में हुआ करती थी जब सोशल मीडिया नहीं था। आज तो सब कुछ आपके पास है, उसका सदुपयोग करना,
1: उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए कि भाई जो अच्छा है वो अच्छा यानी जो अथाह महासागर है इसमें के हीरे मोती हमें चुनना है, ना कि उसकी जो गंदी चीजें या गलत बातें उसे हमें अनदेखा करना है।
0: इसका मतलब ये नहीं हुआ सोनाली कि हम वाद विवाद से बचें, लेकिन अच्छी बातों पर वाद विवाद सार्थक, उसका अंत सार्थक होना चाहिए
1: और उसमें बहुत ज्यादा समय की बर्बादी
0: नहीं करनी चाहिए, है ना। इसलिए इससे जुड़े लेकिन सार्थक कामों के लिए। और अब हम एक छोटा सा
1: ब्रेक लेते हैं।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली और मंदाकिनी जी गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, उसके बाद में फिर हम श्रोताओं के कमेंट्स भी लेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा सोनाली, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सोना मेरे सामने भी सोना ही बैठी है सोनाली के रूप में।
1: चलिए हमारे एक साथी लिखते हैं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग बेहुदा चीजों के लिए ज्यादा हो रहा है, मसलन हास्य व्यंग्य के फूहड़ वीडियो बनाना, फेक न्यूज को वायरल करना, बेसिर पैर की ब्लॉगिंग करना वगैरह। आज के समय की सोशल मीडिया ऐसी बीमारी बन गया है जिससे युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा ग्रस्त है। सिर्फ वाद विवाद ही नहीं, सोशल मीडिया के यूज ने हमारे बहुमूल्य समय को भी नष्ट कर दिया है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद करना समय की पूरी बर्बादी है, क्योंकि ये एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं जहां लोग केवल भावनाओं को भड़काने और मानसिक तनाव का काम करते हैं। इससे उत्पादक चर्चा के बजाय केवल नकारात्मकता और अलगाव ही पैदा होता है। वाद विवाद के नुकसान, ऊर्जा और समय की हानि, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जाने वाली बहसें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती जिससे आपका कीमती समय और मानसिक ऊर्जा व्यर्थ होती है। और इसके अलावा मानसिक तनाव, क्रोध अलग होता है। इन्होंने इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा है और इसके साथ ही जो है इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया कितना हानिकारक है। हमारे विशेषज्ञ इस पर अपनी राय देते हैं। गलत सूचनाओं का प्रसार होता है। ऑनलाइन बहसों में अक्सर बिना पुष्टि किए तथ्य साझा किए जाते हैं जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। और समाज में सोशल मीडिया के प्रभाव के लाभ और हानियां भी बहुत हैं। आप उसका उपयोग करें, सीमित करें और

0: और सबसे अधिक किस एप्स पर आप समय बिताते हैं ये भी आपको जानना होगा और इस पर वो बहुत सारी बातें लिखते हैं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, आए दिन सोशल मीडिया झगड़े का अखाड़ा बन चुका है, किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा होता है। साथी एक लिखते हैं, सोशल मीडिया पर वाद विवाद करके खुद के दिमाग खराब करने बराबर होता है, क्योंकि इस मंच पर विभिन्न देश या प्रदेश से अलग अलग दिमाग वाले लोग जुड़े मिलेंगे जिससे हम कभी जानते ही नहीं, तो उनसे ऐसे बेकार में वाद विवाद हमें क्यों उलझना चाहिए। आप उनकी पोस्ट ध्यान से पढ़ ले, अगर वो व्यक्ति और उसके प्रश्न जवाब देने लायक है तो उनसे जुड़े, वरना दूर ही रहे, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, नौबत भी आ सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखती है कि सोशल मीडिया पर वाद विवाद में उलझना अधिकतर समय की बर्बादी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्थक चर्चा के बजाय भूसे और प्रतिक्रियाओं से उलझने उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ बहस करने से मानसिक तनाव बढ़ता है और आप का समय जो है व्यर्थ होता है, मानसिक तनाव और ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑनलाइन बहस में अक्सर लोग अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, कटु शब्दों और आलोचनाओं को पढ़ने से मानसिक शांति हमारी भंग होती है, नकारात्मकता हावी हो जाती है। सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट के जवाब में तर्क वितर्क करने में घंटों निकल जाते हैं। इस समय का उपयोग किसी रचनात्मक कार्य में, पढ़ाई में, कौशल सुधार में किया जा सकता है। बहुत बार लोग जानबूझकर कुछ ऐसी बातें डाल देते हैं जिसे लोग और उत्तेजना में आकर लिखते हैं और धीरे धीरे उस जगह से फिर हट जाते हैं।
1: वहीं एक साथी लिखते हैं कि सोशल मीडिया आज के दौर में संचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग समय की बर्बादी का कारण बन सकता है। लोग घंटों तक बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते, पोस्ट स्क्रॉल करते और अनावश्यक चर्चाओं में लगे रहते हैं। इससे पढ़ाई, काम और परिवार के लिए समय कम बचता है। कई बार सोशल मीडिया की लत व्यक्ति की एकाग्रता और उत्पादकता को भी प्रभावित करती है, इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और सार्थक उद्देश्यों के लिए करना चाहिए ताकि समय का सदुपयोग हो सके, जीवन में संतुलन बना रहे।
0: बिल्कुल, एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक मंच है, यहाँ सोच समझकर ही अपने विचार रखें, अंधाधुंध कुछ भी बोलते रहते हैं लोग, कभी कभी घातक सिद्ध हो जाता है, लोग बदले की भावना रखते हैं और परिणाम स्वरूप कई बुरे काम भी हो जाते हैं।
1: वहीं एक साथ ही लिखते हैं कि इन मंचों पर लोग विचार खुलकर व्यक्त करते हैं, लेकिन इन मंचों पर होने वाले वाद विवाद अक्सर ऐसी दिशा में ले जाते हैं जहां सार्थक चर्चा की बजाय समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। लोग अपनी बात को सही साबित करने के लिए घंटों तक तर्क वितर्क करते रहते हैं, अंत में चर्चा किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के बजाय आरोप प्रत्यारोप और कटुता में बदल जाती है, और ऐसे वाद विवाद हमारा मानसिक तनाव भी बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली इन्होंने। और एक बात हम भी कहेंगे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है सोनाली जो व्यक्तिगत द्वेष को भी उस पर निकाल लेते हैं। मसलन किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें कुछ कहना है तो हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लग गए हैं आजकल, और उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां, अभद्र बातें करने लग गए हैं, तो इस तरह से कितना बुरा लगता है। आप सोचिए कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष को लेकर भी टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं और अपना मन का विकार इस रूप में निकालते हैं, इससे बड़ी कायरता और क्या हो सकती है।
1: और क्या होता है ना कि ये जो समय इतना मूल्यवान है कि जिस उम्र में हमें अपना करियर बनाना है, कुछ अच्छा पढ़ना है, अच्छे संस्कार हमें अपने अंदर समाहित करना है, उस वक्त हम इन सब बिना काम की चीजों में उलझे हुए हैं, फिर ये समय तो फिर नहीं आएगा ना।
0: बिल्कुल, कभी समय लौट कर नहीं आता, बल्कि आप ही बाद में जो है एक तरह से दुख करते हैं कि हम धोखा खा गए, समय निकल गया और अब पछताई होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर ये बात आती है जो हमने आज का विषय रखा है ना, संयम, वो यहाँ काम आता है ना, कि जीवन में संयम का कितना ज्यादा स्थान है और किस तरह से हमें हर विचार को एकदम तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसके लिए वो संयम रखना चाहिए। तो हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि भाव, विचार, वाणी और व्यवहार ये संयम के चार स्तंभ हैं। संयम का सही अर्थ है आत्मनियंत्रण, धैर्य और संतुलन। ये किसी भी परिस्थिति में विशेषकर उकसावे, गुस्से या लालच के क्षणों में अपनी भावनाओं, इंद्रियों और इच्छाओं को काबू में रखने की एक मानसिक क्षमता है।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मन, वचन, इंद्रियों और वाणियों पर आत्मनियंत्रण ही संयम है। भगवद गीता में कहा है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन मित्र है, और जिसने ऐसा नहीं किया उसका मन शत्रु है। तो भैया अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है।
0: वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि संयम मतलब मन, वाणी और कर्म पर स्वयं का नियंत्रण। मन जब कुछ गलत चाहे, जुबान कुछ गलत बोलना चाहे या शरीर कुछ अलर्ट करने की कोशिश करे, तब खुद को रोक लेना ही संयम है। संयम हार नहीं, ठहराव है। बहुत अच्छा लिखा है। देखिए, गुस्से में बोला गया एक भी गलत शब्द जीवन भर के रिश्ते को खत्म कर देता है, और संयम से बोली गई बात रिश्तों की मिठास को कायम रखती है। जिसने संयम साध लिया मतलब उसने खुद को जीत लिया।
1: क्या बात है। एक साथी लिखते हैं, संयम वो खामोशी है जिसमें जल्दबाजी नहीं होती लेकिन समझदारी की आवाज साफ सुनाई देती है। हर ताकत दिखाई नहीं देती, कुछ ताकतें संयम बनकर भीतर रहती है, सही समय पर अपना प्रभाव दिखाती है। संयम का फल सिर्फ सफलता नहीं मन की शांति भी होता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों, भावनाओं और निर्णयों को

0: संतुलन रखता है, उसके व्यक्तित्व में अलग ही गरिमा दिखाई देती है। संयम जीवन की पतंग की वो डोर है जो उसे ऊंचाइयों तक भी ले जाती है और बिखरने से भी बचाती है। नदी की गहराई और इंसान का संयम दोनों शोर नहीं करते, लेकिन उनकी शक्ति बहुत दूर तक महसूस होती
1: है। क्या बात है, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि संयम वो शक्ति है जो मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाती है। आज की तेज रफ्तार जीवन में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, ऐसे समय में संयम हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्य धैर्य मेहनत और प्रतीक्षा से प्राप्त होते हैं। एक बीज भी जब वृक्ष बनने में समय लेता है, उसी प्रकार जीवन में उपलब्धियां भी समय और निरंतर प्रयास मांगती हैं। बिल्कुल, हम कई बार अपना आपा खो देते हैं, मेहनत करते हैं और हमें फल नहीं मिलता ना, तो हम अपना संयम खो देते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि कई बाधाएं, कई कठिनाइयां, कई कांटे मुझे मिले जीवन के पथ पर, परंतु मैंने संयम रखा, हिम्मत न हारी और माता रानी पर अटूट विश्वास रखा और आज इस मुकाम पर पहुंच गए हूं कि शादी के बाद मेरे संयम को कायम रखने में मेरी धर्म पत्नी ने बहुत सहयोग दिया। मेरा सभी सखियों सखाओं से यही कहना चाहूंगा कि अपने इष्ट पर विश्वास रखें और संयम रखते हुए कठिनाइयों का सामना करें, सफलता जरूर मिलेगी।
1: बिल्कुल सही कहा, और संयम का तो बहुत बड़ा स्थान होना चाहिए जीवन में। आपने देखा होगा सोनाली, अभी कई बार हम पढ़ते हैं, जिसका जिक्र हम कई बार करते हैं कि एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम में कोई दिक्कत हो गई, हम पास नहीं हुए, उतने नंबर नहीं मिले, तो बच्चे जो है सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या की ओर चले जा रहे हैं। तो ये वही है कि वो संयम जो आपा खो रहे हैं, धैर्य खो दे रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें संयम से काम लेना चाहिए। आज
0: इस
1: नहीं
0: साल
1: तो
0: नहीं तो अगले साल आपको परीक्षा में सफलता मिल ही जाएगी,
1: जिंदगी
0: और इतना सुंदर जीवन है मिला
1: उसको
0: है,
1: हम खत्म कर देते
0: जी। तो बच्चों को ये हमें कि और क्या होता है ना, इसमें हम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं कि बच्चों ने किसी चीज की जिद की तो हम तुरंत उन्हें ले देते हैं। उन्हें संयम अंदर से सीखने की चीज है कि वे बोला कि आज ही चाहिए, ये डिश आज ही बनना चाहिए, तो तुरंत मम्मियों का प्यार उमड़ पड़ता है कि नहीं आज मांगा है तो आज ही दे देना है, आज उन्होंने कोई खिलौना मांगा है तो आज ही लाकर देना, आज उन्होंने कोई कपड़े की जिद की है तो वही हम लाकर देते हैं। तो हमें भी उन्हें थोड़ा सा संयम से काम लेने के लिए कहें कि ठीक है आज टाइम नहीं है तो हम कल जरूर लाकर देंगे या दो चार दिन बाद लाकर देंगे।
1: बिल्कुल,
0: तो बचपन से ही उन्हें
1: ये संयम सिखाया जाए। दूसरा वही कि परीक्षा में अंक लाना महत्वपूर्ण है लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं है, उनको संयम में रहना सिखाएं। कोई बात नहीं बेटा, इस बार आपके नंबर कम आ गए, आप उतने नंबर नहीं ले पाए, अगली बार मेहनत करिए ना, कि आप अपने जीवन को ही
0: समाप्त
1: कर ले, है ना। तो ये संयम हर जगह जरूरी है और अब हमें संयम हमें भी रखना चाहिए बोलने का।
0: एक गाना
1: सुनाना चाहिए।
0: सुना

0: मंदाकिनी जी,
1: जी
0: हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे सखियों ने जो ना अचार और मुरब्बे की बहुत सारी रेसिपीज लिखकर भेजी है। तो आम का मुरब्बा, कच्चे आम इन्होंने लिखा है, कैरी 1 किलो कतलों में कटे हुए, गुड़ 800 ग्राम से 1 किलो बारीक कुटा हुआ, सौंफ 1 छोटा चम्मच, हल्की दरदरी और कलौंजी आधा छोटा चम्मच, इलायची 1 पाउडर छोटा चम्मच, उसके अंदर भुना जीरा 1 छोटा चम्मच, काला नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच। बनाने की विधि है कि आम के कतलों को उबाल ले, अब एक कढ़ाई में बारीक कुटा हुआ गुड़ और आधा कप पानी डाले और पकने दे। गुड़ की चाशनी बनाने पर इसमें उबले हुए आम के कतले डाल दे, इसे मध्यम आंच पर पकने दे। आम के टुकड़े गुड़ की चाशनी को सोख कर एकदम रसीले और पारदर्शी हो जाएंगे। इसी समय इसमें सौंफ, कलौंजी, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर भी मिला दे। जब चाशनी शहद की तरह गाढ़ी और एक तार की हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर मिला ले। आम का गुड़ वाला मुरब्बा तैयार है। ठंडा होने पर कांच की बर्नी में रखे, इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ
1: खा सकते हैं। इसका मतलब हमारी सभी बहनें प्रेस करने में नहीं लगी है ना
0: कुछ मुरब्बे और अचार
1: बना रही है। मुझे तो डर था कि आज हमें अचार और मुरब्बा खाने को मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि एक सखी ने लिख दिया था कि वो तो प्रेस कर रही है,
0: और एक सखी कह रही है कि हम बैठ के सुन रहे हैं,
1: तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये अचार और मुरब्बे। तो इसका मतलब हमारी सखियां जो है हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ी हुई है और लगातार जो है मुरब्बा और अचार बनाने की तैयारी भी कर रही है ना। तो मैं पहले एक संदेश सुना दूं, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं।
0: जी,
2: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
3: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
2: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
3: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
2: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
3: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
2: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
1: तो सोनाली, हमारे सभी सखी और सखा जान गए होंगे कि आज के मेहमान कार्यक्रम में 4 बजे ये बातचीत वो सुन सकते हैं।
0: हम भी सुनेंगे उनके साथ में।
1: बिल्कुल, हम तो सुनेंगे ही और साथ में कैरी का अचार या मुरब्बा भी खाते जाएंगे। ठीक है। तो भाई, एक सखी लिखती है कि गुड़ और कैरी का गुजराती स्टाइल का अचार है। इसमें कच्ची कैरी है यानी कच्चा आम, 1 किलो गुड़, 1 किलो छोटे टुकड़ों में कटा हुआ होना चाहिए गुड़, चीनी 1 कप गुड़ के साथ मिलाने से अचार का टेक्सचर अच्छा होता है। अचार का मसाला 200 से 250 ग्राम, राई की दाल, मेथी की दाल, सौंफ, दरदरी, कुटी धनिया का मिश्रण, कश्मीरी लाल मिर्च, 2-3 बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, 3-4 छोटे चम्मच नमक, स्वादानुसार चम्मच आपको हींग लेनी है, तेल लेना है मूंगफली का या राई का, 1 कप गर्म करके ठंडा किया हुआ लौंग और काली मिर्च भी आपको लेनी है, साथ में 10-12। ठीक है। आम को तैयार करना है, कच्चे आम को धोकर अच्छी तरह सुखा लेना है। इसके बाद इसे छीलकर मध्यम आकार के टुकड़ों में काट ले, क्यूब्स जैसे बना ले। आम के टुकड़ों में 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छी तरह से इसे मिला लें और इसे ढककर 5-6 घंटे या रात भर के लिए आप छोड़ दें। अगले दिन क्या होगा कि आम के टुकड़ों को छानकर हमें अलग कर लेना है और जो पानी उन्होंने छोड़ा है वो हटा देना है। आम के टुकड़ों को सूती साफ कपड़े पर फैलाकर 3-4 घंटे के लिए पंखे की हवा देनी है ताकि उनके अंदर जो नमी होती है ना वो खत्म हो जाए। फिर मसाला तैयार कर लें। एक बर्तन में अचार का मसाला डालें, हल्दी, हींग भी डाल लें, इसके ऊपर हल्का गरम किया हुआ तेल डाल दें और ढककर कुछ देर के लिए छोड़ दें। मसाले को पूरी तरह ठंडा होने दें। अब इसमें भुना हुआ नमक डालें, कश्मीरी लाल मिर्च डालें, लौंग डालें, काली मिर्च डालें, इन सबको मिलाना है। फिर अचार को कैसे मिलाना है, एक बड़े और सूखे कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में जो सूखे हुए आम के टुकड़े हैं और तैयार मसाला है उनको डालकर अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें गुड़ और चीनी डाल दें। सभी सामग्रियों को साफ हाथों से या सूखी चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। बर्तन को सूती कपड़े से बांधकर 2-3 दिन तक धूप या छाया में रखें और दिन में 3-4 बार अचार को चम्मच से ऊपर नीचे या हिला लें। 3-4 दिनों में गुड़ और चीनी पिघल कर चाशनी बन जाएगी और आम के टुकड़ों के साथ मिलकर गाढ़ा रसा तैयार हो जाएगा और आप एक गुजराती जो है ये गुड़ कैरी का अच्छा, आचार खा सकते हैं।
0: मेरे तो मुंह में पानी आ गया, थेपले के साथ में कितना अच्छा लगेगा ना।
1: क्या बात है, तुम्हें तो थेपले की भी याद दिला दी है।
0: अब मुरब्बा बनाने की सरल विधि है, तो इन्होंने कहा है कि 1 किलो फल जैसे आंवला है या फिर कोई भी फल ले सकते हैं, और 1.25 किलो चीनी है, 4 से 5 कप पानी है, 4-5 इलायची है। फलों को अच्छी तरह से धो ले और फलों को कांटे से गोंद ले ताकि चाशनी अंदर जा सके। हल्का सा उबाल ले उन फलों को और फिर बर्तन में चीनी और पानी मिलाकर एक तार की गाढ़ी चाशनी तैयार करें। चाशनी में फल डालकर धीमे आंच पर पकाएं। जब फल पारदर्शी दिखने लगे और चाशनी गाढ़ी हो जाए तब इलायची पाउडर डालें। ठंडा होने पर साफ सूखे कांच के बर्तन में भरे। मुरब्बा जितना पुराना होगा उतना स्वाद और उतना ही अच्छा होगा।
1: हाँ, वही एक सखी ने लिखा है कि हम जो सिंपल सा आचार बनाते हैं वो बता देते हैं। बिल्कुल, सिंपल सा आचार भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आम का आचार डालने का सही समय है, वो कह रही है। हम नाप तोल कर नहीं बनाते, बस सबसे पहले कैरी को धोकर सुखा लेते हैं, उसमें थोड़ा नमक हल्दी डालकर उसको रख देते हैं। दूसरे दिन उसका पानी हटाकर थोड़ा सुखा लेते हैं। बस फिर कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लेते हैं, जब थोड़ा ठंडा हो जाए उसमें अचार मसाला डालकर मिला लें और इसमें इन कैरियों को डालकर मिला लें और साफ सूखी कांच की भरनी में डाल दें। कुछ दिनों तक उसे रोज बार बार हिलाएं, तेल ऊपर तक होना चाहिए ताकि अचार जो है खराब नहीं होगा। अगर तेल ज्यादा नहीं डालना हो तो मसाले थोड़ा ज्यादा डाल दें और कैरी को अच्छे से सुखा कर उसमें डालना है और लगभग हिलाते रहना है जब तक कैरी पक नहीं जाती है।
0: और अब क्या करना है?
1: अब तो हमें बहुत आचार खिला दिया है श्रोताओं को हमने।
0: अचार और मुरब्बा खा लिए तो मीठा मीठा गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुन लेते हैं।

0: हमारे एक साथी लिखते हैं कि ये एकदम गलत बात है, ये गीत आप ऐसे वक्त सुनाते हो जब जाने का समय हो जाता है, अभी न जाओ छोड़कर। एक सखी ने लिखा, अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काम करते करते अब संयम खो दिया और फोन लेकर बैठ गई।
1: लेकिन आपने सही कहा, हमें तो जाना होगा, इसलिए हम कहेंगे कि अब रुकेंगे नहीं नहीं
0: नहीं। तो इजाजत लेते हैं आप सभी को सोनाली पाठक
1: और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के मेहमान में मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसे कलाकार को, एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाया है जो कला में माहिर है, जो रंग भरते हैं, जो अपनी पेंटिंग में रंग भरते हैं, जिंदगी में रंग भरते हैं। अखिलेश जी की पेंटिंग्स आधुनिक अमूर्त कला और लोक संवेदनाओं का अनूठा संगम है। उनकी कृतियों में रंग केवल सजावट नहीं होते बल्कि वे भावनाओं की भाषा बन जाते हैं। वे कैनवास पर ऐसी आकृतियां और रेखाएं रचते हैं जो पहली नजर में थोड़ी रहस्यमय लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे दर्शक को अपने भीतर के अनुभवों और स्मृतियों से जोड़ देती हैं। बहुत सारी बातें अखिलेश जी के बारे में हम आपको बताते रहेंगे इस कार्यक्रम में आज के मेहमान में। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला और अपने देश के जाने माने पेंटर अखिलेश जी का विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी नमस्कार, स्वागत है
1: जी। नमस्कार,
0: कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में आकर?
1: विविध भारती एक ऐसी चीज है जो बचपन से आपकी स्मृति में है और हम लोग बहुत जब छोटे थे जब से विविध भारती सुनते आ रहे हैं और खास तौर पे हमारे पिता वो शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम आता था
0: संगीत सरिता
1: अभी भी आता है। उसमें हाँ, उसको हम लोग बहुत सुना करते थे और वो समय कुछ ऐसा था कि आप उस वक्त अपने आप रेडियो के पास होते थे और संगीत सरिता का वो कार्यक्रम सुनते थे। तो हमारे यहाँ वो एक ज्वाइंट फैमिली होने से 10 बच्चे थे तो सभी के भीतर विविध भारती के साथ एक गहरा संबंध बहुत शुरू से अनजाने ही बना।
0: जी जी, और पिता का जिक्र किया, आपके पिता खुद ड्राइंग शिक्षक थे मेरे ख्याल से, पहले स्वर्ण पदक विजेता, तो आपने क्या चित्रकला की जो पहली तालीम होती है उन्हीं से ली?
1: ऐसा कहा जा सकता है कि मैं जब छोटा था तो हमारे घर में पिता के कारण सारे जो बच्चे थे सभी लोग पेंटिंग करते थे, तो उस दौरान मेरे को पेंटिंग करने में कोई रुचि नहीं थी क्योंकि सब लोग एक ही काम कर रहे हैं।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं करता था और मैंने फिर 11th क्लास में पेंटिंग सब्जेक्ट लिया और उसके साथ मैंने अपना जीवन शुरू किया और फिर अगले साल मैंने कॉलेज में फाइन आर्ट्स कॉलेज इंदौर का जो बड़ा प्रसिद्ध फाइन आर्ट्स कॉलेज है वहाँ एडमिशन लिया और विधिवत कला शिक्षा प्राप्त करना शुरू करी। तो वहाँ हमारे प्रिंसिपल होते थे चंद्रेश सक्सेना, हमारे टीचर होते थे रामनारायण दुबे, इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और इन लोगों ने एक्चुअली आंखें खोलने का काम किया कि चित्रकला क्या है। हमारे पिता जो थे वो मिनिएचर के मास्टर थे, मतलब मिनिएचर की उनकी बड़ी गहरी समझ थी और वो उसके बारे में बताया करते थे और हमें अजंता एलोरा ले जाना, खजुराहो ले जाना, इस तरह के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो बड़े मंदिर हैं, वहाँ ले जाया करते थे और उन सब की शिक्षा वो दिया करते थे, उनके बारे में बताया करते थे। मगर जो कंटेम्पररी आर्ट का जो समझ पैदा हुई मेरी कॉलेज में आने के बाद हुई
0: जी, वहीं से पेंटिंग से आपका जुड़ा हुआ
1: जी। हाँ।
0: तो आपके बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि 20 बरस की उम्र में ही आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी लग गई थी और बहुत बड़ी पेंटिंग आपने बनाई थी, वो क्या बात है हमारे श्रोताओं को
1: जी जी। जब मैं 20 साल का था तब मैं कॉलेज के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था और उस वक्त कोई स्टूडेंट वन मैन शो करे ऐसा संभव नहीं होता था, मतलब उसके लिए रास्ता नहीं था कि आप, किंतु मेरे पिता चूंकि खुद चित्रकार थे उनका मेरे को बहुत सपोर्ट था और उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ तुम करना चाहते हो तो जरूर करो। और फिर मैंने एक ड्राइंग का शो किया जो कि 110 फीट लंबा अकेला एक ड्राइंग था जिसको देख करके जाहिर है इंदौर के उस वक्त के जितने हमारे कलाकार दोस्त थे और हमारे वरिष्ठ कलाकार थे उन सभी लोगों को एक अलग रोमांच की बात थी कि गैलरी में आप घुसे और ड्राइंग शुरू हो और गैलरी से जब आप बाहर निकले तो ड्राइंग खत्म हो।
0: क्या बात है
1: तो वो एक शुरुआत थी और मैंने सोचा कि जब हमको एंट्री लेना है आर्ट फील्ड में, यही करना है या यही रहना है, तो फिर एक कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एक इमेज बने या बनना शुरू हो
0: जी। तो ये जो इमेज बनाने वाली बात है, फिर आपने अपनी इमेज बनाने के साथ साथ आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की ओर झुका हुआ आपका, तो ये किसी ने आपको सलाह दी या आपने खुद चुना, क्या था आपके मन में?
1: उस वक्त हमारे कॉलेज में एक विषय होता था जो कंपलसरी सभी को करना होता था, वो था कॉपी एनी वेस्टर्न मास्टर। तो चूंकि मैं बचपन से ही मिनिएचर पेंटिंग के किताबें और हमारे पिता के कारण उनसे मेरा एक बड़ा गहरा संबंध था, कांगड़ा वैली के या भसौली या बूंदी या इन सारी कलम से बहुत ही परिचित था मैं, तो मैंने हमारे टीचर से कहा कि मैं एक इंडियन मास्टर को कॉपी करना चाहता हूँ बजाय वेस्टर्न मास्टर के, तो क्या मुझे ये परमिशन होगी, और मैं चाहूंगा कि मुझे नंबर भी उसी पे मिले।

0: जी
1: और अगर आप कहें तो मैं दो वेस्टर्न मास्टर की कॉपी भी बना के दे दूंगा, मगर मैं चाहूंगा कि मेरे को जांचा परखा इसी से जाए जो मिनिएचर। तो फिर उन्होंने सिलेबस में चेंज किया और मुझको अलाउ किया कि हाँ आप मिनिएचर बनाएं। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे मिनिएचर उनका गहन अध्ययन किया कि कौन सा बनाना चाहिए। तो उसमें जो मैंने चुना था उसमें तो 200-300 इमेजेस थी, आकृतियां थी, किंतु उसी वक्त एक पेंटिंग मेरे मिनिएचर ध्यान में आया कि इसमें एक अभिसारिका जो है जंगल से गुजर रही है और अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। तो जो नायिकाओं के भेद है उसमें अभिसारिका वो नायिका है जो खुद अपने प्रेमी से मिलने जाती है। तो जंगल में शेर चीते और जंगली जानवर और सब चारों तरफ खड़े हैं, भूत प्रेत और चुड़ैल भी हैं, मगर इन सब से निडर निर्भीक इन सब की तरफ कोई ध्यान न देते हुए वो अपने चली जा रही है। तो मैंने सोचा कि इतने गहरे अंधकार में वो अपना रास्ता कैसे देख रही है। तो वो उसके हाथ में न कोई प्रकाश का स्रोत है, न कोई लालटेन है, न कोई दिया है, और वो चली जा रही है। तो फिर ध्यान गया मेरा ऊपर, बादलों में बिजली कड़क रही है, तो बिजली की रोशनी में वो अपना रास्ता देख रही है। तो जब मैंने बिजली की तरफ देखा तो वो बिजली भी बिजली नहीं थी, दो लहराते हुए सांप बने हुए थे सुनहरे रंग के, मतलब बिजली भी नहीं कड़क रही थी। तो वो अपने कामना के प्रकाश में अपना रास्ता देख रही थी। तो ये जो एब्स्ट्रैक्शन था ये मेरे लिए बहुत ही दिमाग को
0: मंथन करने
1: हिला देने वाला था, और मेरा ध्यान फिर चित्रकला में अमूर्तन की तरफ गया कि भई हमें अमूर्तन की तरफ ही जाना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने को बरतना चाहिए। तो इस तरह से मैंने फिफ्थ ईयर से अमूर्तन में काम करना शुरू किया, जब फाइनल ईयर होता था हमारा, और उसमें फाइनल ईयर की जो परीक्षाएं होती थी उसमें एक विषय दिया जाता था, उसको आपको बनाना होता था। तो हम लोगों को विषय था पनिहारिन, और वो पनिहारिन जो है वो उसमें पांच फिगर बनानी होती थी, और वो कुआं और ये सब जो पानी भर रही है इस तरह का कुछ मैंने उस वक्त फिर बनाया, जो चित्र था एब्स्ट्रैक्ट बनाया कम्प्लीटली। और मैंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा मुझे फेल करेंगे और क्या होगा, किंतु मेरे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी, मैं अकेला सारे छात्रों में, हमारे उस वक्त हमारे इंदौर ग्वालियर जबलपुर सबकी एग्जाम एक जगह होती थी, तो हम लोगों की एग्जाम ग्वालियर में हुई थी, तो मैं अकेला फर्स्ट डिवीजन पास हुआ था, बाकी सारे लोग सेकंड डिवीजन में थे।
0: क्या बात है।
1: बढ़िया। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में मुझे नंबर मिले।
0: जी जी।
1: और हमारे जो भी देखने वाले थे जांचने वाले थे उन्होंने ये ख्याल रखा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो वो एक शुरुआत थी मेरी अमूर्तन की तरफ जाने की।
0: अखिलेश जी, आप जब ये बता रहे थे कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में ये सारे चित्र उकेरते हैं कि जंगल है और वहां पर जंगल में वन प्राणी है और ये सब, तो मेरी आंखों के सामने वो दृश्य पैदा हो रहा है। ये शब्दों के माध्यम से दृश्य पैदा करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन पेंटिंग में किस तरह की चुनौती होती है? ये सारे दृश्य आप बता रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन एक पेंटिंग को एक आम दर्शक देखता है तो कैसे इनको ग्रहण करता है? तो आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां होती होंगी, किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किस तरह की कोशिश आप करते
1: हैं? मैं तो इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता हूं कि लोगों को ये समझ में आए, मगर जब हम चित्र देखते हैं तो हम लोग दरअसल पहले से जो हमारे पूर्वग्रह हैं उनसे संचालित होकर के चित्र देख रहे होते हैं। चित्र देखने का एकमात्र ढंग जो है वो समर्पण भाव से देखना है। अगर आप उसको पूरी तरह से अपने जो भी समझ है उसको छोड़ करके एक मनुष्य की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जो आंख मुझे मिली है वही आंख एक दर्शक के पास भी है, और जितना मैं देखता हूं उतना वो भी देखता है, तो मैं उनके देखने पे संदेह नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि उनका देखना जागृत हो। और उसमें जो चुनौतियां होती हैं चित्र बनाते वक्त, वो चुनौतियां दूसरी तरह की होती हैं, जिसमें रंग एक चुनौती है अपने आप में, फॉर्म एक चुनौती है अपने आप में, और रेखा एक चुनौती है कि आप इनका कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, आप किस रंग के साथ कौन सा रंग लगाएं कि दोनों रंग जो है आपस में संवाद करते दिखें। तो ये जो चीजें होती हैं वो दूसरी तरह की चुनौतियां हैं, जो चित्रात्मक चुनौतियां हैं कायदे से देखा जाए तो। और ये जो सामाजिक चुनौतियां हैं देखने की और समझने की, इसके लिए एक पूरा अलग व्यापार है जो उसको फॉलो करना चाहिए देखने वाले को, या उसको। मैं तो देखता हूं कि जो हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी कलाकार हैं, जब वो भारत भवन आते हैं और भारत भवन की

0: आधुनिक कला दीर्घा में वो प्रवेश करते हैं, और तो मैं देखता हूँ कि वो लोग तो सारे चित्रों को खुशी से एंजॉय करते हैं।
1: क्या बात है।
0: तो उनके पास ऐसा कुछ पहले से प्री कंसीव्ड आइडिया नहीं है चित्र का, तो जो चित्र देख रहे हैं उसके साथ वो एकाकार हो जाते हैं तत्काल ही, जैसे कि वो प्रकृति के साथ एकाकार रहते हैं। तो ये जो उनका एक समर्पण भाव है जिसमें वो अपने देखने को पूरी तरह से बरतते हैं, तो मुझे लगता है कि हर मनुष्य ये कर सकता है कि वो अपने देखने को जागृत करके अपना देखना वैसा ही निर्दोष रखे जैसा कि होता है।
1: जी जी, चित्र कला और संगीत का बड़ा गहरा संबंध है। हमने कई पेंटर्स के बारे में सुना है कि वो साथ में रेडियो लगा देते हैं, रेडियो बजता रहता है और चित्रकारी करते हैं। बहुत बड़े बड़े पेंटर्स ने खास तौर से विविध भारती के लिए कहा है, आपने भी इसका जिक्र किया। अभी इस वक्त कौन सा गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं?
0: मैं सुनाना चाहूंगा किशोर कुमार का एक गाना है, वो शाम कुछ अजीब थी।
1: इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास याद है क्या आपकी?
0: इस गाने से जुड़ी हुई नहीं, ये गाना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। किशोर कुमार की जो आवाज है उसमें जो कशिश है वो एक इस गाने को खास बनाती है, और उसमें एक विचित्र किस्म की उदासी फैलती है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती
1: जी,
0: है।
1: जी, और किशोर कुमार हमने सुना है कि आपके घर भी आया करते थे।
0: किशोर कुमार मेरे पिता के साथ पढ़ते थे और क्रिश्चियन कॉलेज में वो लोग पढ़ाई करा करते थे, तो जब वो पहली बार हमारे घर आए तो मेरे दादाजी का एक पायदानी हारमोनियम था घर में, तो उसको देख के किशोर कुमार बहुत ही खुश हुए, और फिर एक नियमित वो हो गया कि वो अपना कॉलेज खत्म करके हमारे घर आ जाते थे, फिर देर रात को ही जाया करते थे। वो सिर्फ गाना गाते थे, और उस वक्त वो इतना शर्माया करते थे, ऐसे हमारे पिता बताते हैं, कि वो कोई अगर बाहरी व्यक्ति आ जाए तो गाना बंद कर देते थे।
1: ओह क्या बात है। तो ऐसी तमाम यादें होती हैं, हमें लगता है कि जब आप रंग भरते होंगे तो इन यादों को का भी समावेश करते होंगे। फिलहाल हम ये गाना सुनते हैं
0: जी।
2: वो शाम कुछ

0: थी।
1: गाने के बाद हम आते हैं उस मुद्दे पर। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग में, आपकी चित्रकारी में मध्य प्रदेश की आदिवासी संस्कृति, लोक जीवन और बहुत कुछ देखने को मिलता है, एक पूरी परंपरा देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये बताइए हमें कि ये आपकी खुद की कल्पनाशीलता है या फिर आप जाते हैं, रिसर्च करते हैं, उन आदिवासी लोगों से मिले, उनकी संस्कृति को जाना, खंगाला, बताइए विस्तार से।
0: हाँ, ये हुआ मेरे साथ जब मैंने भारत भवन में ज्वाइन किया और वहाँ पर हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने एक नया

देखना इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था, और वो साथ साथ एग्जिबिट थे एक ही छत के नीचे।

0: जो देखना है उतना गहरी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, वो मुझे लगता है कि एक शहरी कलाकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने इस आस्था को कहाँ से अपने चित्रों में प्रकट करें। तो ये जो देखना था और ये मेरा जो उनके साथ संपर्क था, उनके साथ का एक बिताया हुआ समय था, उन सब ने मुझे प्रेरित किया अपनी सीधी साधी अप्रोच की तरफ। तो उसका एक प्रभाव पड़ता ही है। और फिर हम देखते हैं कि अगर पॉल क्ले के चित्र देखें या पिकासो के आखिरी चित्र देखें, तो वो लोग भी इसी सिंपलिसिटी की तरफ आखिर में जाते हैं। जो हुसैन हो चाहे वो चाहे रजा हो, वो अपने मनुष्य होने का एहसास धीरे धीरे जब उन्हें होता है तो वो उसी सादगी, उसी आस्था और उसी मूल जो हमारी भावनाएं हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। तो ये चीजें जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है जिसका रियलाइजेशन आपको पेंटिंग करने के दौरान ही होता है,
1: मिलता है। कोई यादगार घटना या कोई यादगार बात आपके जहन में आ रही इस समय कि आप कहीं गए हों और किसी विशेष घटना से प्रभावित होकर कोई विशेष पेंटिंग बनाई हो?
0: वैसे तो मैं घटना से प्रभावित होकर के या प्रेरित होकर के चित्र नहीं बनाता हूं, क्योंकि ये प्रेरणा के जो स्रोत हैं वो बदलते रहते हैं, वो बदलते रहे हैं। और अब मेरे लिए जो प्रेरणा का स्रोत है, इसके पहले तक ये था कि मेरा पिछला चित्र ही मेरे प्रेरणा का स्रोत होता था, अब मेरे लिए जो रंग हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं। वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी है। मैं देखता हूँ कि हर रंग अपने में एक प्रश्न है जिसको रिजॉल्व करना के लिए पूरा एक जीवन चाहिए है। मतलब आप रंग के स्वभाव को जब जानना शुरू करते हैं तो वो खुद आपको चमत्कृत करते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक कैनवस पे रंग लगाया मेटेलिक ऑरेंज, जो कि बहुत ही ब्राइट और बहुत ही चमकता हुआ ऑरेंज था, और वो इतना ज्यादा चमकीला और इतना ज्यादा ब्राइट था कि मैं खुद 3 दिन तक उस पर कुछ काम नहीं कर पाया और रोज सिर्फ बैठ करके उसको देखा करता था कि अब इसके साथ ऐसा कौन सा रंग लगाया जाए जो उसकी मदद करे, उसको आगे बढ़ने में, चित्र को आगे बढ़ने मेरी सहायता करे। और 3-4 दिन के बाद मैंने उसके ऊपर एक फ्लोरोसेंट कलर ऑरेंज का डॉट लगाया, और मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा चमत्कार जैसा था कि वो जो पिछला पूरा मेटेलिक ऑरेंज था वो ब्राउन कलर में बदल गया।
1: गजब।
0: और तब मुझे एहसास हुआ कि इसके अंदर एक ब्राउन कलर भी छिपा हुआ था जो एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से प्रकट हो गया। तो ये जो रंग अपने भेद खोलते हैं किसी एक दूसरे रंग के संपर्क में आने से, ये मेरे लिए सच में बहुत ही एक आश्चर्य की बात होती है और मेरे लिए चमत्कार। आप खुद ही चमत्कृत हो जाते हैं कि ये क्या है। तो इसने मुझे दिशा में डाला कि मैं रंगों के स्वभाव को समझने के लिए उनके साथ लगातार एक प्रयोगात्मक अप्रोच रखूं।
1: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक चित्रकार रंगों से कैसे प्रयोग करता है, कैसे खेलता है। हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता भी हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन बारीकियों के बारे में बताइए कि जो रंगों की बात की तो आप रंग और रेखा के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं, किन रंगों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं और किन रंगों को मिलाकर कौन सा रंग पैदा होता है, आपके पसंदीदा रंग कौन से हैं?
0: हाँ, मेरी पहले तो मेरे पसंदीदा रंग की बात करें तो शुरुआती तौर पे मेरे को लाल रंग बहुत ही पसंद था और वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी था, किंतु अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हरी रंग एक बड़ी चुनौती है। पीला रंग लगाना सबसे मुश्किल काम है।
1: हम अपने श्रोताओं को यहाँ बताना चाहेंगे हरा रंग आपको पसंद है और अखिलेश जी हरे रंग की शर्ट पहन के आए हैं, एकदम डार्क हरा, तोता हरा, और बहुत खिल रहा है इन पर ये रंग जी।
0: हाँ, तो मुझे मतलब रंग बरतते वक्त कैनवास पे मुझे ये भी लगा कि मुझे उसे अपने जीवन में भी बरतना चाहिए, तो फिर मैं अपने कपड़ों में भी उनको ले आया और उस तरह से बहुत ही रंगों से जो डरते हुए लोग हैं, मतलब मैं उस तरह से डर के निसंकोच उनका प्रयोग करने लगा। तो ये जो रंग से आपको प्रेरणा मिलती है, ये मेरे ख्याल से सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीजें नजर आने लगती हैं, कई रूप

सभी दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण है कि आप रंग को जब देखते हैं तो ध्यान से देखें तो आपको उसके अंदर और भी चीज़ें नज़र आने लगती हैं, कई रूप भी नज़र आने लगते हैं, कई रेखाएं भी नज़र आने लगती हैं, किंतु हम अपने देखने पे हमेशा इतना

0: गाने से पहले बात चल रही थी रंगों की, रंगों की बहुत सारी बातें आपने बताई और एक बात आपने और कहा कि भारत भवन ज्वाइन किया, इंदौर में आपने शिक्षा ली, तो इंदौर से भोपाल की यात्रा के बारे में संक्षेप में बताइए।
1: इंदौर से भोपाल में सीधे नहीं आया था, मैंने दो इंटरव्यूज दिए थे, एक बेंगलोर में दिया था एक भोपाल में दिया था, और संयोग से दोनों जगह मेरा अपॉइंटमेंट मतलब हो गया था। भारत भवन में अपॉइंटमेंट करने में थोड़ा सा टाइम था, तो उन्होंने कहा कि फिर 3-4 महीने लगेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं 3-4 महीने बेंगलोर चला जाता हूँ। तो फिर मैं बेंगलोर चला गया था और वहाँ से फिर मैं भोपाल आया। तो 82 में जब भारत भवन की शुरुआत हुई उसी वक्त फिर मेरा भोपाल आना हुआ, और फिर मैंने लगभग 22 साल भारत भवन में काम किया और प्रदर्शनी लगाना, कलाकारों से मिलना, बात करना, तो ये मेरे लिए भी एक बड़ा वो था। और वहाँ के जो निदेशक थे जगदीश स्वामीनाथन, जो हिंदुस्तान के बड़े चित्रकार हैं और बड़े विचारक भी हैं, जिन्होंने चित्रकला के लिए अपना जीवन भी बिताया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उनके सानिध्य में रह करके भी चित्रकला का संसार प्रकट हुआ
0: जी। और एक हमने घटना सुनी है कि आपकी पेंटिंग की प्रदर्शनी थी और कोई अमेरिकन व्यक्ति आए और उन्होंने आपकी सारी पेंटिंग खरीद ली थी, वो क्या घटना?

0: है जरा बताइए।
1: वो मेरा पहला वन मैन शो था बंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में, और ओपनिंग में चस्य हविस करके एक अमेरिकन कलेक्टर थे जो कि सालों से हिंदुस्तान आते थे और हिंदुस्तानी कलाकारों की चित्र खरीदा करते थे, तो वो संयोग से मेरे एग्जीबिशन में आ गए थे। और मैं चूंकि अमूर्त चित्र बनाता हूं तो उन्होंने मेरे एग्जीबिशन से 4-5 चित्र खरीद लिए, जिसको देख करके मतलब जाहिर है एक अलग तरह का वो फैला, और वो पूरा एग्जीबिशन जो है मेरा आधे घंटे में सेल आउट हो गया था। तो ये मेरे लिए भी एक बड़ी चमत्कार की बात थी। और फिर दूसरे दिन चेष्टा हबीज आए, उन्होंने फिर अपने को इंट्रोड्यूस करा और बताया कि भाई मैं हूँ मेरे कलेक्टर और मैं ये काम करता रहता हूँ और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। वो और उनकी पत्नी देविदा दोनों थे, और फिर उन्होंने हमसे बात करी तो काफ़ी रुचि पूर्वक उनसे बात हुई। फिर मुझे बाद में पता चला कि वो हिंदुस्तान के जितने भी खास कलाकार थे उन सब के चित्र जो है वो खरीदा करते हैं, और उनका एक बड़ा कलेक्शन उनके पास था।
0: तो हम सब के लिए कितनी गौरव की बात है, हम सब हिंदुस्तानियों के लिए, कि विदेश से एक बंदा आकर अपने देश की चित्र को, अपने देश की

0: हुसैन साहब ने उस दौरान उन 4-5 सालों में 3 वनमैन शो किए थे प्राग में, और तीनों उनको डोनेट कर दिए थे, गिफ्ट कर दिए थे। तो कई साल बाद 2002 में मैं जब दुबई गया तो हुसैन साहब ने मुझे बताया कि मारिया आजकल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और एक बड़े फोटोग्राफर से शादी कर ली है उन्होंने, और मैं अभी उनसे मिलने गया था तो उन्होंने मेरे 80 चित्र वो जो उनको मैंने भेंट करे थे वापस लौटा दिए। और वो उन्होंने 80 चित्र जो है अपने घर के एक कमरे में पूरे डिस्प्ले कर रखे थे। और वो बहुत महत्वपूर्ण चित्र इसलिए भी थे कि वो सारे चित्र 1956 के पहले के थे
1: जी,
0: और हुसैन साहब का हुसैन बनना 1956 में बिटवीन स्पाइडर एंड द लैंप नाम की पेंटिंग से होता है, उसके बाद हुसैन हुसैन बनते हैं। मगर ये सारे काम जो हैं 50 से लेके 55-56 तक के सारे काम थे और बड़े खूबसूरत काम थे। ये उस चरनी को दिखा रहे थे जो हुसैन साहब ने तय की थी अपने को पाने तक की। वो चाहते थे कि मैं हुसैन और मारिया के प्रेम प्रसंग पर एक नॉवेल लिखूं।
1: तो आपने,
0: तो मैंने कहा कि भाई उसके लिए मेरे को प्राग जाना होगा और आपके साथ ही जाना होगा। तो हुसैन साहब बोले कि हाँ ठीक है, तो तुम अक्सर अक्टूबर नवंबर में आते हो, अगले साल तुम जून में आना, तो मैं जून में फ्री रहता हूँ तो अपन दोनों चले चलेंगे प्राग और फिर मैं आपको उन सारी जगहों को ले जाऊंगा जहाँ हम लोग मिले थे और जो हुआ था। मगर नेक्स्ट ईयर जून 10 को उनकी डेथ हो गई तो वो हो नहीं पाया,
1: ख्वाहिश अधूरी रह गई।
0: तो उन्होंने जितना मुझे बताया था उसके आधार पर मैंने एक नॉवेल की शुरुआत का अंश लिखा हुआ है जिसका नाम है हुसैन और हसीना।
1: जी, तो हम शुभकामना करते हैं कि वो उपन्यास पूरा हो, क्योंकि अब हमारी भी दिलचस्पी बढ़ गई है कि हम पढ़ना चाहेंगे। लेकिन जब आप ये बता रहे थे कि उन्होंने सारी पेंटिंग वापस कर दी।

0: यहाँ पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी भी आपने लिखी है, अब लेखन की बात चली है तो आपके लेखन के पक्ष को भी हम उजागर करना चाहते हैं। अपने श्रोताओं को बता दें कि अखिलेश जी बहुत बढ़िया, और इनके भी तो सुंदर कलम की ताकत है, बहुत बढ़िया लेखक भी हैं, तो आप इसके बारे में बताइए कैसे बाबा कारंत की ऑटोबायोग्राफी लिखने की बात मन में आई, प्रेरणा मिली आपको?
1: हाँ, मैंने है ना ऑटोबायोग्राफी लिखी है हुसैन साहब की और रजा साहब की और जगदीश स्वामीनाथन की, और जो बीबी कारंत थे उनकी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपने जब आखिरी दिन थे, बीमारी के दिन थे, उस दौरान कन्नड़ की एक प्रसिद्ध राइटर है वैदेही, उन को बोल करके अपनी ऑटोग्राफी लिखवाई थी कन्नड़ में, और उसमें ये हुआ कि उसका एक अंग्रेजी अनुवाद हुआ, और अंग्रेजी अनुवाद तो बाबा कारंत जो है भारत भवन में थे और हम लोगों की बड़ी अच्छी उनके साथ दोस्ती थी और उनके साथ काफ़ी गहरे संबंध भी थे, तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने जीवन भर काम जो किया है, ज़्यादातर काम जो है हिंदी नाटकों में किया है, हिंदी भाषा में किया है, और स्कंदगुप्त जैसा नाटक किया है, चंद्रगुप्त जैसा नाटक किया है, ये जयशंकर प्रसाद के इतने कठिन नाटक हैं कि जिसको करने के लिए किसी भी डायरेक्टर की हिम्मत नहीं हुई थी, मगर बाबा कारंत एक ऐसे विलक्षण व्यक्ति थे कि उन्होंने स्कंदगुप्त में से

0: स्कंद गुप्त नाटक क्या है वो ढूंढ निकाला। और अगर आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का ये नाटक तो शायद आप, मैं भी नहीं समझ पाया कि इसमें नाटक कहाँ है। ही वॉज ए ब्रिलियंट माइंड एक्चुअली। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी का मैंने हिंदी में अनुवाद किया और वो अभी छपने के प्रोसेस में है
1: जी।
0: तो वो इस वर्ष आ जाएगा। ऐसे ही एक मार्क शागाल बड़े पेंटर हुए हैं रशिया के, जो पेरिस चले गए थे और फिर बहुत ही, जो तीन बड़े चित्रकार हैं जिन्होंने काफी बड़े बदलाव लेके आए चित्रकला के संसार में, उसमें मार्क शागाल, पिकासो और मातिस का नाम लिया जाता है। तो उनकी भी जो ऑटोबायोग्राफी थी लावी, मतलब द लाइफ, उसका मैंने अनुवाद किया है आप बीती नाम से
1: जी जी।
0: और ये तो आप बीती सबको पढ़नी चाहिए, इसलिए भी कि मार्क शागाल ने अपने को इतने ऊपर से देखा है, इतना ऑब्जेक्टिवली देखा है कि आपको भरोसा नहीं होता ऐसा कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर रह करके अपने बारे में इस कदर लिख सकता है। वो यहूदी थे तो यहूदियों पर उस वक्त रूस में जो जुल्म हो रहे थे उन सबका उन्होंने वर्णन किया, उनके परिवार पे जो संकट आते थे यहूदी होने के नाते, यहूदी होने के नाते उनको कई चीजों से वंचित रहना पड़ता था। मास्को में नहीं जा सकते थे यहूदी लोग बगैर परमिशन के, और अगर जाएंगे तो उनके पास एक नौकर का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं नौकर हूं। ये सारा उन्होंने भुगता, मगर पूरी किताब में शिकायत का एक स्वर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी उसको पढ़ते वक्त। वो एक सीधे कविता की तरह उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि वो हर किसी को पढ़ना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपने को अपने से बाहर रह करके कैसे देख सकता है इतने ऑब्जेक्टिवली।
1: ये बहुत बड़ी बात है और एक वैचारिक समृद्धि भी मिलती है इस तरह की किताबें पढ़कर। तो हम सबको पढ़नी है ये किताब। और आपका जो लेखन पक्ष है उसमें और भी बहुत कुछ है, अचंभे का रोना और दरस पोथी और शीर्षक नहीं, इन किताबों में क्या दर्ज है हमारे श्रोताओं को?
0: ये जो मेरी किताबें हैं, इन सारी किताबों में मैंने चित्रकला पे और चित्रकारों पे जो बातचीत करी है वो है इन सारी जगह में। और उसमें कई चीजें ऐसी भी हैं जो मतलब पहली बार किसी ने चित्रकला में उसको छुआ है और उस पर बात करी है। तो ये सारे निबंध हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग चित्रकारों के ऊपर भी हैं और चित्रकला के प्रश्नों पर भी हैं। तो ये मेरे निबंधों की किताब है एक तरह से, जो 5-7 है, एक उनके बारे में भी है शीर्षक नहीं, दरस पोथी और अचंभे के रोने के अलावा। तो इस तरह से मतलब काफी लिखने का मेरा कोई पैशन नहीं है, मतलब मैंने जितना भी लिखा है हमेशा किसी के कहने पे लिखा है।
1: जी जी।
0: जैसे हुसैन साहब की बायोग्राफी भी उनके कहने पे मैंने लिखी
1: जी।
0: वैसे ही मतलब कभी किसी ने कहा कि स्वामीनाथन पे लिख दो तो फिर स्वामीनाथन की बायोग्राफी मैंने उन पे लिखी। तो ये सारे जो आर्टिकल्स या जितना भी मेरा लेखन का पक्ष है वो मतलब किसी के आमंत्रण पे है वो।
1: जी जी। तो दोनों में से कौन सा आपका पसंदीदा शौक है, पेंटिंग या लेखन?
0: मेरे लिए तो पेंटिंग ही है, मतलब लिखना तो कभी कभार है, मतलब मैंने ऐसा कुछ खास नहीं। अभी इन दिनों में एक किताब लिख रहा हूँ स्वामीनाथन के साथ, मेरे जो पर्सनल संबंध थे इतने साल, 9-10 साल मैंने उनके साथ काम किया भारत भवन में, उसके बाद 14-15 साल उनके साथ संपर्क रहा, तो एक लंबा संपर्क था। और मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात थी स्वामी से मिलना और स्वामी जी को जानना, क्योंकि जब हम लोग 74 में पहली बार दिल्ली गए थे तो वहाँ पर ट्रिनाल देखने गए थे हम लोग, इंटरनेशनल एग्जीबिशन थी और बहुत एक्साइटेड थे। जब रात को लौट रहे तो वहाँ कैनॉट प्लेस पे एक हमने बैनर देखा, सिक्स हु डिक्लाइन ट्रिनाले। तो बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी 6 लोग हैं, 6 कलाकार हैं जिन्होंने ट्रिनाल को जो है कैंसिल आउट किया। तो धूमिमल आर्ट गैलरी में वो एग्जीबिशन थी, तो हम लोग धक्का मुक्की करके जैसे तैसे अंदर घुसे तो हमें स्वामीनाथन ही दिखे एक चित्रकार की तरह। तो उनसे मतलब ऑटोग्राफ लेने के लिए हमारे सीनियर लोग जो थे, तो मैं तो उस वक्त सेकेंड ईयर में ही था, तो मैं तो सबसे जूनियर था तो सबसे पीछे ही था। तो मैंने भी अपनी स्केचबुक आगे जब बढ़ाई तो स्वामी जी ने एक ऐसे पलट के देखा, मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड हमारी नजरें मिली होंगी, उन्होंने ऑटोग्राफ करके लौटा दिया और फिर हम लोग चले भी आए
1: जी।
0: फिर जब 81 में मैं इंटरव्यू दे रहा था, इंटरव्यू देने के लिए बैठा था, तो स्वामी जी मेरे पास सीधे आए और बोले हम लोग पहले मिल चुके हैं।
1: क्या बात है।
0: तो मेरे लिए तो एकदम से मतलब
1: आश्चर्य हुआ,
0: बहुत ही आश्चर्य था, क्योंकि मुझे तो याद रहना चाहिए था कि मैं स्वामीनाथन से मिला हूँ, पर स्वामी जी को वो इतनी सी झलक उन्होंने देखी, ठीक से देखा भी नहीं होगा शायद, इतनी भीड़ थी, इतना सारा क्राउड था, बस उन्होंने वो स्केचबुक लौटाते वक्त एक जो होता है देखना मूर्ति सी नजर, बट ही रिमेम्बर वेरी क्लियरली कि हम लोग पहले मिल चुके हैं
1: जी। यहाँ पर याद कीजिए कोई गाना, कौन सा गाना सुनवाया?
0: मैं यहाँ पर मोहम्मद रफी का एक गाना, फिर मिलोगे कभी
1: इस बात का वादा कर लो, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने से पहले आपके लेखन पक्ष की बात हो रही थी, कुछ अनुवाद भी आपने किए हैं बहुत सारे, तो उन अनुवाद की किताबों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: तो एक तो मैं बता चुका हूँ मार्क शागाल की, मैंने ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद किया। दूसरा एक बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कथा की एक छोटी सी किताब है, तो उसका मैंने एक अनुवाद किया था। एक स्वीडन के नॉवेलिस्ट हैं अग्नेता प्लायल, उनका एक नॉवेल है डॉग स्टार, वो बहुत ही बढ़िया नॉवेल है। और उसमें भी वही बात है कि वो सारी झंझटों तकलीफों और मुसीबतों के जिक्र के बावजूद भी उसमें शिकायत का कोई स्वर नजर नहीं आता है, उसकी जो नायिका है उसका। तो एक मैंने उसका अनुवाद किया, और ये जो बाबा कारंत के ऑटोबायोग्राफी है उसका अनुवाद। तो इस तरह से अनुवाद का कर्म जो है, मैं मतलब अपने पढ़ने के ही एक ढंग को विकसित करने का तरीका है वो।
0: जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी, आपकी पेंटिंग्स बहुत सारे बड़े बड़े संस्थानों में संग्रहित हैं, देश में विदेश में, यहाँ तक कि फ्रांस, ललित कला अकादमी, महात्मा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वर्धा और भारत भवन में तो है ही। तो ये जो इतनी सारी पेंटिंग्स का संग्रह है आपके पास, हमारे श्रोताओं को बताइए तकरीबन कितना बड़ा संग्रह है और कैसे किया ये सब मुमकिन? एक आम जिंदगी में, एक आम चित्रकार के खाते में नहीं आता है।
1: नहीं, मेरे ख्याल से सभी चित्रकारों के खाते में आता है, और वो बस ये है कि उनको अपने काम पर भरोसा होना चाहिए और उसको लगातार दिखाते रहना चाहिए। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे अच्छे चित्रकार मेरे दोस्त हैं और अभी भी इंदौर में रहते हैं, बढ़िया काम करते हैं, और सच में वो इतना अच्छा काम करते हैं कि मेरे को उनके काम को देख करके रश्क होता है कि काश मैं भी ऐसा कर सकता था, मगर वो लोग कभी दिखाते नहीं हैं। तो ये जो एक दिखाना है, प्रदर्शन करना है, ये एक बहुत ज़रूरी पक्ष है। अदरवाइज कुछ ऐसा हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब हमें ये तो देखना ही चाहिए कि भाई हम जो काम कर रहे हैं तो लोगों तक पहुँचे कैसे। तो वो जो पहुंचना है उसी का एक रास्ता है जिसमें इन सारे संग्रह में वो कलाकृतियां जा पाती हैं, या उसमें लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तभी वो आपके चित्र को खरीदना चाहते हैं। तो इस तरह का अनुभव भी मेरा रहा है कि जब भी मैंने कहीं शो किया है तो लोगों ने उसको पसंद किया है, और उसमें से कई चित्र जो है ऐसे महत्वपूर्ण कलेक्शन में गए हैं।
0: और ये लोगों के लिए सीखने के लिए भी एक
1: जरूरी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं तो उसको हम अगर दिखाएंगे नहीं तब उसके बारे में हम कैसे कुछ तय कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो दर्शकों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अपना बनाना। तो वो जो बनाना है, खाली वहीं पर चित्र खत्म नहीं होता है, चित्र पूरा होता है जब एक दर्शक उसे देखता है।
0: सही बात है। तो भारतीय संस्कृति और कला का बड़ा ही गहरा संबंध है, और आप अपनी पेंटिंग में भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को भी उकेरते हैं, तो ये कैसे होता है उन तमाम श्रोताओं के लिए बताइए जो सीख रहे हैं।
1: हाँ, मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ भी हमारी चित्रों में आता है या हमारे स्वभाव में या हमारी बातचीत में या हमारे लिखने में, वो आपके उसी अनुभव से पैदा होता है जो आपने यहाँ रह करके उसको जाना, समझा और भोगा है। तो ये जो संबंध आपका जो बना है अपनी परंपरा से और जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों से और जो अपने दृश्य से, जो अपने रंगों से, वो ही आपकी एक स्थायी स्मृति में अनकॉन्शियसली चित्र बनाते वक्त काम करते हैं। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि भाई हमें बहुत जागरूक होकर के, एक अच्छा चित्रकार जो है वो बहुत कीन ऑब्जर्वर भी होता है, बहुत ध्यान से देखने वाला, वो एक एक चीज समझने वाला, मतलब अपनी तरह से उसको एब्जॉर्ब करने वाला होता है, और वो सारी चीजें अनकॉन्शियसली बाद में आपके काम में दिखाई देती हैं। तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ था, मेरे जो प्रदर्शनियां हुई वो जापान से लेकर के कैलिफोर्निया तक, मतलब मेरे ख्याल से तमाम देशों में भी, और उसमें ऐसे भी हुआ कि जर्मनी में शो हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब फ्रांस में हुआ तो वहाँ भी पसंद किया गया, और जब लंदन में हुआ तो, मगर ये तीनों देश ऐसे हैं कि अगर एक तरह के चित्र एक देश में पसंद है तो दूसरे देश में नहीं हो सकते हो।
0: जी जी जी।
1: क्योंकि उन लोगों के बीच में अपनी एक जो देखने समझने की फांक है वो बहुत बड़ी है। तो ये नहीं हो सकता कि जो जर्मनी में पसंद किया जा रहा है वो फ्रांस और लंदन में भी पसंद हो, या जो लंदन में पसंद किया जा रहा है वो जर्मन लोग भी पसंद करें। तो मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जी,
1: क्योंकि
0: जी।
1: जर्मन आदमी भी मनुष्य हैं और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं वो सारे मनुष्य हैं, क्योंकि मेरे चित्र कोई गाय बैल जानवर तो देखते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कोई फॉर्म नहीं है मेरे इसमें जो कॉमन फॉर्म है, ऐसे कोई लाइन नहीं है जो कॉमन लाइन है, मगर रंग एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। तो वो शायद रंग ही हैं जो मनुष्य को संबोधित हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही एनलाइटनिंग चीज थी कि मैं उसके साथ अपने चित्रों को भी समझ पाया कि मेरे चित्र में ऐसी कोई ये बात है जो एक मनुष्य को संबोधित है, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो मतलब जो चित्र न्यूयॉर्क में पसंद किए जाते हैं वो कैलिफोर्निया में बिल्कुल नहीं होते हैं।
0: जी, जी।
1: और मेरे साथ ऐसा हुआ कि न्यूयॉर्क में भी उतना ही पसंद किया गया जितना कैलिफोर्निया में। तो ये जो चीजें होती हैं, मतलब इसी ने मुझे बाध्य करा कि मैं अपने चित्रों में उस एलिमेंट को समझने की कोशिश करूं जो एक अलग अलग संस्कृति और अलग अलग विचार और अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग पसंद कर रहे हैं।
0: जी जी। यहाँ पर आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
1: मेरे ख्याल से हमें वो है जरा खफा खफा।
0: जी, सुनते
1: ये
0: हैं
1: ये वाला सुनता।

0: इस गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके लिए माना जाता है कि आपने पेंटिंग की एक नई परिभाषा गढ़ी है, एक परंपरा को नए सिरे से परिभाषित किया है, तो ये किस तरह से किया है, क्या प्रयोग किए हैं आपने?
1: मेरे ख्याल से जो कलाएं हैं, सभी कलाएं जो हैं भविष्योन्मुखी हैं और वो अपनी परंपरा से कुछ लेती हैं और उसको पुनर्परिभाषित कर देती हैं। तो ये जो एक सतत उसका अपना स्वभाव है जो चलता रहता है, हमारी कलाएं जो हैं अतीत में नहीं झांकती हैं, वो अतीत से जो कुछ भी लेना होता है वो ले लेती हैं और अपने भविष्य में अपने विचरण जारी रखती हैं। तो ये जो उनका स्वभाव है कलाओं का, वो अपने आप ही इसको इस तरह का बना देता है जिसमें आप अपनी परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें सीखते समझते और बरतते हैं और उनका एक नया रूप सामने आता है, वो पुनर्परिभाषित होकर के नए ढंग से आपके सामने आती हैं। तो ये एक संबंध जो है उसका अटूट संबंध है और इसीलिए कलाएं जो है हमेशा नई और आकर्षित करने वाली होती हैं।
0: जी, और हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए कि जो सीख रहे हैं, जो पेंटिंग की आपकी बारीकियां हैं, किन बारीकियों का ध्यान रखते हैं? जैसे बहुत सारी बातें हैं जो सीखते हैं, तो किस तरह का पेपर, ब्रश और रंग का मिलान कैसे करें? उसे
1: ये जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें तकनीकी रूप से भी ऑपरेट होती हैं और मेरे ख्याल से कोई भी चित्रकार अगर एक अच्छा चित्रकार है तो वो पहले तकनीक को अच्छे से जानता समझता है और फिर उसको बरतता है। तकनीक का गुलाम नहीं होता है, तकनीक उसकी गुलाम होती है।
0: जी जी।
1: तो चाहे हम वाटर कलर करें, चाहे हम पेस्टल कलर करें, चाहे एक्रेलिक, चाहे ऑयल, इन सब के करने का जो ढंग है वो अलग होगा। तो उसको जानना समझना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से हर युवा चित्रकार के लिए ये जो पीरियड होता है अपना कॉलेज का समय, उसका 4 साल का 5 साल का, वो इन सब तकनीकों को सिखाने के लिए एक लंबा समय होता है और उस वक्त उसको पूरे तन मन धन से ये काम करना चाहिए कि वो अपने को एक विद्यार्थी की तरह बरते। अभी मैं देखता हूँ कि विद्यालय में जाते से ही वो अपने को आर्टिस्ट की तरह बरतने लगते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। आप हमेशा विद्यार्थी रहेंगे तो आप ज्यादा सीख सकेंगे और मुझे ये भी लगता है कि एक चित्रकार जीवन भर एक विद्यार्थी ही बना रहता है, वो लगातार सीखता ही रहता है, दूसरों के चित्रों से भी सीखता है, अपने चित्रों से भी सीखता है।
0: ये कहा जाता है कि एक चित्रकार के लिए ये जरूरी है जानना कि कौन कौन से रंग को मिलाएं तो अगला रंग बनता है, जैसे आपने बातचीत के दौरान बताया।
1: हाँ,
0: ये भी थोड़ा सा बताएं।
1: ये बहुत ही जरूरी होता है कि है ना, आप रंगों के मेल मिलाप से भी एक नया रंग बनाना सीखते हैं और आप रंगों को पास पास रख करके भी एक नया रंग का अनुभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। ये दोनों चीजें आपको लगातार काम करने से ही आती है। रदा साहब अच्छी बात कहते थे कि चित्रकला वो मुश्किल प्रेमिका है, वो उसके पास चली जाएगी अगर आप 4 घंटे दे रहे हैं तो 6 घंटे वाले के पास चली जाएगी। तो जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं और फिर उसने अपने अनुभव से उसको बरत सकते हैं।
0: एक चित्र को बनाने में कितना वक्त लगता है ये बताएंगे?
1: इसमें दोनों तरह की चीज होती है। कई बार चित्र जो है खुद भी इतने जिद्दी होते हैं कि वो पूरा होने में 3 महीने 4 महीने लगा सकते हैं और कई बार काम शुरू होते से ही आप उसमें इतना रम जाते हैं कि उसी दिन वो चित्र पूरा होता है। ये एक तरह की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है कि कब आप किस मूड में किस तरह से उस काम को शुरू किए हैं। और फिर इसमें यात्राएं भी बीच बीच में बहुत सारे व्यवधान पैदा करती है। तो एक चित्र आपने बनाया तो चित्र बनाना हमेशा स्थगन का काम है। आप हमेशा अपने विचारों को रोक देते हैं वहां जहां आपने चित्र छोड़ा है। विचार बहुत तेजी से भागते हैं तो आप अगर उनका पीछा करने लगते हैं तो शायद चित्र बिगड़ सकता है, मगर आप रोक कर रखते हैं अपने को, अगले दिन आते हैं फिर वहीं से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन आते हैं तब भी वहीं से शुरू करते हैं जहां छोड़ा था। तो ये जो एक मुश्किल प्रक्रिया भी है जिसमें आप अपने को रोके रखते हैं, भले ही विचार आपके उससे आगे जा रहे हों, मगर आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते।
0: और वापस उस चित्र में, उस यात्रा में वापस लौटना भी
1: मुश्किल होता है वो।
0: जी, इस पूरी बातचीत में अखिलेश जी आपने बड़ी ही काम की बातें और बड़ी ही प्रयोगशील बातें बताई हैं, और इतनी सारी जानकारी के लिए, इतनी दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। इसके अंतर्गत हमने सुनी मशहूर चित्रकार अखिलेश वर्मा से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मैं

मीडिया वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के ठीक 5 बजे हैं। अब प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सौरभ कुमार।

नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आकाशवाणी के युवा मंच युववाणी के इस विशेष सायंकालीन अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शालिनी और अगले कुछ पलों तक आपके साथ रहूंगी। श्रोताओं, हर दिन अपने साथ लेकर आता है नई ऊर्जा, नए विचार और कुछ नया सीखने का अवसर। इसी उत्साह के साथ हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम युववाणी। आज के इस अंक में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस पर। साथ ही कार्यक्रम में होंगे डेली ट्रिविया, फन फैक्ट, सामसामायिकी और हमारे साप्ताहिक विशेष खंड मार्गदर्शन एवं प्रश्न मंच। कार्यक्रम के दौरान आपके मनोरंजन के लिए सुनवाए जाएंगे कुछ मधुर और लोकप्रिय फिल्मी गीत भी। तो श्रोताओं, तैयार हो जाइए जानकारी और मनोरंजन के इस खूबसूरत सफर के लिए। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा का ये टाइटल ट्रैक उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: पुनः स्वागत है दोस्तों आपके अपने पसंदीदा शो युवाणी में। आइए चर्चा की ओर बढ़ते हैं। विषय है अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस। यह दिवस 24 जून को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2022 में की गई थी। इसका उद्देश्य कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचान देना तथा उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना है। कूटनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न देश आपसी संवाद, सहयोग और समझदारी के आधार पर अपने संबंधों को मजबूत बनाते हैं। लंबे समय तक यह क्षेत्र मुख्य रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाला मनाया जाता था, लेकिन आज महिलाएं भी राजदूत, विदेश मंत्री, वार्ताकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रमुख के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। महिलाएं शांति स्थापना, संघर्ष समाधान, मानवाधिकारों की रक्षा और वैश्विक विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावी नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। उनकी भागीदारी से निर्णय प्रक्रिया अधिक समावेशी और संतुलित बनती है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि अस्थायी शांति और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। यह दिवस हमें लैंगिक समानता के महत्व को समझने और युवाओं, विशेषकर युवा महिलाओं को कूटनीति तथा नेतृत्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही यह समाज को यह संदेश देता है कि महिलाओं को अवसर और सम्मान देकर ही एक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील विश्व का निर्माण किया जा सकता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान करने और भविष्य में उनकी भागीदारी को और अधिक सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। साथियों, अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस पर चर्चा। अब आज के डेली ट्रिविया का प्रश्न सुन लीजिए, आकाशवाणी की क्या भूमिका है? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए साथियों, आकाशवाणी की क्या भूमिका है? आप इसका उत्तर सोचिए, हम शो में आगे सही उत्तर बताएंगे। बारी है अब हमारा साप्ताहिक अस्तम मार्गदर्शन की। आइए सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है जेई बनने का सपना। भेंट वार्ताकार है बिट्टू कुमार, भेंट करता है प्रशांत कुमार आर्य।
7: नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे करियर विकल्प पर चर्चा करने जा रहे हैं जो युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से जूनियर इंजीनियर बनने का सफर। इस विषय पर विस्तार से जानकारियां साझा करने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे शख्स जो पिछले 2 वर्ष से नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं और विभिन्न जेईई एग्जाम्स में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। बिट्टू कुमार, सबसे पहले आपका चयन होने पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
4: जी धन्यवाद।
7: और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताइए, आपकी एडुकेशन कहाँ से हुई है?
4: मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ, मैंने अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंगेर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की है। उसके बाद फिर पटना गया तैयारी करने के लिए जेईस की। फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जाम में सफलता भी मिली, जिनमें से पावर ग्रिड है, क्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, एनएचपीसी लिमिटेड भी है, और उनमें से एक को मैंने चूज किया एनएचपीसी। फिलहाल अभी मैं एनएचपीसी में एज ए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट पे कार्यरत हूँ मैं।
7: सर मान लेते हैं कोई विद्यार्थी अभी 10वीं कक्षा में है, तो वे सारे छात्र यदि अपने कैरियर में जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो कौन सा कोर्स परस्यू करें ताकि वो भविष्य में जेई बन सकते हैं?
4: देखिए जेई बनने के लिए तो बहुत सारे ब्रांच है, बहुत सारे ब्रांच में जेई बन सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, सिविल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। इन सारी चीजों से आप डिप्लोमा करके जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल कंप्यूटर साइंस से कोर्स करके आप जेई की तैयारी कर सकते हैं और जेई बन सकते हैं। जैसे मेरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद फिर जेई प्रिपरेशन की, उसके बाद मेरा पीसी में सिलेक्शन हो गया।
7: सर मान लेते हैं किसी विद्यार्थी ने डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, वे उसी समय से आगे की तैयारी को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को कैसे करें?
4: देखिए अगर कोई स्टूडेंट है कॉलेज में ही है, कॉलेज फेज में ही है, तो उसी टाइम से अगर सोच लिया है कि मुझे जेई बनना है, तो उसको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में या पास होते ही उसको लग सपना है कि हम जेई बनेंगे, तो उसको कॉलेज से कुछ बातों की ध्यान देने पड़ेगा, जिनमें से है कि कॉलेज की जो भी बुकें हैं, क्लास की जो बुक है उनको जितने सेमेस्टर वाइज बुक है उनको प्रॉपर पढ़ना, उसका पूरा पढ़ के प्रॉपर नोट्स बनाना और नोट्स को साथ में रखना, प्रॉपर रिवाइज करना उसी टाइम से, क्योंकि बाद में जब जेई की तैयारी करने जाते हैं तो उस टाइम जो एग्जामिनेशन में मुझसे पिछले सेमेस्टर सारे ही क्वेश्चन पूछी जाती है उनमें से, जो अगर चाहेंगे कि अगर जब शुरू से ही पढ़ रहे हैं कॉलेज से ही अगर अपना नोट्स बनाते चलें और उसका एक प्रोविजन के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहें तो फर्स्ट अटेम्प्ट पास आउट होने के बाद ही फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जेई बन सकते हैं आराम से।
7: जी सर थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को इस विषय पर भी दीजिए कि जो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं वे छात्र किन किन विभागों में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं?
4: देखिए जूनियर इंजीनियर्स बनने के लिए बहुत सारे विभाग हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, सेंट्रल पीएसयू का भी है, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी की को भी है, और सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में जैसे आते हैं डीडीए आते हैं और एक दो आते हैं, और अभी पब्लिक सेक्टर में आते हैं जैसे कि एनएचपीसी हुआ, एनटीपीसी हुआ, सेल हुआ, ये सब पब्लिक सेक्टर में आ गया है। गवर्नमेंट में जैसे रेलवे में आप जा सकते हैं, सीपीडब्ल्यूडी में जा सकते हैं एससी के द्वारा, और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि आरबीआई का भी कुछ कुछ वैकेंसी आती है, पावर ग्रिड भी है, पावर ग्रिड तो सेंट्रल पीओसीयू में आते हैं, स्टेट का देखा जाए तो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का भी जेई की पोस्ट उसमें आती है, स्टेट में बिजली विभाग बीएचपीसीएल से आती है, उन सारे में अब बन सकते हैं जेई।
7: जब सर कोई छात्र पास आउट कर गया है तो उसके सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है कि वे क्या परस्यू करना चाहते हैं? कुछ छात्र होते हैं कि वो लीड के द्वारा फॉरवर्ड एजुकेशन के लिए चले जाते हैं, कुछ छात्र होते हैं जेई के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो वैसे छात्र जो जेई के लिए आगे बढ़ते हैं क्या उसको बड़े बड़े शहरों की ओर जाने की आवश्यकता है या गाँव में रहकर भी तैयारी संभव है?
4: देखिए अगर जेई बनना है तो गवर्नमेंट जॉब की एक चाह रखते हैं, गवर्नमेंट जॉब करनी है किसी भी क्षेत्र में, तो जरूरी नहीं कि शहर में ही रह के हम मतलब गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, गांव में रहकर नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऑनलाइन के जमाने हैं, तो उस अभी आप बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर भी हैं जो आपको ऑनलाइन घर पे रहकर पढ़ सकते हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल ठीक है तो आप शहर में भी रह सकते पढ़ सकते हैं, मतलब ऐसा कोई है ही नहीं कि आप गांव में नहीं रहकर पढ़ सकते हैं, सेम ही ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें।
7: आपने अभी ऑनलाइन तैयारी के बारे में चर्चा किया, तो ऑनलाइन तैयारी और ऑफलाइन तैयारी में क्या बारीक फर्क है जिसके कारण लोगों को शहर जाना पड़ता है ऑफलाइन क्लासेस के लिए?
4: ऑनलाइन ऑफलाइन में ज्यादा कोई बारीक फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क ये है कि ऑनलाइन करते हैं तो बस सिर्फ एक आप सामने वीडियो रहेगा, उसमें आप सर टीचर को देखेंगे, पढ़ाई करेंगे, उतना आपका सवाल जवाब का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर ऑफलाइन पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक्चुअल थोड़ा सा ऑफलाइन में टीचर से आपको पढ़ाते हैं और कुछ डाउट होता है तो आप उसको फिजिकली जाके मिल सकते हैं और अपना जो भी आपका सवाल है सवाल जवाब कर सकते हैं, बस इतना ही सा फर्क है, बाकी कंटेंट में ऑनलाइन ऑफलाइन में लगभग बराबर ही है।
7: सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनका डिप्लोमा के समय से ही यदि हम ध्यान में रखकर अच्छी पढ़ाई करें तो हमें सफलता जल्दी मिल सकती है?
4: जैसे देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोर पेपर जो हमारी है जो ज्यादातर हर जेईस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हुआ इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड नेटवर्क सिस्टम है, इन चार पांच पेपर को अगर आप सही से ध्यान में तैयारी करेंगे तो आप जेई बन जाएंगे।
7: कॉलेज के समय से ही हमें नॉन टेक्निकल पेपर पे भी फोकस करने की आवश्यकता है?
4: जी बिल्कुल, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ टेक्निकल जेईस

0: डिप्लोमा 3 साल का जो कोर्स है उसको पास करते ही आप मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे से जेईई जॉब ले पाएंगे। अगर उसको उसमें थोड़ा सा अगर दिक्कत हुई तो आप टेक्निकल अच्छे कर लेंगे, लेकिन अगर नॉन टेक्निकल आपका अगर अच्छा नहीं है तो बाद में आपको कठिनाइयां आएगी और उसको फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। इसीलिए जब आप कॉलेज में हैं, फ्री हैं, तो नॉन टेक्निकल पे भी ध्यान देना चाहिए लोगों को।
1: सर आपने बताया कि डिप्लोमा के दौरान बच्चों को नोट्स भी बनाना चाहिए, नोट्स तो बच्चे बना लेते हैं सर, अब इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात करें तो सर अथाह है, बच्चा कितना नोट्स बनाए, तो क्या इस कारण उनको शॉर्ट नोट्स बनाने की भी आवश्यकता है?
0: जी बिल्कुल, क्योंकि नोट्स अगर आप सेल्फ स्टडी करके नोट्स बनाते हैं और या कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पढ़ के अगर नोट्स बनाते हैं तो नोट्स तो एक पूरी मोटी किताब जैसे हो जाती है, बिल्कुल पूरा मोटी किताब, क्योंकि आप बार बार उसको हर मान लो कि अभी 10 दिन बाद एग्जाम है, 5 दिन बाद मेरा एग्जाम है, तो आप सारी सब्जेक्ट होती है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, पावर सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, बहुत सारे पेपर आता है, तो आप उस सारी आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, क्योंकि वो एग्जाम टाइम काम आती है हमारी। जैसे कि अब मान लो 5 दिन बाद मेरा एग्जाम है तो अभी हम उसको आराम से हम 5 दिन में सारे शॉर्ट नोट्स पढ़ सकते हैं। एक फॉर्मूला का अपना हम तो सजेस्ट करते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल मशीन में, पावर सिस्टम में, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट सिस्टम में जो भी फॉर्मूला की जो बुक है या उसका जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको भी एक माइक्रो नोट्स की तरह बना के स्टूडेंट को रखना चाहिए, ताकि उसको एग्जाम के कम टाइम उसको हेल्प मिले, उसे अच्छे से कर लेंगे।
1: जी ये तो हो गई शॉर्ट नोट्स की बात। अब सर शॉर्ट नोट्स भी बन गया बच्चे का, बच्चों ने सिलेबस पे भी अच्छे से पकड़ बना लिया, लेकिन सर फिर भी मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए?
0: देखिए मार्क्स कम आने का बहुत सारे रीजन होते हैं, उनमें से एक है जैसे कि जब मेरा कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जेईई की फॉर्म आए, हम फॉर्म भर दिए और उसके बाद हम सोचते हैं कि जो नोट्स हम बनाए हैं उससे हम पढ़ रहे हैं और एग्जाम जाके दिए तो पता चला मेरा नोट से क्वेश्चन ही नहीं है, जो हम नोट्स पढ़ गए थे वो क्वेश्चन नोट से नहीं आ रहा है, उससे क्या हो रहा है कि मेरा एग्जाम नंबर हम कम उठा पा रहे हैं। उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए बच्चे को सिर्फ नोट्स पे ही डिपेंड नहीं रहना है कि हम जो पढ़े हैं वहीं से आएगा, क्योंकि जो एग्जाम ना जो क्वेश्चन सेट करते हैं उसका कहीं से भी कोई सेट कर सकते हैं, क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है कहां से क्वेश्चन करना है नहीं करना है। इसीलिए आपको सबसे पहली चीज ये है कि मॉक टेस्ट लगाना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहां से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब प्रीवियस ईयर जितने हर बहुत सारे जेईई की एक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, उस पर डीप एनालिसिस करके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिसमें आपको वीक है तो उस पर मैक्सिमम टाइम देके उस पर प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट लगा के उसका एनालिसिस करके आप अपने नंबर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट लगाना, उसका डीप एनालिसिस करना, ये नहीं कि हम मॉक टेस्ट लगा दिए मेरा नंबर आया देख लिया इतना नंबर है और फिर 10 मिनट उसको देख लिया क्या क्या गलत हुआ है और उसको वहां लगेगा हाँ ये गलत हुआ है तो अगले बार गलत नहीं करेंगे, नहीं फिर से गलती होगी। जब तक आप डीप एनालिसिस नहीं करेंगे उसका एक प्रॉपर नोट्स नहीं बना लेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे गलत हुआ है तो आगे से गलत ना ही हो, तो अगर ऐसे करते तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए।
1: जी सेट लगाने के बाद यदि एनालिसिस नहीं करते हैं तो उस सेट लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता।
0: जी नहीं बिल्कुल कोई भी मतलब नहीं रहता है।
1: तो हम लोग इसे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो कोर पेपर हैं, जैसे कि अभी आपने बताया इलेक्ट्रिकल मशीन्स, बेसिक सर्किट नेटवर्क, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे पेपर्स हम देखते हैं कि रेलवे में जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स के लिए और एसएससी में जेईई के लिए इन कोर पेपर से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब हम स्टेट जेईएनएस की ओर बढ़ते हैं जैसे कि यूपीपीसीएल, बीएस, पीएचसीएल, तो इन एग्जाम्स में हम लोग देखते हैं कि किसी एग्जाम से माइक्रो प्रोसेसर पूछ लिया गया, माइक्रो कंट्रोलर पूछ लिया गया, किसी एग्जाम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ लिया गया, किसी एग्जाम में पता चला कि कंट्रोल सिस्टम पूछ लिया गया, तो बच्चा इन सब कठिनाइयों को भी कैसे झेले, कैसे तैयारी करे इन सारे पेपर्स की?
0: देखिए जिसने जैसे आपने बताया जो स्टेट का जो भी जेईई का एग्जाम है, खास करके यूपीपीसीएल हो गया, बीएचपीसीएल जो बताया आपने ये हो गया,
1: हाँ, बिहार जेईई
0: का हो गया, और भी जो स्टेट की जो जेईई के फॉर्म आते हैं उनमें से जो पूछते हैं जो क्वेश्चन से माइक्रो प्रोसेसर से पूछता है, माइक्रो कंट्रोलर से, कंट्रोल सिस्टम से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से, पावर इलेक्ट्रॉनिक से, ये बहुत सारे मतलब एक कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसको भी हमको छोड़ना नहीं है, तो इसके लिए
1: इसको भी साथ लेकर
0: चलना है। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आप किसी ऑनलाइन भी चाहे ऑफलाइन चाहे कोई बुक से किसी टीचर की हेल्प से आप उसको एक थोड़ा उसका ओवरव्यू पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं जेईई में, तो आप उसके ओवरव्यू क्वेश्चन जो भी है या प्रीवियस ईयर जो पूछे हैं क्वेश्चन उसी के रिलेटेड से आप पढ़ के नोट्स प्रॉपर बना के रखिए और उसी की तैयारी कीजिए, आपका हो जाएगा, क्योंकि इसे कुछ ही एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आता है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर से, तो उसके लिए हमको तो ऑनलाइन चाहे तो किसी बुक से उसका एक शॉर्ट नोट्स बना के रख लेंगे, उसको हम प्रैक्टिस करते रहेंगे।
1: अब सर जो बच्चों के मन में सबसे बड़ी डाउट रहती है कि उनका डेली स्टडी रूटीन कैसा होना चाहिए जिससे कि वो लंबे समय तक कंसिस्टेंसी रख कर तैयारी कर सकें।
0: देखिए ये आपने बहुत अच्छी बात की, डेली रूटीन क्या होती है, इसे बताया ना कि बहुत सारे स्टूडेंट बाहर में चाहे घर में कोई पढ़ रहा है तो चाहता है कि हम 12 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा पढ़ लेंगे, तो देखिए सिर्फ टाइम गिनने से नहीं होता कि हम 18 घंटा या 12 घंटा पढ़ रहे हैं, मेन चीज यहाँ है कि आप मतलब किस तरह से पढ़ रहे हैं। आप 5 घंटा ही पढ़ रहे हैं तो

0: फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, आपका डेली रूटीन ऐसा होना चाहिए, एक गोल सेट कर लेते हैं किसी के, हम आज हमको देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन का चैप्टर है ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में हमको देखना है कि अगर इसको इस टॉपिक को आज ख़त्म करना है प्रैक्टिस के और डेली क्वेश्चन के साथ, तो उस तरह से हमको पढ़ना है। जैसे कि एक रूटीन बना लेंगे हम लोग कि आज दो तीन सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक है उसको ख़त्म करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, उसके साथ डीप उसके एनालिसिस करना है, तो इस तरह से हमको उसको डेली करना पड़ेगा।
1: सर थोड़ा हमारे श्रोताओं को, हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के कोर पेपर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बताइए, ताकि उनको उस टॉपिक को नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है।
0: देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आप नेटवर्क सिस्टम में दे सकते हैं, जैसे एसी डीसी सर्किट हमारा है, रेजोनेंस सिस्टम है
1: जी।
0: ये कुछ कुछ दो तीन चैप्टर ऐसा है कि जो हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ठीक है ना, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है।
1: और आपने अपनी तैयारी के दौरान जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो आपने सबसे बड़ी चैलेंज क्या फेस किया था उस दौरान, जब आपके मार्क्स जैसे 100 में 60 आ रहे हैं तो 60 आ रहे थे वो बढ़ नहीं रहे थे, तो उस फेज को आपने कैसे पार किया, उस फेज को आपने कैसे पार किया?
0: जब हम तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे, जैसे कि एग्ज़ाम दे रहे हैं नंबर उठ नहीं पा रहा, नहीं आ नहीं पा रहा, उनमें से मतलब कि बहुत सारी दिक्कत हुई थी, लेकिन का उसका इम्प्रूवमेंट हम जैसे मॉक टेस्ट के जरिया, जैसे कि आप मार्क्स को अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए बुक भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे जो भी पेपर का जो भी से इलेक्ट्रिकल का बुक है, बीएल थरेजा पावर सिस्टम का, बीके मेहता से बुक आती है, आप उनसे उनका जो टॉपिक वाइज है उनसे पढ़ पढ़ के, क्योंकि सिर्फ नोट्स हम लोग करते थे कि पहले नोट्स पढ़ लिया उसके बाद चले जाते थे एग्जाम देने, जिससे हम लोग का नंबर उठता नहीं था। तब हम लोग ने फिर ट्राई किया कि नहीं, सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं रहना है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करना है, बुक भी पढ़ना है, तो बुक पढ़ना शुरू किए, बुक से जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट्स में प्रॉपर अपडेट करते गए, पढ़ते गए, फिर इसके साथ।
1: तो सर अभी आप बुक का चर्चा कर रहे थे, तो अब हमारे श्रोताओं को इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में बताइए, क्या अलग अलग बुक्स खरीदने की आवश्यकता है अलग अलग सब्जेक्ट का, या फिर कोई एक ऐसा रेफरेंस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए हमारे श्रोताओं को बुक बताइए जिसके माध्यम से वे अपनी तैयारी को आसान बना सकें।
0: देखिए रेफरेंस प्रैक्टिस के लिए तो बुक तो बहुत सारी आती है, जैसे वीके मेहता का ऑब्जेक्टिव बुक आती है, जेबी गुप्ता का बुक आता है, आर के राजपूत का बुक आता है, और फिर ये यूथ पब्लिकेशन का भी बहुत सारे बुक आता है, लेकिन हमने जो तैयारी की थी हमने वीके मेहता और ये जेबी गुप्ता को मतलब उसको
1: प्रेफर
0: किए थे, उसके साथ तैयारी किए थे हम
1: जी। सर मान लेते हैं इन सारी तैयारियों के बावजूद यदि किन्हीं का किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वे छात्र किन किन कोर्सेज को करके प्राइवेट सेक्टर में जॉब हासिल कर सकते हैं?
0: देखिए अगर मतलब ये बात सही है आपका है, क्योंकि जेईस की वैकेंसी लिमिट में निकलती है, लड़के बहुत सारे होते हैं, 10 100 200 300 पोस्ट निकले, लाखों में बच्चे होते हैं, सबका तो मतलब जॉब होना संभव तो है नहीं, लेकिन जिसका जॉब नहीं हुआ है तो वो अप्रेंटिसशिप का एक मतलब कि कोर्स है, जो चाहे किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में या किसी पीएसयू में करके अपना अप्रेंटिसशिप का पावर ग्रिड जैसे हो गया, एनएचपीसी हो गया, सेल हो गया, उसमें अप्रेंटिसशिप करके उसका एक साल या दो साल का मतलब करके मतलब एक्सपीरियंस लेके कहीं आप प्राइवेट सेक्टर में जाके मतलब अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं।
1: और सर ये तो हो गई जेईएन की बात, लेकिन वैसे छात्र जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर चुके हैं।
2: साथियों अभी आप सुन रहे थे मार्गदर्शन में भेंटवार्ता, जेई बनने का सपना। भेंटवार्ताकार थे बिट्टू कुमार, भेंटकर्ता थे प्रशांत कुमार आर्य। प्रस्तुत है अब प्रश्न मंच। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। पहले हमारा प्रश्न था, भारतीय डाक सेवा की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर है 1 अक्टूबर 1854। आज का प्रश्न सुन लीजिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए श्रोताओं, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? साथियों इस प्रश्न का उत्तर हमें अवश्य भेजिएगा। अब समय है डेली ट्रिविया के उत्तर का। हमारा प्रश्न था, आकाशवाणी की क्या भूमिका है? इसका सही उत्तर है, यह भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है। यह देश के सार्वजनिक सेवा प्रसारण निगम प्रसार भारती के दो अंगों में से एक है। दूसरा अंग दूरदर्शन है, जो इसका टेलीविजन समकक्ष है। आज का फन फैक्ट भी जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि आकाशवाणी दुनिया के सबसे बड़े रेडियो प्रसारण नेटवर्कों में से एक है? इसकी पहुंच भारत की लगभग 99% जनसंख्या और देश के अधिकांश भौगोलिक क्षेत्र तक है। दोस्तों, अभी आपने डेली ट्रिविया का उत्तर और आज का फन फैक्ट जाना, और अब प्रस्तुत है सामसामायिकी। 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म सिल्वर को गोल्डन कांच पुरस्कार प्रदान किया गया है। कुणाल शाह को जून 2026 में व्हाट्सएप का वैश्विक प्रमुख नियुक्त किया गया। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप का इतिहास के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने। चिरंत विश्वनाथ जापान के मोतेगी रेस ट्रैक पर रेस जीतने वाले पहले भारतीय मोटरसाइकिल रेसर बने। ब्रिस्क एनएसए बैठक का आयोजन नई दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हुआ। आज के समसामयिक खबरों में इतना ही। आशा करती हूँ ये खबरें आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुमूल्य साबित होंगे। तो श्रोताओं, ये थी आज की कुछ प्रमुख समसामयिक झलकियाँ। उम्मीद है जानकारी और मनोरंजन से सजा आज का युववाणी का यह अंक आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। आज के कार्यक्रम में हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस के महत्व को जाना, डेली ट्रिविया मार्गदर्शन, प्रश्न मंच, फन फैक्ट और समसामयिकी जैसे विभिन्न रोचक एवं ज्ञानवर्धक खंडों का आनंद लिया। अब अपने रेडियो दोस्त शालिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सौरभ कुमार। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म बाजीराव मस्तानी का यह लोकप्रिय गीत। इस गीत को गाया है श्रेया घोषाल, गणेश चंदन शिवे, मुस्तबा अजीज नाजा और साथियों ने। इसके बोल लिखे हैं गणेश चंदन शिवे, नासिर फराज, सिद्धार्थ और गरिमा ने। इस गीत को संगीतबद्ध किया है संजय लीला भंसाली ने।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और अनंतरा मित्रा की आवाज में फिल्म दिलवाले का गीत। अमिताभ भट्टाचार्य ने इसके बोल लिखे हैं, संगीत है प्रीतम का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको एक आवश्यक सूचना दे दें, युवावाणी कार्यक्रम के अंतर्गत फोन इन कुछ बातें कुछ गाने की रिकॉर्डिंग दिनांक 25 जून 2026 को दिन गुरुवार को समय दोपहर 2 बजे से 2:30 के बीच रखी गई है। युवा दोस्तों, जिन्हें अपनी पसंद के गीत सुनना हो, आप दूरभाष संख्या 2400981 पर कॉल करें। भागलपुर से बाहर के युवा दोस्त STD कोड 0641 लगाकर कॉल करें। दोस्तों, दिन और समय याद रखें, गुरुवार 25 जून 2026 दोपहर 2 बजे से 2:30 के बीच। नंबर एक बार फिर से दोहरा देता हूं, नंबर है 2400981। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 30 जून को ठीक संध्या 5 बजे से। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आई हेट लव स्टोरीज़ का गीत। इस गीत को गाया था राहत फ़तेह अली खान ने। इस गीत को संगीतबद्ध किया था विशाल और शेखर ने, और इसे लिखा था कुमार ने।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश
2: चेश
0: और बाल्टी बॉय।

0: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय।
1: कार्यक्रम में सुनते हैं अब जन्नत 2 का ये गीत। इस गीत को गाया है केके ने, प्रीतम ने इसे संगीतबद्ध किया है और इसके बोल लिखे हैं संजय मासूम ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं आखिरी गीत कार्यक्रम का, फिल्म लव ब्रेकअप्स और जिंदगी से। इस गीत को गाया है सोनू निगम, श्रेया घोषाल, श्रद्धा पंडित और सलीम मर्चेंट ने। सलीम और सुलेमान का संगीत है, जावेद अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं।

इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में श्रोताओं अब आइए जान ले आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद संध्या ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। संध्या 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विशेष भेंटवार्ता में एक भेंटवार्ता विषय है ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण। भेंटवार्ताकार हैं श्रीमती चेतना त्रिपाठी, भेंटकर्ता हैं नाओमी शांति हेमब्रम। आज संध्या 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुलहरी में गायक कलाकार चेतन कुमार चौबे की प्रस्तुति सुनेंगे आप। रात्रि 8 बजे जरूर सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 10:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

अब कल के कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, कल प्रातः 5:48 पर आरंभ होगी हमारी कल की सभा। 5:55 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों और बहनों को संबोधित दैनिक कार्यक्रम खेत खलियान। 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में एक वार्ता सुनेंगे आप, विषय है कान की देखभाल कैसे करें। वार्ताकार हैं डॉक्टर अजीत कुमार मिश्रा। 6:40 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। 7:00 से 7:55 तक आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। इसके अंतर्गत सबसे पहले आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम रसरंग में गायक कलाकार ध्रुव कुमार पंकज की प्रस्तुति। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कथा सागर में एक कहानी, शीर्षक है बेचारा, कहानीकार है देवेंद्र सौरभ। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत और इस दौरान आप जानेंगे कुछ जरूरी सूचनाएं, जैसे रेल सूचना, मौसम सूचना, कल का इतिहास और कल के समाचार पत्रों की कुछ प्रमुख सुर्खियां।

कल प्रातः 9:06 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। 9:30 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आप गायक कलाकार लक्ष्मण सिंह बेदी की प्रस्तुति सुनेंगे। 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। 10:30 पर आप सुनेंगे रेडियो नाटक, शीर्षक है अब बस भी करो, लेखक हैं जयप्रकाश शर्मा और प्रस्तुतकर्ता है सचिन कुमार। दिन में 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नई फिल्मों से। 11:30 पर फिल्म संगीत की खास पेशकश गुलदस्ता लेकर आएंगे हम। 12:00 आप सुनेंगे शहरी महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोग। 12:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 1:00 आप सुनेंगे लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में गायिका रूपा सिंह की प्रस्तुति। 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो धारावाहिक में गंगा के सुरताल। लेखिका है अशोक अंचल और प्रस्तुतकर्ता है रुस्मती छतर। कल दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। 3:00 आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम तरंग में गायक कलाकार चंदन दास की प्रस्तुति।

कल संध्या 5 बजे आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। संध्या 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकगीत में गायिका सोनी कुमारी की प्रस्तुति। 7:52 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम सुरलहरी में गायिका प्रतिभा सिन्हा की प्रस्तुति सुनेंगे आप। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में कलाकार पंडित राजेंद्र प्रसन्ना की प्रस्तुति। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाना सफर। कार्यक्रम विवरण में अभी आपने जाना आज के शेष और कल की सभा में हमारे स्टूडियो से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की प्रस्तुति और उनके प्रसारण समय के बारे में। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन।

0: ग्राम जगत के सब श्रोता का विदो के नमस्कार
1: और सभी को आरू का भी नमस्कार। विदो भाई आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार आरू बहिन, बताओ की हाल समाचार छे?
1: सब बढ़िया है विदो भाई। और अभी मुंडन जनों सबका जो है दिन स्टार्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ एक सेलिब्रेशन वाला उत्सव वाला माहौल है।
0: हाँ जी। हाँ, अब तो विवाह के समय भी शुरू हो गलो छे, आए भी बहुत दिन छे।
1: ओ अच्छा, तो और बताइए विदो भाई, मौसम का क्या हालचाल है?
0: मौसम
1: क्या
0: तो
1: लग रहा है आपको?
0: गर्मी एकदम चरम पर चढ़ी गलो छे, यही वास्ते है समय में सावधानी रखे की जरूरत छे, विशेषकर बच्चा का और बूढ़ों पर। आरु बच्चा का बूढ़ों के बीच बीच में हमेशा पानी पीता रहना चाहिए, भूखलो बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब बाहर निकलना जो धूप में जरूरी रह तब ही निकलना चाहिए, नहीं तो धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर निकले वक्त ही अपनों पास छाता रखना चाहिए, साथ ही साथ पानी के बोतल भी रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। और वो पर्यावरण परिवर्तन की वजह से, वैसे हम लोग के बिहार में 10 से 15 जून तक मानसून प्रवेश कर जाता था, जो कि अभी आप देख रहे होंगे कि अभी आज 24 जून है और कहीं भी बारिश का आता पता नहीं है, और हर जगह लग रहा है जैसे ज़मीन बंजर हो गई। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे भाप निकलते रहता है, और अगर आप धूप ढलने के बाद भी घर से बाहर निकलते हैं फिर भी लू लग जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम लोग खुद ही जो है पर्यावरण को इतना ऐसे कर लिए हैं, खुद सिर्फ हम व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि जो कारखाने हैं वैश्विक स्तर पर जी। तो और उसका असर जो है अब हम लोग को दिख रहा है, जो बहुत ही खतरनाक है। तो हम
0: प्रकृति के विधान में क्षमा के प्रावधान कहीं नहीं छे, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर लो जाए छे तो प्रकृति निश्चित रूप से दंड दे छे, और वही दंड के परिणाम स्वरूप छे कि अभी भीषण गर्मी चली रही छे, अब वर्षा के बहुत कम संभावना छे। लेकिन है गर्मी के दिन में बच्चा के बचाव वास्ते माँ के विशेष रूप से भूमिका रहे छे, माँ का हमेशा बच्चा पर ध्यान देना चाहिए। आरो महिला के भूमिका जे छे आव परिवार घर परिवार से लेकर हर स्तर पर बहुत बढ़ी गलो छे, यहाँ तक कि सामाजिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी।
1: बिल्कुल।
0: राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर क्षेत्र में महिला विकास करलो छे, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र रह, खेल के क्षेत्र रह, कला के क्षेत्र रह, हर क्षेत्र में अपनों बहुत दूर विकास करलो छे। यही चलता आज के 24 जून छिके, आ प्रत्येक वर्ष 24 जून का कूटनीति में महिला के अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला मनेलो जाए छे।
1: बिल्कुल विदो भाई, और वैश्विक मंच पर शांति सुरक्षा और सहयोग स्थापित करने में महिलाओं की भूमिका जो वो हमेशा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन आधुनिक समय में कूटनीति, जिसे हम डिप्लोमेसी भी कहते हैं, के क्षेत्र में उनका प्रभाव जो बहुत तेजी से बढ़ा है। ऐतिहासिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में आज महिलाएं अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर वैश्विक नीतियों को आकार दे रही है। विदो भाई, जैसे आज दुनिया भर में महिला राजदूत, विदेश मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख जटिल वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में नेतृत्व कर रही हैं, और हम अपने देश भारत को ही लें तो अभी हमारे देश की जो राष्ट्राध्यक्ष जिसको कहते हैं राष्ट्रपति, वो भी एक महिला ही हैं। और साथ ही कूटनीति में महिलाओं की भागीदारी जो है विदो भाई, वो केवल एक समानता का मामला नहीं है बल्कि यह एक निर्णय लेने की एक प्रक्रिया में विविधता और संवेदनशीलता लाती है। शोध बताते हैं कि जिन शांति समझौतों में महिलाएं शामिल होती है वे अधिक अस्थायी और दीर्घकालिक होते हैं।
0: है दिवस मनाए के मुख्य उद्देश्य छिके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शांति निर्माण और राजनयिक सेवा में महिला के महत्वपूर्ण भूमिका के योगदान का मान्यता देना। यानी अब महिला हर स्तर पर आगू बढ़ी ही रहलो छले, कूटनीति के स्तर में भी पीछू नहीं रहले। है दिन महिला राजनयिक, शांति दूत और मध्यस्थ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करलो गेलो कार्य का सम्मानित करे छे। जब शांति वार्ता और कूटनीति फैसला में महिला शामिल हुई छे तो उस समझौता जे छे अधिक स्थायी आरु समावेशी हुई छे।
1: बिल्कुल।
0: ऐतिहासिक रूप से कूटनीति के क्षेत्र में महिला के प्रतिनिधित्व कम हो रहलो छले, लेकिन है दिवस मनवाए के मुख्य उद्देश्य छिके कि उच्च पद पर महिला के समान भागीदारी के वकालत करना।
1: बिल्कुल सही बोले विदो भाई, पारंपरिक दृढ़िवादिता और नेतृत्व के अवसरों में कमी के कारण आज भी कई देशों में कूटनीतिक स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। ग्लास सीलिंग को तोड़कर उन्हें उच्च पदों तक पहुंचाने के लिए ढांचागत बदलाव की आवश्यकता है। और विदो भाई, वुमेन इन डिप्लोमेसी जो है वो एक केवल ट्रेंड नहीं है बल्कि एक वैश्विक स्थिरता की आवश्यकता है। जब महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बातचीत की मेज पर बैठती हैं तो वे अधिक समावेशी, मानवीय और सुरक्षित दुनिया का निर्माण करती हैं और कूटनीति में उनकी बढ़ती संख्या एक अधिक संतुलित वैश्विक भविष्य का संकेत है।
0: कूटनीति में महिला न केवल अंतर्राष्ट्रीय मामला में भागीदार है बल्कि शांति के सूत्रधार, समानता के पैरोकार और वैश्विक सहयोग के भविष्य का आकार दे वाला नेता भी छिके। तक अभी आरुषनी बात पर भी चर्चा करबे, लेकिन अभी श्रोता लोग के एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुनवाई छे महिलाओं के स्वावलंबन में फल संस्करण की भूमिका, वार्ताकार छिके श्रीमती सुजाता पंडित
1: जी।

महिलाओं का कदम अब पुरुषों की बैसाखी का मोहताज नहीं रहा है। एक जमाने में आर्थिक और कारोबारी क्षेत्र में महिलाओं की क्षमता पर शक किया जाता था, लेकिन अब जब यहाँ महिलाएं सफलता की नई कहानियाँ लिख रही हैं, महिला उद्यमिता हमारी आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। बिना महिलाओं को स्वावलंबी बनाए हम महिलाओं के सशक्तिकरण के स्वप्न को भी साकार नहीं कर सकते हैं। फल प्रसंस्करण उद्योग महिला उद्यमिता को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान

दे सकता है, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में जहाँ महिलाएं पर्याप्त रूप से शिक्षित व कुशल नहीं हैं। साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश के कारण अनेक घरों से ज़्यादा दूर जाने पर बंदिशें भी होती हैं। ऐसे में उद्योगों को बढ़ावा देकर ही महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो सकता है। हमारे यहाँ महिलाओं को सशक्त, स्वावलंबी, आत्मविश्वासी बनाने में काफ़ी हद तक फल प्रसंस्करण की सराहनीय भूमिका रहेगी। हमारे यहाँ फल प्रसंस्करण पर आधारित कार्य करने वाली कई सफल महिलाओं के उदाहरण भी हैं। आज आप मजबूत इरादों से लिखी एक लता की कहानी सुने। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के एक गांव के निवासी गोवर्धन यादव की नौकरी छूट गई थी। उनके लिए भरण पोषण करना मुश्किल हो गया था। उनकी पत्नी एकदम निरक्षर थी, लेकिन उनकी सोच ने पूरे परिवार को न केवल आत्मनिर्भर बनाया बल्कि फल प्रसंस्करण उद्योग में अचार बनाकर 100 से अधिक महिलाओं को रोजगार भी दिया है। उन्हें 10 साल पहले 2-4 किलो अचार बेचना मुश्किल होता था, वहीं आज सुबह 9 बजे से लेकर रात 7 बजे तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। आज कृष्णा पिकल्स के ब्रांड से अचार के लगभग 150 से अधिक उत्पाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक लोकप्रिय हो चुके हैं। इनको इस कामयाबी के लिए दर्जनों पुरस्कार एवं सम्मान भी मिल चुके हैं। उनका कहना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, मजबूत इरादे के साथ कोई भी काम शुरू करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। बिहार में फलों का उत्पादन इतनी तेजी से बढ़ा है कि अब घरेलू खपत के बाद उसके निर्यात तथा उसे संसाधित यानी प्रोसेस करने पर जोर देना जरूरी हो गया है, ताकि महंगे कृषि निवेश से बढ़ती लागत के विरुद्ध लाभ को अधिकतम किया जा सके। इस दृष्टि से यह जरूरी है कि महिलाएं फलों के उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करके फल प्रसंस्करण उद्योग के लिए अच्छी भूमिका निभा सकती हैं। महिलाओं में जितनी दूरदृष्टि होती है उनमें बहुत ही विराट कल्पना शक्ति होती है, सृजनशीलता है, केवल उन्हें जगाना है तथा मुख्य धारा से जोड़ना है। आजकल महिलाओं के प्रति धीरे धीरे समाज की सोच बदल रही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भी कृषि क्षेत्र से काफ़ी संभावनाएं, खासतौर से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पहल की गई है। हाल में केंद्र सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत बनाने की दिशा में भी पहल की है। इसके तथा अन्य माध्यमों से खेतिहर महिलाओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध कृषि उत्पादों के मूल्यवर्धन और कटाई उपरांत साज संभाल, गृहवाटिका, नर्सरी उगाने, पुष्प कृषि, मधुमक्खी पालन, खुम्बी उत्पादन आदि के गहन प्रशिक्षण देकर अधिक आय सृजित करने के लिए तैयार किया जा रहा है। फल प्रसंस्करण उद्योग के माध्यम से महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। यदि वे उद्यमी बने तथा गृह एवं कुटीर उद्योग को जीविका का साधन बनाकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। यूँ तो हमारे देश में फलों से अचार, चटनी, मुरब्बा, अमावट, सुखौता आदि तैयार कर वर्ष भर घरों में रखने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन इसकी उचित जानकारी संसाधन के अभाव के कारण लगभग 30-40% फल नष्ट हो जाते हैं तथा उत्पादन का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। फल प्रसंस्करण उद्योग प्रारंभ करने से पहले हमें यह देखना होगा कि जिस क्षेत्र में उद्योग स्थापित करना है वहाँ पर कौन कौन से फलों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। दूसरा, कि उत्पादित फलों से कौन कौन से प्रसंस्कृत पदार्थ तैयार हो सकते हैं। तीसरा, इन तैयार किए गए प्रसंस्कृत पदार्थ की बाजार में उचित मांग है या नहीं। हमारे राज्य में आम, लीची, अमरूद, केला,

0: नींबू, अनानास, कटहल आदि फलों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है। इन फलों से उद्योग में विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार कर सकते हैं, जैसे आम से कच्चे आम की चटनी, कच्चे आम का अचार, कच्चे आम का स्क्वैश, पके आम का स्क्वैश, पके आम का जैम, अमावट, लीची से स्क्वैश, लीची का जैम, सुखौता, अमरूद से जेली उसका स्क्वैश, केला से चिप्स पाउडर, अनानास से स्क्वैश जैम, नींबू से अचार स्क्वैश, कटहल से अचार, आंवला से मुरब्बा, सुखौता आदि बनाए जा सकते हैं। इन बताए गए उत्पादों को महिलाएं फल प्रसंस्करण के गृह एवं कुटीर उद्योग स्थापित कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकती हैं। इससे महिलाओं के पोषाहार में सुधार लाया जा सकता है तथा उन उपभोक्ताओं को बेहतर उत्पाद उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
1: हाँ, अभी महिला के स्वावलंबन में फल संस्करण की भूमिका पर बहुत अच्छा जानकारी दिल के श्रीमती सुजाता पंडित ने, एकरा वास्ते उनका बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी बिंदु भाई। हाँ। और महिला स्वावलंबन में जब महिलाएं आर्थिक रूप से जब सशक्त हो जाती है बिंदु भाई, तो कहीं ना कहीं सामाजिक और मानसिक रूप से भी वो आत्मनिर्भर होने लगती है।
1: हाँ,
2: तो कहीं ना कहीं हर महिला को अपने आर्थिक स्वतंत्रता पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
1: हाँ, महिला में जे छे दूरदृष्टि भी होइ छे, कल्पनाशीलता भी होइ छे आ महिला सृजनशील भी होइ छे। ये वास्तव महिला जोन क्षेत्र में आगू बढ़े छे वैम जे छे खूब सफलता प्राप्त करे छे।
2: और अभी समय भी इतना अच्छा है ना कि हर जगह से सहयोग मिल रहा है, चाहे आपका राज्य स्तर पे हो या देश राष्ट्रीय स्तर पे, हर जगह महिलाओं के स्वावलंबन का काम हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बस क्या करना है, जागरूकता के साथ उसका लाभ उठाना है।
1: हाँ हाँ
2: जी।
1: तो आब जे छे एक श्रोता लोग का एक झूमर सुनवाई छे।

0: हाँ, इतना सुंदर झूमर सुनलाक बाद मोन एकदम प्रसन्न हो गेलै। नदिया किनारे थार रे गोरी ले मछली बिंदिया ले गेल मछलिया। एकरा वास्ते कलाकार इंद्राणी सिन्हा का बहुत बहुत धन्यवाद। आरु आवा कुछ विज्ञापन संदेश सुनलाक बाद श्रोता लोग का फेरू से एक झूमर सुनबे।
1: Diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km and running costs of under ₹1 per km. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
2: Nexa.
3: सुनो ना।
2: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
3: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: लेते हैं।
1: बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर से झूमर सुनने के बाद एक बार फिर से सभी श्रोता भाइयों का कार्यक्रम में स्वागत है।
0: लेकिन पहिने जे छे आरु बहिन श्रोता लोग का मौसम संबंधी सूचना सुनाई दे छे।
1: बिल्कुल, मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि यानी कि आज से लेके 28 जून के दौरान भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान है। दक्षिण बिहार के अन्य जिलों मैं 24-25 जून के दौरान लू चलने की संभावना है। इसके बाद जिलों के एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 60 से 70% तथा दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिणी पूर्वी हवा चलने का अनुमान है। कुछ समसामयिक सुझाव भी है हमारे किसान भाइयों के लिए, जैसे कि धान के लिए सुझाव यह है कि वर्तमान में मानसून की कमजोर स्थिति को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि ऊंची भूमि में धान की खेती ना करें। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मध्यम अवधि वाली धान की किस्मों का बिचड़ा गिराएं तथा बीज स्थली में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकतानुसार जीवन रक्षक सिंचाई करें। विशेषकर ऊंची भूमि में धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती का विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। मक्का के लिए समसामयिक सुझाव यह है कि खरीफ मक्का की बुआई आसमान साफ रहने पर ही करें। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सरी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर एवं 50 किलो पोटास का व्यवहार करें। अनुशंसित मक्का की किस्में जैसे स्वान, देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर, मक्का 3, गंगा 11 है। मूंग के लिए समसामयिक सुझाव यह है कि मूंग की तैयार फलियों की तुराई करें तथा हरी खाद हेतु उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ दें। सब्जियों के लिए भी कुछ समसामयिक सुझाव है, जैसे सब्जियों के लिए है कि भिंडी, कद्दू, खीरा, नेनुआ एवं लौकी की फसलों में निराई गुराई खरपतवार नियंत्रण करें।
0: हाँ, तो अब आरु बहिन श्रोता लोग का जे छे कुछ संदेश सुनेला के बाद एक प्रायोजित कार्यक्रम सुनवाई छे पारा मेडिकल हाइपारस।
2: Some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners starting at just rupees 6.85 lakh.

0: So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने? बीज तो कब के बो दिए?
1: मैं फसल की नहीं, NPS संचय की बात कर रहा हूँ।
2: हैं? मास्टर जी, ये NPS संचय क्या है?
1: NPS संचय भारत सरकार के प्राधिकरण PFRDA द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही NPS संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार NPS संचय के साथ।
3: बागवानी के लिए सुझाव यह है कि लीची की फल की तुराई के बाद बगीचों में आवश्यक छटाई कर लें, जिससे पेड़ों के भीतर पर्याप्त धूप एवं हवा का संचार हो सके। साथ ही बगीचे में गिरे हुए पत्तों, सूखी शाखाओं एवं अन्य पौध अवशेषों को एकत्र कर हटा लें। इसे कीट एवं रोगों के प्रकोप में कमी आएगी तथा पेड़ों की स्वस्थ वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। सब्जियों में सुंडियों एवं फलछेदक कीटों की नियमित निगरानी करें। प्रकोप होने पर डाइमेथोइड 30 EC का 1 मिली प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी की तैयारी आसमान साफ रहने पर ही करें। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद अवश्य डालें। खरीफ प्याज के लिए NF 53 का प्रयोग करें। श्रोताओं, इसी के साथ समय हो गया है एक प्रायोजित कार्यक्रम सुनने का, तो सुनते हैं यह कार्यक्रम।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
5: पूरे बिहार के लोग, जी हां, पूरे बिहार के लोग जो हमारा ये कार्यक्रम पैरा मेडिकल है पारस सुन रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम, नमस्कार। इस कार्यक्रम में साथियों आपका सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये कार्यक्रम वर्षों से चल रहा है, चल ही नहीं रहा, आपका मार्गदर्शन भी कर रहा है, खास करके वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है और हेल्थ के सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ने जब आपके राजेश के साथ इस कार्यक्रम की परिकल्पना की थी, तो ये बताना महज काम था कि पैरामेडिकल के क्षेत्र में आप अपना करियर अगर जो आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ गुजरते वक्त ने इसके अनेकों आयाम खोल दिए, आज BSc नर्सिंग है, BSc पैथोलॉजी है, BSc OT है, पैरामेडिकल में जो है अलग अलग कोर्सेज हैं, इवन हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, GNM है, ANM है, ढेर सारे कोर्सेज हैं जिसको लेकर अगर आपने पढ़ाई की तो आपके लिए रोजगार के अवसर सुलभ हो जाएंगे। और इसमें हम, यानी श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल वाले लोग और आपका राजेश मिलकर आप तक सही और सटीक बातें पहुंचाने का कोशिश करता है, प्रयास करता है और एक नंबर भी देता है कि अगर आपको कहीं ऐसा लगे तो निश्चित रूप से आप उस नंबर का इस्तेमाल कीजिए, बात कीजिए। नंबर नोट कीजिए पहले, 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233 ये नंबर है, इस पर आप जानकारियां ले सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट दिया था मेडिकल पढ़ने के लिए, क्वालिफाई नहीं कर पाए या कर गए, हाँ कर गए, और किसी कारण से उन्होंने एडमिशन नहीं लिया ना, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था और सुविधाएं भी हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर इलाके में है, पुलिस स्टेशन जो है जक्कनपुर का उसके ठीक सामने है। तो चलिए विस्तार से एक बार फिर डॉक्टर NP प्रियदर्शी हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं कि किस विषय पर आज बात करेंगे। हम लगातार वैसे विषय पर लगातार बात करते हैं जो बहुत वाइब्रेंट होता है, तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब किस मुद्दे पर बात करनी है।
6: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं,
5: हाँ।
6: बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है,
5: जानकारियों का ही अभाव है, हाँ।
6: भी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है
5: जी।
6: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट,

0: ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है
1: जी।
0: तो ऐसे ऐसे कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए। सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई
1: जी।
0: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी
1: जी।
0: और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है
1: जी। एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
0: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
1: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा। और जहां तक और बढ़ ही रही है, मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
1: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
0: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
1: तो जानकारी निश्चित रूप से युवा साथियों को थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
0: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा। यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं
1: जी।
0: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं। डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं, तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
1: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए। जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
0: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है
1: जी।
0: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब में तो उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो एक सीट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल, ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांग नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे?
1: सही।
0: और फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जवाब से आवश्यकता नहीं है, अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो

0: लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती
1: सही,
0: है।
1: सही सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है।
0: और इसकी मात्रा बढ़ते ही जाएगी। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, वो उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय हो जाए, जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों, आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
0: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
0: 2023 से?
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: बिल्कुल, मैं तो पहले ही, इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता। हमने पहले ही बताया था कि हम पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोग और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा
1: जी,
0: है
1: जी,
0: और आगे भी कीर्तिमान रहेगा ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
0: उसकी इच्छा
1: हाँ।
0: उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए,
1: कहीं
0: उसकी इच्छा, कहीं भी नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह है डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी, इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
0: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
1: क्या पढ़ाई होती है?
0: दोनों में सब कुछ सामान्य है,
1: हाँ।
0: सब कुछ समान है,
1: हाँ।
0: उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी सारे देते ही हैं, उसमें ऐड क्या हो गया ऐसा समझिए। ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
1: अच्छा,
0: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
1: ऑक्यूपेशन,
0: ऑक्यूपेशन
1: व्यवसाय
0: उसके लाइक बना देना।
1: हाँ।
0: जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
1: जॉब ओरिएंटेशन,
0: जिसमें उसकी रुचि है उसके लायक उसको बना देना।

0: डॉक्टर साहब आपका, आपसे बातें होंगी अगले एपिसोड में। तो बिहार वालों, हाँ युवा साथियों, कुछ समझ में आया, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं पूरे बिहार से, ज्यादातर सुपौल, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर, इन जगहों से फोन कॉल आते हैं। हालांकि ज्यादातर फोन कॉल ऐसे होते हैं जो सलाह मांगते हैं कि हमें किस ओर जाना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपकी रुचि जिस ओर जाइए, आपके लिए एक उन्नत भविष्य होगा। मन लगाकर पढ़िए, पैरामेडिकल को चुनिए। नंबर नोट कीजिए 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर 9162413233। जी हाँ, थैंक यू श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। तो साथियों, चुनिएगा जरूर, आपके लिए बुधवार को आते हैं और आपका साथ मिला तो आते ही रहेंगे। तो राजेश को दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: अब श्रोता लोग का एक पूर्व प्रसारित वार्ता सुनवाई छे, फल एवं सब्जियों का संरक्षण कैसे करें। वार्ता कार्य के डॉक्टर विनोद कुमार
3: जी।
4: उचित पोषण हेतु फल एवं सब्जियों का सेवन करना बहुत ही आवश्यक है। फल एवं सब्जियों से हमें विटामिन एवं खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये मौसमी होते हैं एवं शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वर्ष भर इनका सेवन तभी कर सकते हैं जब हर मौसम में उससे संरक्षित पदार्थ तैयार कर रखें। ध्यान रखें कि जिस समय फल एवं सब्जी सस्ते तथा बहुतायत में उपलब्ध हों, फलों से जेली, जैम, स्क्वैश, मुरब्बा तथा रस संरक्षित पदार्थ बना सकते हैं। सब्जियों से सुखोता, चटनी, अचार या नमक के घोल में संरक्षित कर सकते हैं। फल एवं सब्जियों से संरक्षित पदार्थ कैसे बनाएं, इसके बारे में जान लें। फलों से अमरूद की जेली। फलों को टुकड़ों में काटकर उसके वजन से 1.5 गुना पानी डालकर तेज आंच पर उबालें। जब फांकें भली भांत गल जाए तो पतले कपड़े से छानकर रस निकालें। इस रस में पेक्टिन नामक पदार्थ रहता है। इस पेक्टिन चीनी, साइट्रिक एसिड तथा पानी के मिश्रण से ही जेली बनती है। जाड़े एवं बसंत ऋतु के अमरूद में अधिक पेक्टिन रहती है। प्रति 1 किलोग्राम रस में 600 ग्राम से 750 ग्राम चीनी डालकर इसे तेज आंच पर पकाएं। चीनी घुल जाने पर रस को कपड़े से छान लें, पुनः पकाते जाएं। जब काफ़ी उबलने लगे और तापक्रम 102 से 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो प्रति किलोग्राम चीनी के लिए 6 ग्राम साइट्रिक एसिड थोड़ा पानी में घोल कर डाल दें। साइट्रिक एसिड के बदले 5-6 रसदार नींबू का रस निचोड़ कर डाल सकते हैं। 107 डिग्री सेंटीग्रेड पर जेली तैयार हो जाती है। इसकी पहचान के लिए काट के चलौने से पकते हुए जेली की कुछ मात्रा लेकर हवा में घुमावें एवं गिरावें। यदि बूंद बूंद न टपक कर पतली झिल्ली के रूप में गिरे तो जेली तैयार समझें। इसे आंच पर से उतार लें। थोड़ी देर के बाद ऊपर का झाग चम्मच से काट कर निकाल दें। जेली को गर्म अवस्था में ही चौड़े मुंह वाली बोतलों में भर दें तथा जम जाने पर पिघले मोम की परत ऊपर डालकर ढक्कन लगाकर रखें। जैम। फलों को छीलकर खाने वाले भाग गूदा को निकाल लें तथा इसको तौल लें। गूदा के तौल की 3/4 मात्रा चीनी तौल लें। यदि फल कड़ा हो तो थोड़ा पानी मिलाकर आग पर इसे नरम कर लें। चीनी डालकर पकाएं। जब तापक्रम 102 से 103 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, प्रति किलो चीनी की मात्रा के लिए 5 ग्राम साइट्रिक एसिड थोड़ा पानी में घोलकर मिला दें और पकाएं। जब गाढ़ा हो जाए या तापक्रम 106 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो आग से उतार लें। उतारने के बाद प्रति किलोग्राम जैम में 0.5 ग्राम सोडियम बेंजोएट नामक पररक्षी थोड़ा पानी में घोलकर जैम में मिला दें।

इसे चौड़ी मुंह वाली कांच की बोतल में भर दें। इसके ऊपर पिघले मोम की परत डालकर ढक्कन लगाकर रखें। रस का संरक्षण। रस के संरक्षण हेतु फलों को भलीभांत धोकर रस निकाल लें तथा छान लें। रस को गर्म करें लेकिन खोलने के पहले उतार लें। इसके संरक्षण के लिए ठंडा होने पर 1.2 ग्राम पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड थोड़ा पानी में घोलकर मिलावें। बोतल को गर्म पानी से अच्छी तरह साफ कर रस को भरकर काग लगा दें। काग के ऊपर पिघले मोम की एक परत डाल दें। इसे सुरक्षित स्थान पर रखें। रस का उपयोग पीने या शरबत बनाने में कर सकते हैं। फलों का स्क्वैश। प्रायः सभी रसदार फलों से स्क्वैश बनाया जा सकता है। फलों से सर्वप्रथम रस निकाल लेते हैं तथा उसे छान लें। प्रति 1 किलो नीबी रस के लिए 2 किलो चीनी तथा अन्य फलों के लिए 1.5 किलो चीनी लें। चीनी का आधा पानी लें। पहले चीनी को पानी में गर्म करके घोल लें। इस घोल में साइट्रिक एसिड 5 से 6 ग्राम प्रति किलो चीनी के हिसाब से डाल दें। यदि नींबू का स्क्वैश बनाना है तो साइट्रिक एसिड नहीं डालें। चीनी के घोल को छान लें। ठंडा होने पर चीनी के घोल तथा रस को मिला दें। प्रति किलो स्क्वैश के लिए 0.6 ग्राम चाय के चम्मच का 1/8 भाग पोटेशियम मेटावाई सल्फाइड थोड़ा पानी में घोल कर मिला दें। यदि चाहें तो फलों के एसेंस भी मिलते हैं, इसमें 5-7 बूंद मिला सकते हैं। इसे साफ बोतलों में भरकर काग लगा दें। काग पर पिघले मोम की परत डालकर रखें। सेवन हेतु 1 भाग स्क्वैश तथा 2 से 3 भाग पानी मिलावें। फलों का मुरब्बा। आंवला तथा बेर का मुरब्बा बना सकते हैं। सबसे पहले फलों को धो लें। इसके बाद स्टील के कांटों से गोद लें। इसे 2.0% नमक के घोल में 24 घंटा रखें। दूसरे दिन नमक की मात्रा 4% कर दें। तीसरे दिन नमक की मात्रा 6% कर दें। चौथे दिन नमक घोल में नमक की मात्रा 8% कर दें। फलों को 8% नमक के घोल में 2 दिनों तक रखें। फिर 2% फिटकरी के घोल में उबालें। इसे साफ पानी में अच्छी तरह धो लें जिससे नमक की मात्रा दूर हो जाए। फल की मात्रा की आधा चीनी फलों में डालकर 24 घंटा छोड़ दें। दूसरे दिन फलों को निकालकर चीनी के घोल को गर्म कर गाढ़ा करें। पुनः तीसरे दिन बची हुई चीनी की मात्रा को डालकर चाशनी को गाढ़ा करें तथा फलों को डाल दें। इस क्रिया को जब तक करें तब तक चाशनी गाढ़ी न हो जाए। इस विधि से तैयार मुरब्बा का रंग तथा स्वाद उत्तम रहेगा। अब हम बताएंगे कि घरेलू स्तर पर सब्जियों का संरक्षण कैसे करें। सुखौता। सब्जियों को धूप में सुखाकर सुखौता तैयार करने की प्रथा प्राचीन समय से घरों में चली आ रही है, लेकिन अच्छा आकर्षक बदली या बरसात में सुखौता तैयार करने के लिए बहुत से आधुनिक यंत्र तथा उपचार उपलब्ध हैं। इनमें से एक घरेलू सुखावन यंत्र जिसे होम ड्राइवर है, यह घरेलू स्तर पर बहुत उपयोगी है। इसमें जस्ता चढ़ी हुई लोहे की चादरों का बॉक्स होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 90x60x60 सेंटीमीटर होती है और पैंदी लोहे की मोटी चादर की बनी होती है। बॉक्स की दीवारों और छत के चारों ओर लकड़ी का खोल ढका रहता है। यह बॉक्स लोहे के 40 सेंटीमीटर ऊंचे स्टैंड पर स्थापित होता है। मिट्टी के तेल का स्टोव या कोयला के चूल्हे से आँच नीचे से दी जाती है। बॉक्स के अंदर जाल के बने 7 से 8 ट्रे रखे जाते हैं। इस ट्रे पर सब्जियों के टुकड़े रखे जाते हैं। ताप नियंत्रित रखने और गर्म वाष्प के निकलने के लिए सावधानी बरती जाती है। इसमें 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप आसानी से लाया जा सकता है। इसी तापक्रम पर प्रायः सब्जियां सुखाई जाती हैं।

0: खाने के पहले सब्जियों को पतले छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अलग अलग उपचार करते हैं। कुछ सब्जियों को मलमल के कपड़े में रखकर 4 से 5 मिनट तक उबलते पानी में रखते हैं, जिसे ब्लांचिंग कहते हैं। ब्लांचिंग करने के बाद सब्जियों को 4-5 मिनट के लिए ठंडा पानी में डाल देते हैं।
1: जी, इसी के साथ विदु भाई, समय हो गया है अब कहीं ना कहीं हम लोग को चलने का, तो सभी श्रोता भाइयों को आरू का नमस्कार।
2: हाँ, आज के कार्यक्रम से यहीं विदा लेते हैं। सबका विदु के भी नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रादेशिक समाचार नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 262 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज साहिबगंज में कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कोडरमा में निर्माणाधीन स्टेशन भवन का किया जायजा। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के दोहरीकरण की स्वीकृति की दी जानकारी। राज्य में मॉनसून की रफ्तार धीमी, 24 जून तक 58% कम बारिश। राजधानी रांची में अब तक औसत से 13% कम हुई वर्षा। और रांची रेल मंडल खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने खेल बुनियादी ढांचे का कर रहा है विस्तार। रेलवे कॉलोनी और आसपास की स्लम बस्तियों के प्रतिभाशाली बच्चों को दिया जा रहा है निःशुल्क प्रशिक्षण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस विशेष समारोह में कुल 262 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कदम से राज्य के चिकित्सा प्रबंधन और ढांचागत व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। आज झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई शुरुआत हुई है। डॉक्टरों के साथ साथ हॉस्पिटल मैनेजर्स और फाइनेंस मैनेजर्स की नियुक्ति से राज्य के अस्पतालों की कार्य प्रणाली को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
1: आज लगभग 262 लोग नियुक्त हुए हैं और इस बात को जरूर जहन में रखिएगा, जिस काम के लिए हमें तनख्वाह मिलती है उसको हम ईमानदारी पूर्वक निभाने का हम प्रयास करें। मैं नहीं कहता किसी भी व्यक्ति से गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम गलतियां हो। सरकार आपसे काफी उम्मीद के साथ और जिम्मेवारी के साथ चलने को तैयार है।
0: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज साहिबगंज के बरहड़वा और गोड्डा के आदिवासी बहुल सुंदर पहाड़ी प्रखंड में मान्यता प्राप्त दलों के BLA-2 प्रशिक्षण का निरीक्षण करते हुए कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड में रह रहे विदेशी नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के हकदार नहीं हैं और इनुमरेशन फॉर्म पर नागरिकता की गलत घोषणा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दंडनीय अपराध है। के रवि कुमार ने बताया कि प्रारूप सूची में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट और रिफ्यूज टू साइन श्रेणी के मतदाता शामिल नहीं होंगे। वहीं ASDD सूची 5 अगस्त 2026 को प्रारूप प्रकाशन के दौरान दलों को उपलब्ध कराई जाएगी और सभी मतदान केंद्रों पर प्रकाशित होगी।
2: संविधान आर्टिकल 326 में क्लियर दिया हुआ है, आपका भारत का नागरिक 18 उम्र हो चुका है, एक पोलिंग स्टेशन में रहेगा, मतलब उसका नाम रहेगी। बाकी कोई आदमी बाहर का आदमी यहाँ रहता है, मतलब विदेश का कोई आदमी रहता है, लीगली रहता है, उसका बारे में कोई मतलब नहीं, उनका नाम सूची में नहीं आया।
0: पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने आज एक दिवसीय दौरे के क्रम में कोडरमा में निर्माणाधीन स्टेशन भवन का जायजा लिया। स्पेशल सैलून बंधुआ स्टेशन से लेकर कोडरमा स्टेशन तक का GM ने इंस्पेक्शन किया। निरीक्षण के बाद GM ने रेलवे गेस्ट हाउस में रेल अधिकारियों के साथ बैठक भी की और यात्री सुविधाओं के बारे में कहा कि कोडरमा स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने धनबाद रेल मंडल में कई तरह के विकास कार्यों के बारे में बताया कि तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण प्रगति पर है। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के दोहरीकरण की भी स्वीकृति मिल गई है।
3: काफी एडवांस स्टेज में है स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण। कोडरमा से बरका की डबलिंग भी जो है अब स्वीकृत हो गई है, तो उस पर भी अब कार्य प्रारंभ होगा। इस तरह के बहुत सारे विकास कार्य हैं, सब एक साथ चल रहे हैं और आने वाले समय में जो है वो उपलब्ध भी हो जाएंगे देश की सेवा के लिए, यहाँ के यात्रियों के लिए।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड को विकास की एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उन्होंने बताया कि अजमेर जयपुर रांची के बीच प्रस्तावित अमृत भारत वर्जन 3.0 ट्रेन से राज्य की रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों को आधुनिक सुरक्षित तथा सुविधाजनक यात्रा सुविधा मिलेगी। झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में आज रामगढ़ परिसदन में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान सभापति श्री राय ने सूचना का अधिकार अधिनियम, सेवा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम तथा रोजगार का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण अधिनियमों का उद्देश्य आम नागरिकों को सेवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करना है। बोकारो जिले में पुलिस तथा झारखंड अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने बोकारो स्टील सिटी स्थित कोचिंग संस्थानों का फायर ऑडिट सह औचक निरीक्षण किया। कोचिंग संस्थानों के संचालकों को अग्नि सुरक्षा मानकों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने, अग्निशमन उपकरणों को कार्यशील अवस्था में रखने तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां बनाए रखने का निर्देश दिया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कर्नाटक से मजदूरी करने गए झारखंड के 18 मजदूरों को प्रशासन और पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में मुक्त कराया गया। इन मजदूरों को पिछले कई महीनों से जबरन काम कराया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उसके खिलाफ बंधुआ मजदूरी और श्रम कानून के उल्लंघन की धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
4: कोई अनजान व्यक्ति के साथ ये चले गए कर्नाटक का, तो वहाँ एक बंधुआ मजदूर के तरह इनको रखा गया। वहाँ ये एक डेढ़ साल तक काम किए और वहाँ का जो ऑनर था वो इन लोग को पैसा वगैरह कुछ देता नहीं था, सिर्फ खाने पीने का देता था। तो फिर गाँव वाले ने उन्होंने प्रशासन से वहाँ फिर संपर्क किया, बाद में फिर रेस्क्यू किया।
0: पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरीबिरू थाना क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने आज सारंडा के टाटीबा गांव के पास जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में संचालित 3 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी मात्रा में जावा महुआ तथा शराब निर्माण में प्रयुक्त उपकरणों को नष्ट किया गया। थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि फरार हुए शराब कारोबारियों की पहचान कर ली गई है। मुहर्रम के मौके पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बोकारो जिले के सभी थानों को विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में

0: बारफारी थाना क्षेत्र के जुलूस मार्गों का सत्यापन ड्रोन के माध्यम से करते हुए ऊंची ऊंची इमारतों का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा बोकारो जिले के सभी मुहर्रम अखाड़ों जुलूस मार्ग का सत्यापन सूक्ष्मता से करते हुए बिजली के तार, लटके हुए पेड़, रोड पर व्यवधान डालने वाले अवरोध का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है। मौसम। रांची में अब तक लगभग 119 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा के मुकाबले 13% कम है। सबसे चिंताजनक स्थिति गढ़वा और चतरा जिले की बताई जा रही है, जहां सामान्य से काफी कम वर्षा हुई है। रांची रेल मंडल खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने खेल बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है, ताकि रेलवे कॉलोनी और आसपास की स्लम बस्तियों के प्रतिभाशाली बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। वर्तमान में क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 50 से अधिक बच्चे अनुभवी प्रशिक्षकों और रेलवे खिलाड़ियों से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के 262 चयनित अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज साहिबगंज में कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने कोडरमा में निर्माणाधीन स्टेशन भवन का लिया जायजा। कोडरमा बरकाकाना रेलखंड के दोहरीकरण की स्वीकृति की दी जानकारी। राज्य में मॉनसून की रफ्तार धीमी, 24 जून तक 58% कम बारिश। राजधानी रांची में अब तक औसत से 13% कम हुई बारिश। और रांची रेल मंडल खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए अपने खेल बुनियादी ढांचे का कर रहा है विस्तार। रेलवे कॉलोनी और आसपास की स्लम बस्तियों के प्रतिभाशाली बच्चों को दिया जा रहा है निःशुल्क प्रशिक्षण। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्स पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब पेश है साप्ताहिक कार्यक्रम विशेष भेंटवार्ता। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे एक पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। विषय है ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण। भेंटवार्ताकार है श्रीमती चेतना त्रिपाठी और भेंट करता है नाओमी शांति हेम्ब्रम।
2: श्रोताओं नमस्कार। 25 नवंबर को हम संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। संरक्षण का अर्थ अपने आसपास की जितनी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती हैं, आवश्यक होती हैं और जिनसे हमारा जीवन उदात्त बनता है और जिनसे हमें अपने जीवन के गौरव का एहसास होता है, ऐसी सभी बातों या चीज़ों का संरक्षण आज बेहद ज़रूरी समझा जाने लगा है। इस संदर्भ में आज हम बातचीत कर रहे हैं श्रीमती चेतना त्रिपाठी सिंह से ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण के विषय में। आपकी अपनी एक संस्था है चेतना सर्विंग ह्यूमैनिटी और मूल रूप से आप महिला सशक्तिकरण की दिशा में सचेष्ट हैं, लेकिन अब संरक्षण की बात को भी आप उतनी ही महत्ता देती हैं, तो सशक्तिकरण और संरक्षण दोनों बातों को आप साथ साथ लेकर चल रही हैं। चेतना जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: सशक्तिकरण से संरक्षण तक आपका इस ओर जाना कैसे हुआ?
3: सशक्तिकरण तो एक महिला, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, तो सशक्ति महिलाओं को सशक्तिकरण तो मैं एक अपना एक तरीके से ये तो मैं अपनी ड्यूटी मानती हूँ कि मैं इन्हें एक अच्छी पढ़ाई लिखी लिखाई की, एक एजुकेशन अच्छी ली, तो मेरी एक ये एक मेरा दायित्व है ये कि मैं महिलाओं को एम्पावर्ड करूँ, महिलाओं को सशक्त करूँ। और मेरा एक शौक भी है कि महिलाओं को, क्योंकि मैंने देखा है बिहार में जिस हिसाब से मतलब एजुकेशन में महिलाओं की काफ़ी कमी है, जो उसको मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा भी मैं अगर उसमें अपना कुछ भी योगदान दे पाऊँ

0: जी
1: तो मैं मानूंगी कि हाँ कुछ मैं कर पाई। और
0: जी
1: रही ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण की बात, तो वो मैंने यहाँ पे आके भागलपुर में,
0: जी
1: मेरे पति का जब ट्रांसफ़र हुआ हम भागलपुर आए, तो मैंने शुरू से जब से देखना शुरू किया भागलपुर में, बहुत ऐतिहासिक तौर पे भागलपुर बहुत ही एक संपन्न है,
0: जी
1: बहुत ही संपन्नता है भागलपुर में। लेकिन हाँ, वहीं पे अनफॉर्चुनेट इस मामले में है कि यहाँ पे लोगों का इतना ध्यान नहीं है यहाँ के जो विरासत है भागलपुर सारी ही। चाहे जैसे हम इसमें इतिहास में कहा जाता है, एक एंशंट होता है, एक मेडिवल होता है, एक मॉडर्न होता है,
0: जी हाँ
1: तीनों ही समय पे, तीनों ही कालों में बहुत संपन्न रहा है।
0: जी
1: यहाँ की एक अपनी पूरी विरासत है, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा संरक्षण की जरूरत है, और संरक्षण के साथ साथ थोड़ा सा लोगों का भी ध्यान मतलब उसकी तरफ जाए जो भागलपुर के वासी हैं, और खासकर जो मतलब कम से कम जो यहाँ के एक एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल क्लास है, उसको तो कुछ मतलब उसके लिए एक
0: सोचना
1: जागरूकता है,
0: चाहिए। जी हाँ,
1: सोचना।
0: तो आपकी बात से हमें ये लग रहा है कि आप जो संरक्षण की दिशा में काम कर रही हैं वो दो स्तर पर कर रही हैं, एक तो संरक्षण करना और एक संरक्षण करने की दिशा में लोगों को जागरूक करना, उनके बीच चेतना लाना। तो ये दोनों ही बातें हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप संरक्षण का काम कर रही हैं और किस तरह से जागरूकता ला रही हैं इसके लिए।
1: संरक्षण के लिए जागरूकता और संरक्षण करना, दोनों मुझे लगता है कि मतलब एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं।
0: जी
1: तो जब तक हम यहाँ के जो मतलब जो सिटीजन्स हैं भागलपुर के, जो भागलपुर वासी हैं, उनको जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हम संरक्षण कर भी नहीं पाएंगे।
0: जी जी
1: क्योंकि अगर किसी ने भी थोड़ा भी लोगों को अगर ज्ञान नहीं है इस बात का, एकदम से ये कहना शुरू कर दिया कि आपने आके इस ऐतिहासिक विरासत में क्या करना शुरू कर दिया, या उन लोगों को अगर ये चीज़ नहीं समझ आया कि हम इसको थोड़ा सा मेंटेन करना चाह रहे हैं,
0: जी
1: तो हम वो काम हम कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए पहले जागरूकता बहुत जरूरी है, कम से कम ये एक एहसास होना चाहिए, एक ये ज्ञान होना चाहिए कि इसको हम, ये जो मैं मतलब मैंने जो ये कदम उठाया है, इसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ, इस
0: जी
1: ताकि इसको जागरूकता के साथ संरक्षण भी हो पाए, उसका मेंटेनेंस हो पाए। क्योंकि हम तो एक बार करके, और शायद आज भागलपुर में है और कल को मेरे पति का जहाँ पे भी ट्रांसफर होगा, मैं वहाँ चली जाऊँगी उनके साथ, तो ये जो दायित्व आ जाएगा ये यहाँ के भागलपुर
0: लोगों पर
1: वासियों पे
0: होगा।
1: ही आ
0: जी
1: जाएगा।
0: जी हाँ
1: तो
0: बिल्कुल
1: उनको मैं ये, मैं ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ मैं उनको समझा पाऊँ वैल्यू कम से कम,
0: जी
1: और साथ साथ संरक्षण में भी मैं अगर सफल हो पाई तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी इस चीज़ में।
0: और आपने भी बताया कि भागलपुर ऐतिहासिक विरासत के दृष्टि से समृद्ध जगह है।
1: हाँ, बहुत
0: आप
1: समृद्ध
0: अगर पूर्व की तरफ जाएं तो
1: है
0: विक्रमशिला महाविहार है,
1: विक्रमश।
0: और पश्चिम की तरफ जाएं तो सुल्तानगंज अजगैबीनाथ है,
1: भी
0: और भागलपुर में भी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिन्हें हम ऐतिहासिक विरासत की दृष्टि से देख सकते हैं। तो पहले हम पूर्व की ओर चलते हैं, विक्रमशिला की ओर।
1: विक्रमशिला,
0: विक्रमशिला सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त स्थल है। तो उसके संरक्षण के बारे में, वो एक ऐसी विरासत है जो हम कह लें कि कई कई सालों तक हमें ये याद दिलाता रहेगा कि हमारा प्राचीन क्या था और अब उसे वर्तमान में हमने कैसे किस स्थिति में रखा हुआ है, और उसके लिए अगर अब हम जागरूक होते हैं तो हमारा भविष्य कितना समुन्नत हो सकता है। तो हम विक्रमशिला के संरक्षण की थोड़ी बात करते हैं।
1: विक्रमशिला, विक्रमशिला तो अपने आप में ही एक जो कहा जाए लर्निंग सेंटर था।
0: जी
1: और हाँ, इस मामले में दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक बुद्धा सर्कल में नहीं आ पाया है, और एक ये मतलब इंटरनेशनल हेरिटेज लेवल पे भी नहीं आ पाया है। इस मामले में तो बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ हमेशा से लर्निंग होती रही थी, एक ये केंद्र था, एक ये अगर कहा जाए तो मतलब बुद्ध के बाद भी,
0: जी
1: या उनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था और इसको एक केंद्र बना दिया था। तांत्रिक एक बुद्धिज्म होता है,
0: जी
1: उसका एक तरीके से एक समय पे ये केंद्र बन चुका था।
0: जी जी
1: ये मतलब इतना महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन हाँ इसको मतलब इसकी वो तो नेग्लिजेंस तो रही है इसमें। तो ये तो हमारा 8वीं 9वीं शताब्दी में इसको पाला, धर्मपाल जो थे, पाला
0: जी
1: किंग, उन्होंने इसका स्थापना की थी। हाँ, ये अगर इसके मैं भी इसमें पूरी कोशिश कर रही
0: जी पुरातात्विक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, और
1: हूँ
0: बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से
1: दो।
0: भी।
1: हाँ
0: जी हाँ,
1: हाँ हाँ
0: अब भागलपुर

0: में और भी कई ऐसे स्थल हैं जिसको कि हम ऐतिहासिक विरासत के रूप में देखते हैं, उनके बारे में भी आप अपने विचार बताएं।
1: भागलपुर में अगर शुरू से हम शुरू करें

0: जो कर्ण थे, जो हम ये दानवीर कर्ण जिनके नाम से जाने जाते हैं, वो उनका यहाँ पे एक रहा था, उनका केंद्रीय रहा था। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब स्थल हैं जहाँ से वो कर्ण वहाँ वो अपना 40 मन सोना दान किया करते थे
1: जी,
0: और वो सब। वो उसके लिए तो मैं अभी नहीं मतलब एक पुष्टि नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ अगर इसमें आगे बढ़ा जाएगा, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अगर इसमें पुरातत्व का ध्यान जाए एक यहाँ पे हो, तो यहाँ पे जरूर कर्ण का कुछ ना कुछ मिलेगा। और फिर है यहाँ पे जो इस समय CTS है, जो ये कॉन्स्टेबल ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे है एक जो किला जो कर्णगढ़ के नाम से जाना जाता है, वो बेसिकली 8वीं और 9वीं शताब्दी का है। वो जो पाल डायनेस्टी जो थी उसका बनाया हुआ है, और उसमें बहुत अवशेष अभी भी हैं। उसमें मैं तो कई बार जाती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे एक अपना उसकी मैंने एक स्टडी की थी, तो वहाँ की अभी भी देखिए जाके, वहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं, जो मंदिर अब स्थापित कर दिया गया है, वहाँ पे जो मंदिर में मूर्तियाँ हैं, उन मूर्तियों को देख के आपको एकदम मतलब आप एकदम उसको समझ जाएंगे देख के। उसमें जो सैंडस्टोन यूज हुआ है, जो कुछ है कि ये सब मतलब यहाँ का, ये जो ये 8th, 9th, 10th century का किया हुआ है। और फिर उसके बाद अगर हम मेडिवल में आए, जो ये था जो हम लोग की मेडिवल एज थी, तो इसमें एक यहाँ पे है, ये मैं अभी गई थी नाथनगर में ही है, एक दरगाह है अभी उसको, अब तो उस बहुत ही उसमें मतलब दुर्दिन देख रही है वो दरगाह, क्योंकि अब तो उसकी दीवारें वगैरह भी सब गिर गई हैं। चंपा नाला के किनारे ही है, हम गए थे, और वो 11वीं शताब्दी की है, 11वीं शताब्दी भी नहीं रादर उससे भी पहले की है, लेकिन उसका भी संरक्षण नहीं हो रहा है, वही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं गई थी, कोशिश कर रही हूँ, कुछ भी अगर एक दीवार भी उसमें उठ जाए तो वो कम से कम संरक्षित हो जाएगी, एक सुरक्षित हो जाएगा कम से कम।
1: कुछ एक स्थल ऐसे हैं जो अभी भी उपेक्षित पड़े हुए हैं, कुछ एक स्थलों की दिशा में अभी काम चल रहे हैं, और अगर हम जैन धर्म को ले लें तो कई जैन मंदिर भी हैं जो अभी बहुत अच्छी अवस्था में हैं। इसके अलावा टिल्हा कोठी जो पहले कहा जाता था, आज रविंद्र भवन हम कहते हैं, तो उसकी देखरेख का भी काम चल रहा है। इसके अलावा और आपको क्या लगता है कि अध्ययन, अनुसंधान, अन्वेषण तो जरूरी है ऐतिहासिक विरासतों के संरक्षण की दिशा में, क्या आम लोग भी इस दिशा में कुछ कर सकते हैं?
0: सबसे पहले तो जैसे आपने जैन धर्म का कहा, तो उसका संरक्षण, मेरा जो मानना है मतलब मेरा अपना पर्सनली, कि उसका संरक्षण इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उसको धर्म से जोड़ दिया गया है। लोग वहाँ पूजा करने जाते हैं, और हमारा ही है कि जाएंगे पूजा करने जाते हैं तो चाहते हैं वो जगह साफ रहे, उसमें मतलब उसमें अच्छा सा उसका मेंटेनेंस रहे, इसीलिए उसका तो इसीलिए मेरा जो मानना है उसका इसीलिए संरक्षण हो पा रहा है उस जगह का। और बाकी भी हाँ, यहाँ ये तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि उपेक्षित बहुत है, यहाँ की जो जितनी भी जो है यहाँ की विरासत है बहुत उपेक्षित है। और ये टीला कोठी की रही बात, तो टीला कोठी पे अभी मैंने एक अपना हेरिटेज वॉक किया था टीला कोठी पे ही, तो टीला कोठी में जो उधर हुआ था मतलब 80s के डिकेड में जो काम हुआ था, जो हुआ था उसके बाद कोई ऐसा मेजर कोई भी संरक्षण का काम नहीं हुआ टीला कोठी में। लेकिन हाँ मतलब बाकी चीजों की अगर उसमें देखी जाए कंपैरिजन में, तो टीला कोठी अभी भी काफी मतलब वो संरक्षित है, सुरक्षित है, उसके वो जो इमारत है वो सुरक्षित है। बाकी इमारतों का तो जैसे वो है उनका है शाहजंगी का जो है जो उसको मकबरा बोला जाए, तो वो भी उसको भी मैं देख के आई हूँ अभी अभी, उसको एकदम से उसको जरूरत है कि उसको संरक्षित किया जाए, उसकी दीवारें कुछ गिरने लगी हैं, लोग वहाँ पे एक लोगों ने पूरा अपना वहाँ पे बैठ के लोग वो करते हैं मतलब अपना रोजमर्रा का काम करते हैं, सब करते हैं, उनको उसकी ये नहीं पता है कि उसकी क्या वैल्यू है, कि वो हमारे इतिहास के ऐतिहासिक तौर पे कितनी एक महत्वपूर्ण है, और जो हम एक दूसरे से जो कड़ियां जोड़ते हैं इतिहास में कि यहाँ ये हुआ था तो ये ऐसा उस समय रहा होगा, ये होगा, उस कड़ी का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है वो
1: जी।
0: लेकिन हाँ अब हम मैं क्योंकि गई थी, मैंने खुद भी पर्सनली भी लोगों को समझाने की कोशिश की, लो इसका एक कारण जो मैं समझती हूँ थोड़ा सा मतलब ये भी है कि लोगों में शिक्षा की कमी है, ये भी एक कारण है कि लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसका
1: जी।
0: विरा

0: वैल्यू।
1: जी, तो आपने वास्तव में सामाजिक दृष्टि से बहुत ही सजगता दिखाई है महिला सशक्तिकरण को लेकर भी और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण को लेकर भी,
0: जो मतलब अलग अलग धर्मों का हर का तरीका है।
1: जी, जी,
0: तो वो जो एक एक चीज जो हम करते हैं वो सब हमको इतिहास से ही तो मिला है, सब वो हमारा जो एक कहा जाए तो हमारे कल्चर का ही तो अंग है वो। तो अगर इतिहास से नहीं जोड़ेंगे अपने आप को, पुरानी चीजों से अपने आप को नहीं जोड़ेंगे तो एक कल्चर हम कहाँ से, हम तो बिल्कुल वो उस समान हो जाएंगे कि एक जो अज्ञानी इंसान नहीं, अज्ञानी जो इंसान होता है जिसको कुछ ज्ञान नहीं होता, जिसका कोई कल्चर नहीं होता, एक रहने सहने का तरीका, हम लोगों का रहने सहने का तरीका हर चीज तो हमने इतिहास से ही लिया। तो इतिहास से तो जोड़ना एक मतलब मुझे लगता है कि अनिवार्य, जैसे एक सांस लेना है, खाना जैसा अनिवार्य है।
1: तो और इसी से हमारे जीवन की गति भी बनी रहती है, हम सुगमता पूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। तो चेतना जी, आपने ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की दिशा में बहुत ही बारीक बातें हमें बताई, बहुत सारगर्भित बातें हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम विशेष भेंटवार्ता में एक पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता, विषय था ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण। भेंटवार्ताकार थी श्रीमती चेतना त्रिपाठी और भेंटकर्ता थी नाओमी शांति हेम्ब्रम। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मिली स्वीकृति। प्रदेश के सभी पंचायतों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 28 जून को करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्य भर में केंद्रीय चयन पर्षद की सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। और मौसम विभाग ने पटना, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 5 जिलों में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया। मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय, नवादा में SA विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में सीत योग विश्वविद्यालय और सिवान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन को मंजूरी दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुई कथित पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के लिए पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आयोग के गठन को भी स्वीकृति दी है। कैबिनेट में राज्य में विकसित भारत जीरामजी योजना की निगरानी के लिए बिहार राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के पुनर्गठन और गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में कुल 45 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने हर महीने के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस मनाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर जिले की एक चयनित पंचायत से 28 जून को इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा और जन भागीदारी के माध्यम से पंचायतों के सतत और समग्र विकास को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि राज्य में भूमि सुधार का कार्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि को हर हाल में अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। श्री जायसवाल ने आज पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पीरपैंती पावर प्लांट, CNLU, निफ्ट और सुपौल व्यवहार न्यायालय समेत विभिन्न स्थानों पर निर्माण कार्य के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि भूमि प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाते हुए इसका लाभ जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।
1: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना ने माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में भूमि प्रबंधन एवं राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और जनोन्मुख बनाने के दिशा में विभिन्न सेवाओं, योजनाओं एवं प्रक्रियाओं को व्यापक एवं क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन सेवा का विस्तार, विशेष सर्वेक्षण, भूमि विवाद के त्वरित निपटारे और भूमिहीन परिवार को पुनर्वास जैसे क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य में कानून का शासन है। श्री तिवारी ने कहा कि भोजपुर मुठभेड़ मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। श्री तिवारी ने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति छोड़कर जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए।
2: बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जिन जिन चीजों का डिमांड जहाँ जहाँ से आया वो सब चीजों को उन्होंने देखते हुए न्यायिक जांच की भी घोषणा की। पहले पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया, अब DSP को भी हटा दिया। और दूसरी बात कि जब न्यायिक जांच की घोषणा हो गई तो इंतजार सबको करने हैं कि न्यायिक जांच की रिपोर्ट क्या आ रही है, और एक बार जब रिपोर्ट आएगी तो दोषी पे कार्रवाई होगी।
0: इधर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि हाल में हुए सभी मुठभेड़ के मामलों की जांच होनी चाहिए।
3: जब से सम्राट जी के नेतृत्व में सरकार बना है तो खास करके इनकाउंटर का मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है और सब जगह ढूंढ ढूंढ के इनकाउंटर किया जा रहा है। सरासर गलत है, इस पे विशेष इंक्वायरी होना चाहिए, जांच होना चाहिए।
0: आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि राज्य सरकार बाढ़ और सुखाड़ की संभावित स्थिति को लेकर सतर्क है। पटना स्थित जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री सदा ने कहा कि विभागीय अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा है कि अगले 3 महीने में राज्य के प्रत्येक प्रखंड में 3 पंचायतों को बाल श्रम मुक्त बनाया जाएगा। श्री प्रसाद आज पटना स्थित नियोजन भवन में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के नए कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है।
4: आज हम सब लोग मिलकर एक और निर्णय ले रहे हैं कि आगामी 3 महीने के अंदर प्रत्येक प्रखंड के 3-3 पंचायत को हम बाल श्रम मुक्त करेंगे पूरी तरह से, और वहां शपथ कराएंगे कि अब इस पंचायत में कोई बाल श्रमिक नहीं है। और ऐसे जब हम धीरे धीरे करेंगे तो पूरा राज्य बाल श्रम मुक्त हो जाएगा।
0: केंद्रीय चयन परिषद की बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में विभिन्न केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में किया गया, इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। इधर रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आज भी कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन कर रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज 18 विशेष परीक्षा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेन बख्तियारपुर, राजगीर, नवादा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, सुपौल, बेतिया और मधुबनी समेत विभिन्न स्टेशनों के बीच चलाई जा रही हैं। रेलवे ने अभ्यर्थियों से इन ट्रेनों की परिचालन समय की सटीक जानकारी लेकर इस सुविधा का उपयोग करने की अपील की है। अररिया जिले के सभी 16 परीक्षा केंद्रों पर सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न हो गई। जिलाधिकारी विनोद दुहन ने दोनों पालियों के दौरान विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका है। इधर राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा समेत राज्य के दक्षिणी भागों में अनेक स्थानों पर लू की स्थिति बनी रहेगी।
1: दिनांक 25 जून राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के विभिन्न भागों में मुहर्रम पर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुहर्रम

की 10वीं तारीख 26 जून को यौमे आशूरा मनाया जाएगा। इस अवसर पर निकलने वाले अलम और ताजिया जुलूस के दौरान शांति और कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा बलों ने आज फ्लैग मार्च किया है। पटना के फुलवारी शरीफ, पत्थर की मस्जिद समेत विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जुलूस मार्ग और पहलाम स्थल के आसपास अस्थायी पुलिस चौकी बनाई जा रही है। हमारे रोहतास संवाददाता ने बताया कि जिला मुख्यालय सासाराम में जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इधर शेखपुरा के जिलाधिकारी शेखर आनंद और पुलिस अधीक्षक हिमांशु ने आज मुहर्रम के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। कटिहार जिले के कोलासी ओपी थाना क्षेत्र के मधुरा गांव में एक दुकान के सामने कोल्ड ड्रिंक के कैरेट से 5 देसी बम बरामद किए गए हैं। बम मिलने की सूचना के बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बकचपरा गंगा घाट पर गंगा नदी में स्नान के दौरान 5 युवतियां डूब गईं। इनमें से 3 युवतियों का शव बरामद कर लिया गया है, वहीं अन्य 2 की तलाश जारी है। इधर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत टीकारामपुर गंगा घाट पर डूबने से एक युवक की मौत हो गई। विशेष निगरानी इकाई ने चर्चित टेंडर घोटाला मामले में मास्टरमाइंड ऋषु श्री समेत 7 आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। एडीजी निगरानी पंकज दराद ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि निगरानी इकाई के पास इन सभी के खिलाफ ठोस और वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद हैं, जो समय आने पर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने आजमनगर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी सुनील कुमार ठाकुर को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया है। आरोपी का रिश्वत लेते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स 2026 के लिए बिहार के 2 पैरा एथलीटों का भारतीय टीम में चयन हुआ है। नालंदा के झंडू कुमार और गया के सोमन राणा 23 जुलाई से 3 अगस्त तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित हो रहे कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों खिलाड़ियों के चयन से राज्य में खुशी और गर्व का माहौल है। राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए इस वर्ष 2 अक्टूबर से दिसंबर तक राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। पटना में खेल विभाग के निदेशक आरिफ अहसन ने जिला खेल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने यह जानकारी दी। रोहतास जिले के डेहरी स्थित बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बीसैप परिसर में आज 1355 महिला सिपाहियों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया और नए जिम्मेदारी की शपथ ली। बीसेप 2 की समादेष्टा और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी लिपि सिंह ने परेड का निरीक्षण किया। नालंदा, पटना और गोपालगंज जिला बल से संबद्ध इन महिला सिपाहियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कार्य पूरा कर जिम्मेदारी संभाल ली है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित समाहरणालय में उद्योग वार्ता का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने उद्यमियों और स्टार्टअप से जुड़े युवाओं की समस्याओं, रोजगार सृजन और उद्योग स्थापना को लेकर चर्चा की। सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार ने आज निर्मली अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न राजस्व और लोकहित से जुड़े लंबित मामलों के जल्द निपटारे के निर्देश दिए हैं। किशनगंज जिले के टेढ़ागांच स्थित बालिका विद्यालय में बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अरवल की जिलाधिकारी अमृषा बैंस ने खनन विभाग से संबंधित समीक्षा बैठक में जिले में चल रही खनन गतिविधियों, बालू घाटों की स्थिति और खनिज परिवहन पर जानकारी प्राप्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सतत निगरानी और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में आज नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉट की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध कारोबार पर नियंत्रण के साथ ही नशे के विरुद्ध जागरूकता को लेकर चर्चा की गई। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत सहरसा सुपौल मुख्य मार्ग पर पुलिस लाइन के पास मोटरसाइकिल की टक्कर से एक किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव को मिली स्वीकृति।

0: तीन प्रदेश के सभी पंचायतों में प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा पंचायत विकास दिवस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 28 जून को करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रदेश भर में केंद्रीय चयन परिषद की सिपाही भर्ती परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न। और मौसम विभाग ने पटना, भभुआ, रोहतास समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों के कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है नालंदा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
4: नालंदा जिले की सदियों पुरानी और विश्व विख्यात हस्तकरघा कला बामन बूटी साड़ी और फैब्रिक को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग मिल गया है। नाबार्ड और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से मिली यह उपलब्धि न केवल नालंदा बल्कि पूरे बिहार की सांस्कृतिक विरासत के लिए गौरव का विषय मानी जा रही है। चेन्नई स्थित GI रजिस्ट्री द्वारा प्रदान की गई इस मान्यता से बामन बूटी की मौलिकता और विशिष्ट पहचान को कानूनी संरक्षण मिलेगा। GI टैग मिलने के बाद अब इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी तथा स्थानीय बुनकरों को बेहतर मूल्य प्राप्त होने की संभावना बढ़ेगी। इस उपलब्धि पर ग्रामीण विकास एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार ने बुनकरों को बधाई दी और कहा कि जीविका सहित विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों से बामन बूटी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इधर खरीफ 2026 सीजन को लेकर जिले में कृषि गतिविधियां तेज हो गई है। कृषि विभाग ने इस वर्ष 1,53,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विभिन्न फसलों की खेती का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें धान उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगभग 1,47,000 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती का लक्ष्य रखा गया है। विभाग को उम्मीद है कि सामान्य मानसून और समय पर कृषि इनपुट उपलब्ध होने पर जिले में खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड बन सकता है। इधर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, मिट्टी जांच, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए सभी प्रखंडों में शारदीय खरीफ महाअभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वहीं कृषि विभाग ने इस वर्ष किसानों की आय बढ़ाने के लिए बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती को भी बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। राजगीर प्रखंड के चयनित किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार इस नकदी फसलों की बाजार में अच्छी मांग है और कम समय में बेहतर आय प्राप्त की जा सकती है। बिहार शरीफ शहर की सीवरेज और स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई है। अमृत 2 योजना के तहत बिहार शरीफ स्मार्ट के लिए इंटरसेप्शन एंड डायवर्जन प्रणाली तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। लगभग 101,63,00,000 रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य गंदे पानी को बिना उपचार के नदियों और नालों में जाने से रोकना है। परियोजना के पूरा होने पर जल जमाव की समस्या में भी कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण और जन स्वास्थ्य को भी लाभ मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को भी मजबूती मिल रही है। 226 अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 173 इकाइयों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि शेष इकाइयों पर कार्य जारी है। इन इकाइयों में गीले कचरे को नाडेप विधि से जैविक खाद में परिवर्तित किया जा रहा है। परबलपुर, नगरनौसा, बेन और कराय पसुराय प्रखंड की कई पंचायतों में जैविक खाद का उत्पादन शुरू हो चुका है। इससे एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता बढ़ेगी, वहीं किसानों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जैविक खाद उपलब्ध हो सकेगी। राजगीर में आयोजित विश्व विख्यात राजकीय मलमास मेला 2026 का सफल समापन हो गया। एक महीने तक चले इस धार्मिक आयोजन में देश विदेश से पहुंचे करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने ब्रह्म कुंड सहित विभिन्न पवित्र कुंडों में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पूरे मलमास के दौरान राजगीर की पंच पहाड़ियां, मंदिर, मठ और साधु संतों के आश्रम श्रद्धा और भक्तिमय रहे। प्रशासन के अनुसार श्रद्धालुओं की संख्या ने इस वर्ष कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। मेले के दौरान सुरक्षा और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 5,000 पुलिस एवं सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई थी। इधर मिशन निपुण बिहार के 5 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आगामी 1 से 7 जुलाई तक जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में पठन पर्व आयोजित किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय ने बताया कि अभियान का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है।
3: अभी आप सुन रहे थे नालंदा जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
0: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश और दुनिया में स्वास्थ्य तथा संतुलित जीवन का संदेश दिया गया। भोजपुरी लोक संगीत को नई पहचान दिलाने वाले पद्मश्री से सम्मानित भरत सिंह भारती की आकाशवाणी से विशेष बातचीत। और जानेंगे एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले युवा एथलीट पीयूष राज की संघर्ष से सफलता की कहानी। बारहवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश विदेश में उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष का विषय था बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। योग दिवस का मुख्य आयोजन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के रेड रोड पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि योग आज दुनिया का सबसे बड़ा सामुदायिक उत्सव बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन है।
5: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित शिविर में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष से बिहार के स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में

0: रेडियो वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गायक कलाकार चेतन कुमार चौबे की प्रस्तुति। आरंभ में सुनिए मीराबाई का लिखा भजन।
1: एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक

श्रोताओं, आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। कार्यक्रम में आज आपने सुना गायक कलाकार चेतन कुमार चौबे की प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए फिल्म धड़कन से। नुसरत फतेह अली खान और साथियों की आवाजें हैं, नदीम श्रवण का संगीत है, समीर ने इसके बोल लिखे हैं।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म धड़कन का ये लोकप्रिय गीत। गायक कलाकार थे नुसरत फतेह अली खान और साथी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आपको एक आवश्यक सूचना दे दें, फोन इन बहनों की पसंद की रिकॉर्डिंग 25 जून गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे के बीच होनी है। जो बहनें अपनी पसंद के गीत सुनना चाहती हैं वे हमें इसी समय के दौरान अवश्य फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर है 2400981। बाहर के श्रोता यानी भागलपुर से बाहर की बहनें अगर हमें कॉल करेंगे तो वो एसटीडी कोड 0641 लगा कर हमें कॉल करें। एक बार फिर से आपको समय बता दें, कल 25 जून गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे के बीच फ़ोन इन बहनों की पसंद की रिकॉर्डिंग होनी है। कॉल करें, हमारा फ़ोन नंबर है 2400981, एसटीडी कोड है 0641। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म ताल का ये गीत। अनुराधा श्रीराम, सुजाता, सोनू निगम, एआर रहमान और साथियों की आवाज़ें हैं। एआर रहमान का ही संगीत है और आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे हैं।

0: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronx. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronx owners starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
1: रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? तिलका मांझी का नाम सुना है?
2: तिलका मांझी तो बहुत।
1: बख्शी जगबंधु का नाम सुना है?
3: बख्शी जगबंधु तो
2: हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिगर नॉट।
4: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियाँ दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म वीर का गीत। रूप कुमार राठौड़, श्रेया घोषाल, सुजैन डिमेलो की आवाजें हैं, साजिद और वाजिद का संगीत है, गुलजार ने इसके बोल लिखे हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत से पहले आपको आवश्यक सूचना दे दें। युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत फोन इन कुछ बातें कुछ गाने की रिकॉर्डिंग दिनांक 25 जून 2026 दिन गुरुवार यानी कल दोपहर 2 बजे से 2:30 के बीच रखी गई है। युवा दोस्तों, जिन्हें अपने पसंद के गीत सुनना हो, वो दूरभाष संख्या 24009081 पर कॉल करें। भागलपुर से बाहर के युवा दोस्त एसटीडी कोड 0641 लगाकर कॉल करें। दिन और समय याद रखें, कल यानी गुरुवार 25 जून 2026 को दोपहर 2 बजे से 2:30 के बीच इस कार्यक्रम

की रिकॉर्डिंग के बाद प्रसारण आप सुन पाएंगे 30 जून को ठीक संध्या 5 बजे से, कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत फोन इन कुछ बातें कुछ गाने। सूचना समाप्त हुई।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म परदेश का गीत। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ें हैं। नदीम श्रवण का संगीत है, आनंद बख्शी ने इसके बोल लिखे हैं।

0: You choose a diesel SUV for the power, the pull, the road presence. Now experience all of it without the noise, the smoke, the vibration. Meet the electric SUV, the e-Vitara. Get instant acceleration at every tap. Smooth, silent drives on every road with ADAS Level 2, 7 airbags, a range of 534 km, and running costs of under ₹1 per kilometer. This is everything you love about an electric SUV. Upgrade to the electric SUV, the e-Vitara today. Visit your nearest Nexa showroom.
1: Nexa.
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म आपका सुरूर का ये लोकप्रिय गीत। इस गीत को गाया है हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल ने। हिमेश रेशमिया का ही संगीत है, इसके बोल लिखे हैं समीर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अंतिम गीत सुनिए, फिल्म बंटी और बबली का। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन और साथियों ने।

श्रोताओं, बंटी और बबली फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 3 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक तथा प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा न करें। एक रिपोर्ट।
3: जो भारतीय नागरिक वर्तमान में ईरान में रह रहे हैं या किसी आवश्यक कारण से वहां यात्रा करने जा रहे हैं, उन्हें विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और वहां पहुंचने वाले लोगों से जल्द अपना विवरण भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराने की अपील की है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया मंचों पर जारी होने वाले अपडेट तथा सलाह पर नियमित रूप से नजर रखने की भी सलाह दी गई है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: इस बीच ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के संकट को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ओमान सरकार ने कहा है कि ये पहल संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के समन्वय से की गई है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़ी महीनों के व्यवधान के बाद जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही को सुगम बनाया जा सकेगा। संगठन के अनुसार क्षेत्र में 11,000 से अधिक नाविक फंसे हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक सत्ता संस्था

0: इंसानों और लोगों के बीच मौजूद दूरी को जन केंद्रित शासन के माध्यम से इस दूरी को कम करने की आवश्यकता पर बल देती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये पुस्तक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान का उल्लेख करती है।
1: That Bharat is the world's largest democracy and is also called the mother of democracy. Our constitution envisions a society based on justice, equality, liberty and fraternity.
0: उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने नीट परीक्षा देने वाले छात्रों को यातायात असुविधा से बचाने के लिए हवाई अड्डे से अपनी उड़ान लगभग 45 मिनट तक विलंबित की थी। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने आज पंजाब के जालंधर में दो महत्वपूर्ण रोड ओवरब्रिज आरओबी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने बताया कि जालंधर शहर जालंधर कैंट खंड पर गुरु नानकपुरा आरओबी का निर्माण 48 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि दूसरा बस स्टैंड गढ़ा रोड आरओबी 63 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से बनेगा। दोनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता रेलवे देगी। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की 2026 की बैठक आज बेंगलुरु में संपन्न हुई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समापन सत्र में शामिल हुए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि दो दिन की बैठक में आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन निगरानी सहित कई विषयों पर चर्चा हुई।
2: We had 26 delegates from
3: इस बैठक में 10 देशों के 26 प्रतिनिधियों के साथ साथ इसरो, इन स्पेस और अंतरिक्ष विभाग के लोग भी शामिल हुए। इसमें ब्रिक्स देशों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह समूहों के इस्तेमाल पर काफी चर्चा हुई, जिसमें आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और दूसरे पहलू शामिल थे। हमने मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन तथा अंतरिक्ष अभियानों के सतत संचालन पर भी विचार विमर्श किया।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 14वें पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर सभी पासपोर्ट अधिकारियों की उनकी समर्पित सेवा और नागरिकों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत की पासपोर्ट सेवाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025 में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों, पासपोर्ट सेवा केंद्रों और विदेशों में भारतीय दूतावासों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को लगभग 1.5 करोड़ पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान की गई हैं। देश भर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों और डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान में देश में ऐसे 545 केंद्र कार्यरत हैं। पिछले वर्ष 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए थे और इस वर्ष भी 10 नए केंद्र खोले जाने की योजना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी योजना ग्रामीण के मसौदा समन्वय ढांचे पर आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि ये बैठक अगले महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले विकसित भारत जी राम जी योजना की तैयारियों के अंतर्गत आयोजित की गई। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन ने राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान के सहयोग से गंगा नदी के तट पर शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं का विस्तार किया है। ये प्रबंधन योजनाएं नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। अब तक 13 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इस योजना के प्रथम चरण में 27 शहरों और दूसरे चरण में 33 शहरों के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। एक रिपोर्ट।
4: बचाव काम युद्धकालीन तत्परता से जारी है। अब तक 18 श्रमिकों को मलबे की ढेर से जिंदा निकाला गया है। करीब 15 और घायल लोग वहां फंसे रहने का संभावना है। घायलों की इलाज SSKM अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है उससे भी ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं। सेना, एनडीआर

0: आरएफ सिविल डिफेंस फायर ब्रिगेड और कोलकाता पुलिस मिलकर बचाव अभियान चला रहे हैं। दुर्घटना के कारण पर उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक निर्माण के नक्शे में त्रुटि थी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है ये अभी स्पष्ट नहीं है। कल विधानसभा में इसी विषय पर बयान दिया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: अरुणाचल प्रदेश के की पन्योर जिले के याजाली स्थित पोसा में मूसाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ताजा खबरों के अनुसार 4 लोग लापता हैं, 17 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है। भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्र याजाली और होजपोटिन दोनों तरफ से अब भी संपर्क से बाहर हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सभी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने को कहा है। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में तेज वर्षा के बाद असम में निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है। SDRF, NDRF और अन्य आपातकालीन बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मौसम विभाग ने कल देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की स्थिति बनी रह सकती है। बिहार में भी अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। दिल्ली में कल बारिश की संभावना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र मंच का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए भारत ने कहा कि सह अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय पाकिस्तान ने पद का दुरुपयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों के जवाब में जम्मू कश्मीर पर भारत का रुख दोहराया।
2: मैं पाकिस्तानी पक्ष की टिप्पणियों का उल्लेख करता हूं। यह हैरान कर देने वाला है कि ऐसे मंच पर जहां राजनीतिक मुद्दों पर संतुलित और निष्पक्ष चर्चा की उम्मीद की जाती है, ऐसी बातें कही गईं। मैं दोहराना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से भारत का घरेलू मामला है।
1: भारतीय नौसेना के जहाज उदयगिरि और कवरत्ति दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत वियतनाम के हो चिन मिन शहर से दौरा पूरा करने के बाद रवाना हो गए हैं। इस दौरे पर पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर रियर एडमिरल आलोक आनंद ने हो चिन मिन शहर की पीपल्स कमेटी और वियतनाम पीपल्स नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समुद्री सहयोग, आपसी समन्वय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में INS कवरत्ति पर एक संयुक्त योग सत्र भी आयोजित किया गया। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अम्बरीश सक्सेना।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 791 अंक बढ़कर 76,991 अंकों पर बंद हुआ। निफ्टी भी 198 अंक बढ़कर 24,022 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक 0.1% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.4% तक बढ़ा। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 8 पैसे मजबूत होकर 94.66 पर बंद हुआ।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जोगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 से खेले जाएंगे। US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने स्पेन की पाउला लोपेस और लूसिया रॉड्रिक्स को हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर के साथ व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून से सोल में मुलाकात की। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारा खोलने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने से 5 लोगों की मौत, बचाव अभियान जारी। अरुणाचल प्रदेश में मूसाधार वर्षा से अचानक बाढ़ आई, असम में चेतावनी जारी की गई। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कनाडा आज रात स्विट्जरलैंड से खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: विलियम, मैं फैसल हबीब।
1: मगरी बंगाल में कोलकाता के तराताला इलाके के नजदीक जेर तामीर एक गोदाम के मुनहदिम होने के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गोदाम के मुनहदिम होने से कई मजदूर भारी लोहे के मलबे तले दब गए हैं। एसएसकेएम अस्पताल में 5 अफराद को मुर्दा करार दिया गया जबकि जख्मियों का इलाज जारी है। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी जाय हादसा पर पहुंच गए हैं। रियासती वजरा अग्निमित्र पॉल और डॉक्टर इंद्रानिल खा भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जाय हादसा पर पहुंचे। कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स, एनडीआरएफ, पुलिस, आग बुझाने के अमले, इमरजेंसी सर्विसेज और भारतीय फौज की टीमें तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। अंदेशा है कि और भी कई मजदूर मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। रियासती सेक्रेटेरिएट नवन्ना ने मुतासिरीन की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं। ये नंबर्स हैं 1609-7908-07-0332-14-5526 और 0332-25-351-85। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
0: भारतीय फौज, एनडीआरएफ, पुलिस और आग बुझाने वाले अमले के अफराद मुश्तरका तौर पर कोलकाता के तरातरा इलाके में जेर तामीर गोदाम के मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। जख्मियों का कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, बचाव कार्रवाई जारी है। वजीर आला सुविंदु अधिकारी ने जाय हादसा का दौरा किया और इमदादी अहलकारों की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने मीडिया को बताया कि कोलकाता मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी आज रात उन्हें हादसे से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी जिसके बाद वो कल असेंबली में इस बारे में बयान देंगे। कोलकाता पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है, मजीद तहकीकात जारी है। कोलकाता से करियान लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज शदीद बारिश और अचानक सैलाब के सबब केपनियार जिले के तहत यजाली सर्कल में नेपको कॉलोनी में भारी नुकसान पहुंचा है। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद लापता हैं। हुकाम ने अभी किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं की है, अलबत्ता भी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है, तफसीलात का इंतजार है। नेपको के प्रोजेक्ट के सरबरा ने मुतला किया कि 17 अफराद जख्मी हुए हैं जिनमें से 3 की हालत संगीन है। संगीन तौर पर जख्मियों को इलाज के लिए बजरिया एम्बुलेंस जीरो ले जाया गया है। वजीर आला पेमा खांडू ने मुतासरीन और उनके कुनबों से ताजियत का इजहार किया है जो अपने अजीजों के बारे में पता चलने का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी की कि हुकूमत मुतासर कुनबों के साथ मजबूती से खड़ी है और बचाव, राहत और तिब्बी मदद फराहम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश सैलाब से मुतासर अफराद से अपील की है कि वो एहतियात से काम लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि लोगों की हिफाजत हुकूमत के लिए निहायत अहम है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश ने शदीद बारिश और अचानक सैलाब के तनाजुर में आसाम सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अरुणाचल प्रदेश में शदीद बारिश के बाद आसाम के निचले इलाकों में सैलाब के शदीद खतरात के पेश नज़र आसाम हुकूमत ने अपनी तमाम मुतालिका एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा है जिसके नतीजे में रियासत के निचले अजला बशमूल धीमाजी, लखीमपुर, बिस्वानाथ और सोनीपत में पूर्व में पानी की सतह में इजाफा और बहाव की रफ्तार में नुमायां तेजी का खतरा दरपेश है जबकि अगले 1 से 2 दिन के दौरान सैलाब के मजीद आगे बढ़ने का इम्कान है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और दीगर हंगामी इमदादी टीमों को अलर्ट पर रखा गया है जबकि जिला इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वह हसास इलाकों की कड़ी निगरानी करें और तमाम जरूरी एहतियाती इकदाम करें। निचले और सैलाब के तई हसास इलाकों में रहने वाले लोगों को चौकस रहने, सरकारी हदायात पर अमल करने, पानी वाले इलाकों में जाने से बचने और छोटी कश्तियों के जरिए सफर करने से गुरेज करने की हिदायत जारी की गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: नायब सदर जनाब सीबी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में एक किताब का इजरा किया जिसका उन्वान है वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। इस मौके पर शुरका से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि किताब में इख्तदार से मुतालिक इदारों और आम शहरियों के दरमियान अक्सर मौजूद फासले की अक्कासी की गई है और इस बात पर जोर दिया गया है कि अवाम पर मरकूज हुक्मरानी के जरिए इस खला को पुर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किताब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के तौर पर भारत की शनाख्त को उजागर करती है, नीज आईन में पेश किए गए इंसाफ, मसावात और आजादी के ख्यालात का इआदा करती है। भारत की सदारत में

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल

0: विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, हर साल देश में कुछ ऐसी प्रतिभाओं और ऐसे प्रेरणादायी बच्चों को आप राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करते हुए देख पाते हैं, जिन्होंने देश में अपनी वीरता से, अपने समाज सेवा से और तमाम क्षेत्रों में अपने प्रेरणादायी कामों से देश को प्रेरित किया है। तो इस वर्ष भी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो आज हम कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के महत्व, इसकी नामांकन की प्रक्रिया पर हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे और बातचीत करेंगे, और साथ ही हम पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं और जो नामांकित होकर जिन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था उन बच्चों से भी उनकी कहानियां सुनेंगे। तो आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा कार्यक्रम में। हम सबसे पहले तो स्वागत करेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार सर का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
2: सबसे पहले मुझे आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्रेरणादायक पहल के बारे में बात करने के लिए यहाँ मेरा आना अत्यंत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
1: जी, इस बार का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा हमारे जो देश भर के सुनने वाले परिवार हैं, बच्चे हैं, उनको जानकारी दें और बताएं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मकसद क्या है, किस तरह से इस बार का ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो पूरी प्रक्रिया है ये इस बार भी विशेष है।
2: जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको हम लोग शॉर्ट में PMRBP भी बोल सकते हैं, 5 से 8 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इस आयु के, उनके लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दी जाती हैं। ये श्रेणियां हैं बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इन 6 श्रेणियों में जो बच्चे उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करते हैं उनको हम लोग इस पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित करते हैं। और यह पुरस्कार हमारे युवा नागरिकों के साहस, प्रतिभा और योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया है।
1: जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस बार की जो प्रक्रिया है नामांकन की वो किस तरह से, हमारे आप सुनने वालों को बताना चाहेंगे उसके बारे में, और क्या क्या योग्यताएं या क्या क्राइटेरिया है पूरा।
2: जो हमने आपको पूर्व में बताया कि 6 श्रेणियां आइडेंटिफाई की गई हैं, तो इसमें जो एक्सीलेंट अचीवमेंट्स होते हैं इन 6 फील्ड्स में से कोई भी फील्ड में अगर किसी बच्चे का एक अत्यंत ही मतलब उत्कृष्ट उन्होंने अगर कोई कार्य किया हो, काम किया हो, तो वो उसको दर्शाते हुए हमारी जो आवेदन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
1: जी, तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे ये 6 श्रेणियां रखी गई हैं, इन श्रेणियों को हमने देखा है कि जो अब इन श्रेणियों के होने से एक विविध तरह के प्रतिभाएं हमारे सामने पेश होती हैं हर साल। तो इन श्रेणियों को जिस तरह से अब 6 किया गया है और अलग अलग श्रेणियां हैं, तो उनके बारे में भी हमारे सुनने वालों को हम चाहेंगे कि आप विस्तार से बताएं कि कौन कौन सी श्रेणी है और किस तरह से इन श्रेणियों से अलग अलग प्रतिभाओं के जो बच्चे हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत हो पाते हैं।
2: देखिए, जैसे पहली जो श्रेणी है बहादुरी, बहादुरी का मतलब अंग्रेजी में ब्रेवरी शब्द यूज करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपनी जान की बाजी लगा के दूसरों को बचाते हैं। ऐसे हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं और पिछले वर्ष भी उत्तर प्रदेश से और अन्य राज्यों से भी कई ऐसे उदाहरण आए थे जिसमें 2 बच्चे तो पोस्टह्यूमस मतलब जिनका देहांत हो गया था और उनको मरणोपरांत ये मतलब अवार्ड दिया गया था, तो उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अन्य बच्चों को बचाया था। एक यूपी का बच्चा था जिसने जो है उसके पिताजी को एक मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, वो एक पानी के स्रोत में अपने पिताजी को उन्होंने जो है बचाया था। ये तो मैंने बहादुरी की बात की। सामाजिक सेवा की बात करें तो पिछले वर्ष एक केस आया था जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक हमारा बच्चा वो हमारे जवानों को अपनी सेवाएं दे रहा था, तो सामाजिक सेवा का यह बहुत ही अत्यंत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे ही एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में भी लोगों ने कई सारे ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं और आज आपने जिन बच्चों को शामिल किया है वो भी इसके बारे में और आपको उदाहरण स्वरूप बताएंगे। खेल की अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स की, तो वैभव सूर्यवंशी का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा।
1: जी जी।
2: और वो नित्य नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने वैभव सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया था। पांचवी जो कैटेगरी है कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति मतलब आर्ट एंड कल्चर, इसमें भी पूर्व के वर्षों में हम लोग कई बच्चों को सम्मानित कर चुके हैं और इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिभा हो सकती है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। इसी प्रकार जो लास्ट कैटेगरी होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जाके काम कर रहे हैं, इवन एआई से रिलेटेड और इस प्रकार की भी एंट्रीज आ रही हैं। तो कुल मिला के इन छह एंट्रीज में छह जो मतलब श्रेणियां रखी गई हैं, इसमें काफी बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ के बच्चे आ रहे हैं और उनकी हमारे पास नॉमिनेशंस आ रही हैं।
1: जी, आपसे सर हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये भी एक बड़ा फोकस रहता है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो देश के कोने कोने से आए, दूर दराज गांवों से आए और ऐसे वर्गों से आए जो वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दिव्यांग हैं, तो इस बार भी क्या इन्हीं बातों पर फोकस होगा नॉमिनेशन के वक्त कि देश के अलग अलग कोनों से, दूर दराज के इलाकों से भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए?
2: अवश्य, देखिए हम लोगों का एक प्रयास ये भी रहता है कि हम भारत के हर कोने से, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सारे रीजन से हम लोगों का तो ये भी प्रयास रहता है कि यथासंभव मतलब हर जोन और हर राज्य से भी हम बच्चों को शामिल कर सकें। हम लोग हर साल 20 से 25 बच्चों को सम्मानित करते हैं, तो प्रयास यही रहता है कि एक तो भारत के हरेक कोने से बच्चे आए, दूसरा ये भी है कि जो बच्चे आर्थिक परिस्थितियों से, जिनके पेरेंट्स उतने वेल टू डू नहीं है, मतलब जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो प्रयास ये रहता है कि हर प्रकार के, हर वर्ग के और विशेषकर वैसे बच्चे जो कठिन परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं, उनके योगदान को हम लोग जो है उनको सराहा जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा, बड़ी से बड़ी संख्या में सम्मानित किया जाए।
1: बिल्कुल, और हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे परिवार वालों और बच्चों के मन में ये प्रश्न होगा कि जब बच्चे नॉमिनेशन के लिए खुद का आवेदन करेंगे, तो इसमें हम देख रहे थे कि दो प्रक्रिया है कि एक थर्ड पार्टी नॉमिनेशन और सेल्फ नॉमिनेशन, तो इसके बारे में भी आप कुछ हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि इन दोनों प्रक्रियाओं को रखने का मकसद क्या है, क्योंकि इसमें ये भी है कि बच्चा खुद से भी आवेदन कर सकता है या किसी संस्था या परिवार या कहीं और से भी उसकी प्रतिभा का आवेदन किया जा सकता है।
2: जी, नॉमिनेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि नॉमिनेशन ऑलरेडी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है और 31 जुलाई तक नॉमिनेशंस होंगे और इसके लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in
1: जी,
2: इसके माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। जो आपने मूल प्रश्न पूछा था कि कैसे नामांकन किया जा सकता है, कैसे नॉमिनेशंस किए जा सकते हैं, तो बच्चा स्वयं भी अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसे होती है कि बच्चे को उतनी जानकारी नहीं होती, तो कोई संस्था भी उनके बिहाफ पे, उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार या कोई भी संस्था उनके बिहाफ पे भी नॉमिनेशंस कर सकती हैं।
1: जी, जो ये प्रतिभावान बच्चे हैं इनकी निश्चित रूप से अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाओं को हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के जरिए समझ पाते हैं, तो मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि आवेदन के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, जब उनका चयन हो जाता है इस पुरस्कार के लिए, उसके बाद की प्रक्रिया के बारे में भी आप अगर हमारे सुनने वालों को बता सकें।
2: देखिए, जब बच्चे का चयन हो जाता है तो एक बात ये रहती है कि थोड़ी सी गोपनीयता का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बच्चे को जिस दिन पुरस्कार देने का दिवस होता है उससे पहले ही उनके नाम सार्वजनिक ना हो जाएं, तो थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना होता है। तो जिन बच्चों का चयन होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन पूर्व हम संबंधित जिले के कलेक्टर साहब को बताते हैं और वहाँ के जो कंसर्न कलेक्टर साहब होते हैं वो फिर उस बच्चे से, उस बच्चे के परिवार से संपर्क करते हैं और उन बच्चों को, वो जहां भी हो, देश के जिस भी कोने में हो, उनको हम बकायदा हवाई जहाज के माध्यम से, या आसपास के बच्चे हों तो मतलब बाय रोड भी वो आ सकते हैं, तो उनके आने, उनके लाने, ले जाने, ठहराने, वो सारी व्यवस्थाएं करते हैं और उनके साथ उनके पेरेंट्स या परिवार का कोई एक सदस्य भी आ सकता है, तो उनको बकायदा हम जहां भी पुरस्कार दिया जाता है, मोस्टली दिल्ली में ही होता है, तो हम उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो उनका चयन होने के पश्चात उनको इन्फॉर्म करने, उनको कम्युनिकेट करने के साथ साथ उनको उस स्थान से दिल्ली लाने और दिल्ली से वापस छोड़ने और यहाँ पे ठहरने और कार्यक्रम

0: जहां भी हो, चाहे राष्ट्रपति भवन में हो या विज्ञान भवन में हो या अन्य किसी स्थल पे हो, हम पूरी व्यवस्था करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार से कोई कठिनाई ना हो और वो उस पुरस्कार को ग्रहण कर सके।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि इस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में हम सभी जानते हैं कि बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक, स्कूलों, संस्थाओं की भी बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो अपने आसपास असाधारण बच्चों को तलाश सकते हैं। तो अंत में हम आपसे उन स्कूलों, अध्यापकों और जो शिक्षक हैं या परिवार है, अभिभावक हैं या पूरा समाज है, उसके लिए आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि वो अपने आसपास किस तरह से बच्चों को तलाश सकते हैं और उसके लिए नामांकन कर सकते हैं 31 जुलाई से पहले पहले, जैसे कि ऐसे बच्चे जो असाधारण हैं, जिन 6 श्रेणियों की हमने बात की, उन 6 श्रेणियों में अगर किसी भी तरह की उनमें ऐसी असाधारण प्रतिभा दिखाई देती है जो इस पुरस्कार के लिए बहुत जरूरी है या इस पुरस्कार के लिए खरी उतरती है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे और कुछ आप बताना चाहेंगे अंत में?
0: देखिए, इस पुरस्कार के बारे में इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार हो, इसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स देते हैं। इसके अलावा रेलवेज पे भी हमारी एक पट्टी चलती है ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके। इस बार भारतवर्ष के समस्त कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मैंने स्वयं डीओ लेटर लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि जो भी बच्चे उनके जिले में हों, आसपास में हों, उनके बारे में नॉमिनेशंस भेजें। इसी के साथ साथ हमने ऑनरेबल गवर्नर्स, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, इसके अलावा माननीय जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इसके अलावा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी जो महिला एवं बाल विकास की संस्थाएं हैं, जैसे आंगनवाड़ी हैं और अन्य संस्थाएं हैं, सारे स्कूल्स में, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे स्कूल्स में और अन्य सारे विभाग, जो भी महत्वपूर्ण विभाग हैं जहां से हमें एंट्रीज प्राप्त हो सकती हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय संगठन हो, नवोदय विद्यालय संगठन हो, समिति हो, तो हमने इस बार प्रयास ये किया है कि हमारी इस योजना या इस पुरस्कार के बारे में पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार प्रसार हो ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज आ सकें। तो मैं समस्त भारतवर्ष के समस्त नागरिकों से और बच्चों के अभिभावकों से, उनके जो टीचर्स हैं स्कूल के, उन सबसे यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको कोई भी बच्चा ऐसा अगर आपके ध्यान में आता है, आपके संपर्क में आता है जिसमें प्रतिभा है, और मैं कहना चाहूंगा यहाँ कि भारतवर्ष में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उस प्रतिभा को तराशने की जरूरत है, तो हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि आपको कोई भी ऐसा बच्चा जो उत्कृष्ट कार्य करता हुआ दिखे, मिले या आपके संपर्क में आए, उनके जो नॉमिनेशंस हैं आप जरूर उनके नॉमिनेशंस करें ताकि बड़ी से बड़ी संख्या में हमारे पास नॉमिनेशंस आएं ताकि हम इन बच्चों को पुरस्कृत कर सकें।
1: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आपके जो भी बातें हैं निश्चित रूप से हमारे देश भर के विभिन्न श्रोताओं तक पहुंची होंगी और इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे जरूर आगे आएंगे जो नामांकन करना चाहते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की इस संस्करण के लिए। आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आगे भी आगे आने वाले अवसरों पर जरूर बातचीत करना चाहेंगे और जानकारी लेना चाहेंगे विभिन्न गतिविधियों पर महिला और बाल विकास मंत्रालय की। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: जी। अब हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में उन प्रेरणादायी कहानियों को सुनते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दिखाया है, देश के लिए बहुत बड़ा अमूल्य योगदान दिया है, समाज को अपनी कारनामों से प्रेरित किया है। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ी है शिवानी हसुरु, जो एक 17 वर्षीय एक पैरा एथलीट है और दिव्यांग होना उनके लिए कोई बाधा नहीं है। जैवलिन, शॉटफुट थ्रो, इन सभी में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो शिवानी, बताएं अपनी कहानी हमारे सुनने वालों को, आप कहाँ से आती हैं और किस तरह से आपने अपनी छोटी सी आयु में पैरा एथलीट होने का इतना बड़ा गौरव हासिल किया है।
2: मेरा नाम शिवानी है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ
1: जी
2: और मैं पैरा एथलीट हूँ, शॉर्टपुट जैवलिन करती हूँ। तो मेरे को पहले बचपन से ही मेरा हाथ नहीं है,
1: जी
2: तो पहले बचपन में बहुत फील होती थी लाइक मेरे को हाथ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ऐसा। अभी मैं नवोदय स्कूल में पढ़ती थी, 6 से लेकर 12 तक। बचपन में बहुत लोग बहुत कुछ बोला है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना है, तेरे को हाथ नहीं है वैसा। तो मम्मी पापा ने एक ही बात बोला है कि हम तो बड़े करेंगे, तुम कुछ भी मत बोलो, हम है इसके साथ, ऐसा बोल के मेरे को साथ दिया है। ऐसे मेरे को बचपन से हॉस्टल में भेजा है कि मेरे को लाइक आदत पढ़ने के लिए, विदाउट हैंड करने के लिए जो भी. फिर मैं नवोदय स्कूल में गई हूँ 6th से लेकर 12th तक.
1: जी
2: फिर
1: जी.
2: एक हैदराबाद में आदित्य मेहता फाउंडेशन है जिसमें ओनली पैरा एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं. उसमें मेरा डिफरेंट डिफरेंट गेम्स में मेरा बेस्ट लिया था, तो मेरा शॉटपुट जावलिन में अच्छा था, तो मेरे को ट्रेनिंग देते हैं साथ में कंपटीशन भी देते हैं. वैसे मैं शॉटपुट जावलिन में स्टेट नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक गई हूँ. इंडिया के लिए 4 गोल्ड मेडल लाई हूँ और ऐसे मेरे पास अभी तक 19 मेडल्स है, उसमें से 16 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज है. और मैं उसके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ आगे.
1: बिल्कुल, हमारी बहुत शुभकामनाएं शिवानी आपके साथ. जिस तरह से आपने अपनी छोटी सी उम्र में पैरा एथलीट होने का एक बड़ा अवसर हासिल किया और साथ में आपने बहुत सारे मेडल्स जीते, तो ये मेडल्स की झड़ी आपके लिए लगातार बनी रहे. और आपसे बस ये भी मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा मन में उत्साह था, इसके बारे में भी हमारे सुनने वालों को बताएं.
2: कभी भी मैं टीवी में देखती थी नरेंद्र मोदी जी को और मैम को, द्रौपदी मुर्मू मैम को, मैं सोचती थी इतना बड़ा लोगों से मैं कब मिलूंगी, ऐसा सोचती थी. फिर सोचा भी कि मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, ऐसा सोची थी. पर मैं लाइक बहुत खुश हूँ ये अवार्ड मिला है. उधर जाके सर से, पीएम नरेंद्र मोदी जी से बात करना, उनसे इंटरेक्ट करना, ये सब कुछ मेरे को सपना जैसा लगा, पर वो सच था, बहुत अच्छा लगा.
1: जी बहुत धन्यवाद शिवानी, बहुत शुभकामनाएं आगे के आपके फ्यूचर के लिए. थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए. अब हम जुड़ रहे हैं एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व से, और हम सभी जानते हैं कि ये सभी बच्चे हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है. आयशी प्रिशा बोरा, इन्होंने छोटी सी 14 साल की उम्र में एक यंग इनोवेटर होने का गौरव हासिल किया. साइंस और इनोवेशन की कैटेगरी में इन्हें ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान मिला, और इन्होंने खासतौर पर सस्टेनेबल फार्मिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग के नए नए तरीके खोजे हैं. तो चलिए इनसे ही जानते हैं कि कैसे ये एक यंग इनोवेटर होते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग और जो रिसाइकलिंग है और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको लेकर काम कर रही हैं. बहुत स्वागत है आयशी आपका.
3: नमस्कार सर. थैंक यू सर.
1: जी तो बताएं अपने बारे में. आपको सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रोफाइल से ही लग रहा है कि एनवायरनमेंट से बहुत प्यार है और हम सभी को होना भी चाहिए, तो बताएं कि किस तरह से आपके मन में इस तरह की बातें आती हैं. जैसा कि हम आपने सुनने वालों को बता भी रहे थे कि जो सस्टेनेबल खेती है या जो वेस्ट रिसाइकलिंग है, ऐसे इन सब चीजों पर काम करने को लेकर कैसे प्रेरणा आती है.
3: मेरा मेन मोटिव यही होता है कि मैं जितना हो सके उतना अपनी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकूं. सस्टेनेबिलिटी मेरे हिसाब से एक जरूरत बन चुकी है आज के समय में. So that's why I work on these stuff. And yeah, I want to work further on it, making more sustainable products and whatever I can do.
1: जी तो बहुत इंटरेस्टिंग आपके इनोवेशन है आयशी. ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसा आपका कोई सपना है कि अपना स्टार्टअप हो, आगे आपकी कोई कंपनी हो, आपके प्रोडक्ट्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल के प्रोडक्ट्स हैं वो बिके, तो कुछ ऐसा सोचा है आपने?
3: Right now, I will be completely honest. I don't know about startups and all, but as of today, what I'm trying to focus on is to come up with the most sustainable solutions to all these societal problems. And if future I get the chance to implement them in real life, definitely I am very eager to do that. But right now I am just focusing on building the solutions. And as of now, I am trying to focus on my studies also, as I am a 10th grader this year.
1: साथ में आपसे भी वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्या आपके मन में एक्साइटमेंट था, उसके बारे में भी आप बताएं.
3: It was something that I never dreamed of. And even today, आज भी मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रही हूँ मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ. बहुत अच्छा लगा. लाइक इट्स समथिंग द लिटिल आयशी इनसाइड मी वाज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर. एंड I don't know how to explain it, to be honest.
1: Thank you so much, Aishi. आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपने experience, अपने innovations के बारे में हमारे सुनने वालों को बहुत detail में बताया. Thank you so much.
3: Thank you, sir.
1: अब हमारे साथ एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, एक और हमारे साथ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेता पिछले साल के जुड़ रहे हैं, वंश तयाल।

0: पंचतयाल में अपने जीवन में किसी भी तरह के मिसिंग को, किसी भी तरह के लॉस को लॉस नहीं समझा, और आज वो एक बहुत बड़े यूथ लीडर है और एक केयर गिवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्हें सराहना मिली है। तो वंश को हम जोड़ना चाहेंगे। वंश, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। हम सभी जानते हैं कि आपका परिवार नहीं है, माता पिता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने जीवन में किसी भी तरह की रुकावट को महसूस नहीं किया, और आज आपने इस लॉस को उबारते हुए एक बहुत बड़े यूथ लीडर के तौर पर उभर कर सामने आने का खुद को मौका दिया। बताएं अपने बारे में कुछ।
1: तो ये मौका मेरे लिए बहुत एक कठिन समय रहा, जब तक मेरे माता पिता नहीं थे, लेकिन बहुत रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं था, बहुत कठिन समय रहा मेरे लिए। बहुत ही आगे मूव ऑन कैसे करना है, कैसे खड़ा होना अपने पैरों पर, बहुत मुश्किल था लाइफ में, है ना। कि अब तो हिम्मत हार गई थी कि क्या ही करेंगे, कहाँ जाएंगे, अकेला हूँ, क्या करूंगा, ऐसे रह जाऊंगा। बहुत मुझे रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी, कुछ नहीं बना। फिर थोड़ा होप हुई, एक फिर होम में आया मैं, चिल्ड्रन होम में आया चंडीगढ़ में। फिर देखा वहां पर एनवायरमेंट, देखा लगा ना, कुछ 4-5 महीने लगे, हुआ थोड़ा सा बैकअप आया, धीरे धीरे सपोर्ट आया। तो वहाँ के स्टाफ ने काफी सपोर्ट किया मुझे इस बात के लिए। उसके बाद फिर एक छोटा सा बच्चा आया, मतलब बहुत छोटा बच्चा था, स्पेशल बच्चा, मैं एक सेरेब्रल पाल्सी थी उसको, मतलब वो चल नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। तो उससे काफी इंस्पायर हुआ, काफी मोटिवेट हुआ उस बच्चे से मैं, कि हाँ चलो बहुत छोटा है, और उसको बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया उसको, कि हाँ उसकी हालत ऐसी है, तो मतलब फिर भी मैं रिलायबल हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, कि कुछ भी कर सकता हूँ। तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, कि हाँ यू कैन डू, वाले यू कैन सर्वाइव। तो मैं तो क्या ही हूँ, मैं तो फिर भी अपने काफी बड़ा हूँ, 12-13 साल का था उस टाइम। तो काफी अच्छा मौका था, मैंने तो काफी इंस्पायर होके मैंने सोचा कि इसको वॉलंटियर सर्विस दूंगा। और काफी जिस होम में मैं रहता था तो काफी स्पेशल बच्चे भी रहते थे वहाँ पे, तो उन सबकी हेल्प करना, और हेल्प आउट करके, मतलब उन सबकी मदद करके, मतलब उस बच्चे को मैंने काफी ना एक हील्स टूडे की, वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, बोल भी पा रहा है आराम से। तो काफी था ये समय। फिर धीरे धीरे नॉमिनेशन का पता लगा कि हाँ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का भी नॉमिनेशन हो जाता है सोशल वर्क में। तो मेरे सुपरिटेंडेंट सर थे, मिस्टर ललित अरोड़ा, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया। काउंसलर मिस्टर प्रदीप ठाकुर थे, उन्होंने भी काफी इंस्पायर किया कि हाँ करो करो। तो फिर उन्होंने दोनों ने इकट्ठे मिलकर फॉर्म वगैरह भरा मेरा।
0: बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने जीवन के अनुभव से जो समाज सेवा का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, ये बहुत सच में सराहनीय बात
1: जी
0: है। हम आपसे और जानना
1: जी
0: चाहेंगे
1: जी
0: कि फ्यूचर में जिस तरह से हम भी जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके परिवार नहीं है, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं। क्या आपने सोचा है फ्यूचर में कि आप कैसे अपने इस समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे?
1: जैसे कि मेरा एक स्कोप है इन फ्यूचर में, कि मैं एक अच्छा पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और जितनी करीबी से मैंने मुसीबतों को देखा है, वो मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना देख पाए, कि वो युवा पीढ़ी ना देख पाए, जो बच्चे हैं वो ना देख पाए, उनका साथ ही अपनी सोशल सर्विस कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, और सबकी हेल्प आउट करना चाहता हूँ, कि जितनी मेरे से हो सके, मतलब सेल्फ होके वो मैं हेल्प करना चाहूंगा उनकी।
0: बिल्कुल, बहुत शुभकामनाएं वंश आपके लिए हमारी, कि आप इस तरह से अपने समाज सेवा के काम को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जुड़ते हैं सुमन सरकार से। सुमन सरकार एक तबला वादक है। छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत सारे मंचों पर अपने तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया है, और साथ में इनका एक और काम है कि ये जो ऐसे बच्चे जो म्यूजिक के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रेनिंग, उनको फ्री ट्रेनिंग की भी इन्होंने कोशिश की है। तो ऐसे भी समाज सेवा का ये काम कर रही है। बहुत स्वागत है सुमन आपका।
1: सर आपको बहुत धन्यवाद।
0: तो सुमन, बताएं कि कैसे आपके मन में म्यूजिक को लेकर ये इंटरेस्ट आया था, क्योंकि आपको कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आप अपनी प्रतिभा के बारे में हमारे सुनने वालों को बताएं।
1: तो सर देखिए, मेरा जर्नी जो शुरू हुआ था 3 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था, जब मैं एकदम छोटा था। तो तभी मैं ये तबला को, मतलब आसपास के जगह कुछ चीजों को बजाने की कोशिश करता था। मेरे फादर का जो बहुत सपना था, वो थोड़े शास्त्रीय संगीत का चर्चा करेंगे। मेरे परदादा जो थे वो श्रीखोल बजाते थे। तो मेरे फादर का फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ये सपना पूरा नहीं हो पाया, तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरे अंदर ये सपना देखना शुरू किया। तो
0: जी
1: जब मैं 3 साल का उम्र का था, तभी मेरे पापा ने ये नोटिस किया कि बच्चे के अंदर ताल का कुछ ज्ञान है। तो मेरे फादर ने शिक्षा चालू कर दिया था मेरे गांव में। मेरे प्रथम गुरु का नाम है श्री पोबेर कुमार सरकार, उनसे मैं सीखना चालू किया। तो वहां से जानने शुरू हुआ। तो फिर चलते चलते जब मेरा उम्र 7 साल का हुआ, तो मेरा फर्स्ट चेस प्रोग्राम था। कंपटीशन था, तो मैं बहुत डरता था तब स्टेज पे सबके सामने बजाने के टाइम। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया, गुरु का आशीर्वाद तो रहता ही है।
0: बिल्कुल
1: तो इसी हिसाब से लाइफ में फर्स्ट जब कंपटीशन दिया तो उसमें मैं फर्स्ट हुआ। मेरा उम्र तब 7 साल का था, मैं तब फर्स्ट हुआ। तो जो जजमेंट में था उन्होंने बोला कि मेरे फादर को उन्होंने एडवाइस दिया कि बच्चे को और ऊपर ले जाओ और अच्छे गुरु के पास ले जाओ। तभी से मैं कोलकाता के गुरु से सीखने लगा, श्री उज्जवल भारती से। तभी से मेरा जर्नी, ये जो शास्त्रीय संगीत का जर्नी है, तभी शुरू हुआ। धीरे धीरे ये बढ़ता रहा, मैंने रियाज करता, हमारा तो पूरा ही रियाज पे चलता है ये शास्त्रीय संगीत। मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत का जो प्यार मेरे अंदर बढ़ता रहा
0: जी। और ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे, जो आपकी कोशिश है कि आप फ्री ट्रेनिंग दें जो संगीत सीखने वाले बच्चे हैं उनको, उसके बारे में भी बताएं किस तरह का ये आप काम कर रहे हैं।
1: आज के जो जनरेशन है वो सिर्फ एडुकेशन पे भागता है, तो मेरा एक ही कहना है कि एडुकेशन के साथ साथ ये जो शास्त्रीय संगीत व हमारा कला संस्कृति जो है, इसमें भी बहुत बड़े बड़े सम्मान पा सकते हैं। यही मेरा वार्ता रहेगा समाज के अंदर, जो पद्मश्री पद्मभूषण बड़े बड़े जो सम्मान है वो शास्त्रीय संगीत में भी मिल सकते हैं।
0: बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि पिछले साल आपने जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का ये सम्मान हासिल किया। थैंक यू सो मच सुमन।
1: थैंक यू सर।
0: अब हम जुड़ रहे हैं अर्णव अनुप्रिया महर्षि से। इनका जो एक एआई पावर्ड रिहैबिलिटेशन सॉल्यूशन है दिव्यांग लोगों के लिए, वो बहुत चर्चा में है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन हासिल की है। तो आइए उनके इस सॉल्यूशन के बारे में उनसे जानते हैं, और साथ में जो पिछले साल राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का जो सम्मान मिला है उसके बारे में भी उससे हम बातचीत करते हैं। अर्णव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे श्रोताओं को सबसे पहले अपनी इनोवेशन के बारे में बताएं कि किस तरह से आपने एआई के जरिए एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की।
2: मेरा जो एक AI सॉल्यूशन है उसका नाम फेयर चांस है, जिसका फुल फॉर्म है फाइन मोटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड रिहैबिलिटेशन चांस। ये उन दिव्यांग लोगों के लिए बना है जिनके उंगलियों की जो ताकत रहती है वो बहुत कमजोर रहती है, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए बना है, जैसे पैरालिसिस पेशेंट्स, सेरिब्रल पॉल्सी पेशेंट्स। ये जो AI इनोवेशन है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कोई भी साधारण लैपटॉप या स्मार्टफोन पे चल जाता है, और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको एक लाइव असेसमेंट मिलता है, एक लाइव आउटपुट मिलता है कि आप कितना अच्छा आपके उंगलियों के मूवमेंट्स कर रहे हो।
0: आपसे आखिर में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का सम्मान है उसको हासिल करके आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या मन में था, उसके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस बताएं।
2: यही पुरस्कार के माध्यम से मेरे जो ये काम है इसको एक क्रेडिबिलिटी मिली है कि सचमुच का ये असली, मतलब सचमुच का काम कर रहा हूँ जो एक्चुअली दूसरे दिव्यांग लोग और दूसरे पेशेंट्स के काम में आ सकता है।
0: जी, आपके लिए बधाइयां भी इस पुरस्कार के लिए। धन्यवाद आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम में हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजित कुमार जी से चर्चा की राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के बारे में, हमारे श्रोताओं को बहुत सी जानकारियां नामांकन से लेकर इस पुरस्कार के मकसद के बारे में जरूर हासिल हुई होंगी। और साथ में कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हमने पिछले साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित कुछ प्रेरणादायी बच्चों से बात की, तो उनके अलग अलग कहानियों को सुनकर भी बहुत सारे सुनने वाले जो बच्चे हैं, परिवार है, वो प्रेरित हुए होंगे कि जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस साल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, अगर किसी श्रेणी में उन्होंने कोई ऐसा कारनामा किया है, कोई छुपी हुई प्रतिभा है, तो जरूर वो सामने आएंगे और नामांकन करेंगे। आप सभी का कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान विषय पर महिला और बाल विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। चर्चा का विषय है
4: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम 12 साल विकास के विश्वास के जन कल्याण के 21वीं कड़ी।
5: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
6: इन द लास्ट 12 इयर्स ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑलवेज एम्फसाइज्ड दैट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट हैज रिलेंटलेसली बीन वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
7: Thank you.
6: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 220,000 स्टार्टअप्स है हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव की किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंप्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
7: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारे इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है। तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, इज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे, हम अपना रैंकिंग जो था सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हुए 63 पे आए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होनी शुरू होगी, जो उसके पिलर्स हैं, खास करके जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिससे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 220,000 हैं। अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अभी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रो मोर देन 10%, सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ और जो एफडीआई आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं हमारे देश में। 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है, और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था, तो लगभग हम मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम 100 बिलियन डॉलर का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं. सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर इज ऑफ डूइंग बिजनेस विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलिएंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी.
6: एब्सोल्युटली. सो मिस्टर चनॉय, डॉक्टर शर्मा हैज सो यू नो एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन्ड दैट हाउ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बिकम द मंत्रा फॉर द पुश दैट हैज कम to the manufacturing sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance-heavy system to a facilitation-driven ecosystem? How do you see this basic mindset change, or you can say paradigm shift, in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
8: If you look at the whole ecosystem, right, earlier business was always viewed with suspicion.
6: Yes.
8: You are always seen as being a tax evader, not filing returns, you know, always evading and finding ways to circumvent the law, whatever it is.
6: Mm-hmm.
8: A very significant change has happened in this last 12 years that business has been recognized. I think for the first time, the Prime Minister actually talked about businesses being responsible and contributors to the economic growth in his Independence Day speech. It's never happened before. The second thing, which is very important to actually understand in this whole context, was that there were a whole set of small things, like if you didn't file certain data under certain law, or if you did not submit a return by a certain time, it was imprisonment. So all that has gone away. A lot of that has gone away. Some things still remain. You've had two versions of the Jan Vishwas Bill, 1.0 and 2.0. So you've actually looked at this. The third thing which is there is that they've allowed self-certification.
6: Yes.
8: Right? For the common man, what does self-certification mean? It means if you are doing something, if you're applying anywhere, you can take a copy of your Aadhaar card and self-attest it. Mm-hmm. This was not possible in earlier regimes. You could take a lot of documents and self-certify them. If you were to file certain returns, initially you had to get it verified or something by someone. Now you can actually do it on yourself. The third thing is, I remember very clearly for manufacturing and taking S.P. Sharma's point earlier, there were 1,947 compliances required and things to be filled by a particular company in the manufacturing sector over a period of year. Over the reforms, this is actually reduced. The same compliance was for a large company and for a medium and small company. So that is what has happened here. But I think you must see the reforms and the thing from the view of a street vendor to a large businessman.
6: Yes.
8: A medium scale person and a street vendor, because of the digitization and the bank accounts thing, has now got access to credit. This was not available earlier. So respect, trust, accessibility, and the opportunity to start a fresh business, as he mentioned, the startups.
6: Yes.
8: And as you talk about new businesses, MSMEs, to grow, they've allowed that by a simple change in the definition of the MSME thing. So now MSME has lost the fear of growing going forward.
6: Okay. So that flexibility is there, and that intent to make amendments whenever it is required, that we have been observing over the last 12 years.
8: Absolutely. And if you see, this is still work in progress. You see, we've revised 3 legal laws in the criminal space, the Evidence Act, the Indian Penal Code, and the Code of Criminal Procedure have all been, and we have the BNSS and BSA, and over 12,000 laws have been scrapped, 14,000,
6: yes.
8: Right? They've been scrapped, right? These are all things which are not there. You have looked at decriminalization, which I talked about earlier. So the fear of that going out. And the most important, and you started this conversation by saying, what are the two most important things that you've said? The first two most important things actually happened in 2014 and 2016, right? 2016 and 2017, right? The first one was the IBC. The insolvency code, because earlier companies could not, and the BIFR and the alternatives, they were graveyards of industry, not renegotiating kind of things. The second one, which is very important from a national perspective, which got implemented from the 1st of July 2017, was the GST,
1: yes,
8: which removed multiple taxation and got it into one tax, made it very simple, and that reform is continuing. So it's been a progress. This year, for example, earlier this year, they introduced reduced GST rates on many sectors.
6: Yes.
8: And you're seeing, despite Trump tariffs, despite the war.
6: And it became a two-slab structure, yeah, much simpler.
8: No, nearing two slabs, not yeah. yet two slabs, yeah, yeah. S.V. Sharma will differ from that. Yeah. But if you look at this, there have been growth rates.
6: Mm.
8: You know, people thought because of the Trump tariff and because of the war, Indian growth economy will be declining. But you saw the GDP numbers come out for yes. last year and the yes. projections for this year. And you will see the current PMI index, it is showing growth going forward.
6: Yes.
8: So this is all a result of the reforms and the income tax assessment. All these are all positive steps there. Yes, something always people will say something more has to be done, but that's a work in progress.
6: So, Dr. Sharma, you know, we talked about how business entry has become much easier, how the permits, getting permits has become much easier. If you can throw a little bit more light on that, the National Single Window System, which has been launched, and the land records, how they have been digitized. You feel that all these digitization of the various aspects of business, they have brought in much more transparency and led to environment which is more harmonious, and there is less chances of disputes happening or corruption happening?
7: Yes, Sonuji, digital processes are very, very important for these of doing business, as now we are the largest digital economy. Actually, we are at the top in the world economic system, and our digital transactions are now more than 20 billion in a month. So the total number in a year becomes in more than 200 billion. So DigiLocker, I think, is a great breakthrough for these of doing business processes. As I earlier mentioned, that procedures are coming down,
6: yes.
7: compliances are coming down. As Mr. Shunai mentioned, that compliances, government has removed many compliances from the system and have simplified more than 42,000 compliances during the last 4-5 years. Mm. So all these developments, like the removal of compliances and simplification of the compliances, is supporting the ease of doing business, particularly the new and young entrepreneurs to come into the system.
6: Yes.
7: Now, when I go to some classes or the MBA classes for some guest lectures, then the students talk about the entrepreneurship.
6: Mm.
7: They want to know about the opportunities existing in the promising areas of the economy.
6: Yes.
7: Now the entrepreneurship is in their mind. They want to move forward to become entrepreneur, to provide the jobs to the other people. So this is the reflection of overall ease of doing business during the last 12 years, with the many reforms starting from Make in India to the recent reform of Bhavya scheme. Like, the government has provided industrial park scheme. You can develop your manufacturing plant in a single go, in a single space, to move forward. And that is a great example of ease of doing business.
6: Yes.
7: Like the single window system was providing the procedural breakthrough. Now this Bhavya scheme is providing the setup of business at a single space. So all these developments are supporting the economy, supporting the businesses, and supporting the employment to happen for the growing young population in the country. So I'll give you some more example. Like earlier I discussed the FDI inflows in India.
6: Hmm.
7: Now the free trade agreements. These free trade agreements are becoming a major breakthrough for the Indian economy in the global economic system. We have already signed 8 free trade agreements. 9th is in process since the last 6-7 years. And these free trade agreements will become more fruitful with more and more ease of doing business.
6: Yes.
7: So as already we have undertaken many reforms for the ease of doing business, so this is the right time to move forward to become more and more strong in the global economic system with the free trade agreements with the promising economies. So this is the support of ease of doing business, that the government is able to sign free trade agreements with the many competitive economies, in the advanced economies.
6: Yes.
7: Like 38 economies are advanced economies in the all free trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
6: Absolutely.
7: With a great confidence,
6: yes,
7: that yes, we have a strong ease of doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned, that our PMI is now at the top of the competitive economies.
6: Absolutely.
7: Our PMI is higher than any economy in the top 10 economies. like our services PMI, our manufacturing PMI, even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
6: system. Absolutely. So, Mr. Chanoy, jaisa ki abhi Dr. Sharma ne kaha ki hum, aur aapne bhi kaha ki itne hum aapadaon se guzre, itni mushkil situations jo international level par hui, chahe wo pandemic ho, chahe ye geopolitical conflicts ho, but phir bhi hamare aarthik mazbooti bani rahi hai. Main aapse ye janna chahungi ki jo sarkar ke flagship स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया?
8: सुरेश जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, अब वो एक बहुत कम सा हो गया है. अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस तीन स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है. तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा,
6: जी जी,
8: उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए और एक उनको स्किलिंग करते हैं. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है. और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है. वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था.
6: जी.
8: और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें, तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो.
6: हाँ.
8: एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में. और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है. और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ये एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था. अब कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो.
6: बिल्कुल.
8: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में. अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया. और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो है एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के.
6: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है.
8: बिल्कुल. आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्गत एक स्कीम था जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओस और सिटीजंस ने जो कोलैबोरेट किया था। अभी देखिए कोविड के पहले तो हम ना पीपी किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे। पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन, ठीक है। पीपीए किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास बात के रिफॉर्म्स ने अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो और देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे
9: जी,
8: वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
9: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर

0: आपने दोनों देखे, तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं, जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने का देखते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
0: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप एनवायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करे कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है, और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ GDP, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि PLI स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला, जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी, हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हरेक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के, अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी, तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे RBI का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड, ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है, जैसे

आप सुन रहे थे कार्यक्रम 12 साल विकास के विश्वास के जन कल्याण के की 21वीं कड़ी। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से।

कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म प्रेम रोग का ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने। इसके बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म कभी कभी का ये गीत। इस गीत को गाया है मुकेश ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अगला गीत।

फिल्म एक दूजे के लिए से ये गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का ये आखिरी गीत था। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठक की। श्री गोयल ने भारत अमेरिकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is really our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज एआई आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और आरएफआईडी सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।